0: ए की करना क्या है?
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 पर। आप जुड़े हैं इस समय हमारे प्रातःकालीन प्रसारणों में। इसके अलावा आप हमें न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन पा रहे हैं। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। अब इन मीटर्स पर हमारे प्रातःकालीन कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं। आइए लेते हैं एक संक्षिप्त रूपरेखा उन कार्यक्रमों की जो अब से दिन भर आप सुनेंगे एफएम 102.6 पर।

अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप जुड़ेंगे हिंदी समाचारों से। इसके बाद रेणु भट्ट लेकर आएंगी सुप्रभात कार्यक्रम। पुनः हिंदी समाचारों के लिए चलेंगे और इसके बाद भावना जी नायर से हम सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। इस कार्यक्रम में आप सूचनाएं सुनते हैं और अलग अलग कार्यक्रम इसमें होते हैं। इस दौरान इसकी प्रस्तुति जो हम सुनवाने जा रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, इसमें आप कविता शर्मा की प्रस्तुति सुनेंगे। इसके ठीक बाद 8 बजे रेणु भट्ट एक बार फिर लेकर आएंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें आपको शहर और इसके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में, आयोजनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुबह 9 बजे सुनिएगा दिल के तराने, गाने नए पुराने। भावना जी नायर लेकर आएंगे इस कार्यक्रम को। इसमें आप नॉनस्टॉप ताजा तरीन बॉलीवुड के गाने सुन सकेंगे। फिर जुड़ेंगे हिंदी में समाचारों के लिए सुबह 10 बजे। इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा नियमित कार्यक्रम होगा मैचलेस म्यूजिक आर, जिसमें आज की प्रस्तुति होगी उत्कर्ष की।

उत्कर्ष से मैचलेस आवर सुनने के बाद आप जुड़ेंगे बबीता त्रिपाठी से हिंदी समाचारों के बाद कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स में। एक बार पुनः उत्कर्ष से सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा एक और प्रोग्राम प्ले इट कूल। इसके बाद दोपहर 1 बजे जुड़िएगा हिंदी में समाचारों से। रेनबो हेल्पलाइन का समय रहेगा दिन में 1:05 से। बबीता त्रिपाठी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे और इसके अंतर्गत आप सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय रहेगा ई कॉमर्स इनेबलमेंट ऑफ एसएमईज थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई टीम। इसमें हमारे आमंत्रित अतिथि होंगे श्री विद्यासागर सिंह, जो कि सीनियर जनरल मैनेजर हैं डिजिटल इनिशिएटिव सेल एनएसआईसी।

इसके बाद सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम आशियाना, जिसे लेकर आएंगी शालिनी खंडेलवाल। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो अब से लेकर आप दिन भर हमारी विभिन्न सभाओं में सुनेंगे आकाशवाणी रेनबो चैनल पर। 6 बजने को हैं, लीजिए प्रस्तुत हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय

शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी से मिलने आ गई हूँ मैं रेणु भट्ट, ढेर सारी बातें लेके जो हम आपस में करते रहते हैं। आप सुन रहे सुप्रभात, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहद खूबसूरत सुबह में।

कितना अच्छा लगता है ना जब सब चीज़ें हमारी तरफ से ही हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसी होती हैं। हम घर से बाहर निकले तो धूप ना मिले, या हम घर से बाहर निकले तो हमें हल्की हल्की फुहारें मिले, बारिश हो, हम जैसे बाहर जाएं हमारे जो भी व्हीकल हो हमें तैयार मिले, या फिर हम अगर पब्लिक व्हीकल में जाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें हमें तुरंत तुरंत ऑन टाइम मिले, ऑफिस में जाएं तो हमारे हिसाब से काम हो, और अगर स्कूल कॉलेज में जाएं तो भी हमारे हिसाब से ही अपने क्लास के पीरियड्स चलें, और टीचर्स भी हमारे हिसाब से आएं, हम घर पाएं घर आएं तो सारा काम हमें मिले करा कराया, और आराम से भी हम सो जाएं। बट बॉस एक्चुअल में क्या है ना, ऐसा से सोच सकते हैं ऐसा हो नहीं सकता है कि सब चीज़ हमें करा कराया मिल जाए, या फिर हम अपने ही एक कंफर्ट जोन में रहें कि हमें इस चीज़ को करना है इस चीज़ को नहीं करना, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मुझसे हो नहीं पाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कुछ नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप बाहर जाएं आपके हिसाब से काम हो, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, हम बस ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो भी नहीं करना चाहिए कि एकदम वर्स की सोच कर चलें कि बाहर अगर आपको बहुत ज़्यादा रश मिला तो आप क्या करेंगे, अगर आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं मिली तब आप क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें बस हम सोच सकते हैं, ऐसा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है, संभावनाएँ बहुत कम होती हैं कि ऐसा हो जाए। बाय चांस ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, और ये अच्छा इत्तेफाक होता है, और उस दिन हम सब बहुत खुश रहते हैं जिस दिन हमारे हिसाब से चीज़ें होती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर हमारे आसपास होने लग जाएगी ना, तो आप यकीन मानिए कि ये हम लोगों को ना ग्रोथ रोक देगी। अगर हम हर चीज़ अपने ही हिसाब से हमारे हो रही है और जैसा हम चाह रहे हैं वैसे ही हो रही है, तो यकीन मानिए लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है नहीं, बहुत बोरिंग सी लाइफ हो जाएगी। अगर लाइफ में फ़न चाहिए तब आपको वो चीज़ें चाहिए जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो। वो सब चीज़ें जब आसपास होती है ना, तब लाइफ में बहुत मज़ा आता है, और इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बेहद खूबसूरत ट्रैक मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में, आप सभी के लिए आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

हंसते खेलते और मुश्किलों से झगड़ते हुए लड़ते हुए और इसी तरह से अपने आप को ग्रो करते हुए पल निकल जाते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि समय में हम आगे कब आ गए हैं। और जब हम किसी चीज़ के कहा जाता है ना कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं इंसान का व्यक्तित्व उसी में निखर कर सामने आता है और उसी समय इंसान के व्यवहार की भी परीक्षा होती है कि किस तरह से वो व्यवहार करता है, कितना संयम उसके पास है या फिर कितना धैर्य है, कितनी अच्छे से वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है जब सारी सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। ऐसे में हमें इस बात का तो डर लगता है कि क्या हो सकता है या मुझे उस जोन में नहीं जाना है, लेकिन यकीन मानिए कई बार चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। हमारी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है जब हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ये सारी बातें आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। बसंत का मौसम था, मिट्टी के भीतर बीज दबे हुए थे और अंकुरित होकर ऊपर आने

की ओर तैयारी कर रहे थे, यानी कि बढ़ रहे थे। और उन्हीं में से एक छोटा सा बीज था जो कि बहुत ही शंकालु था, यानी कि बहुत सोचता था, उसकी बहुत ज्यादा चिंताएं थी, हमेशा वो चिंतित रहता था। एक दिन उसने दूसरे बीज से पूछा कि तुम बाहर क्यों निकलना चाहते हो? दूसरे बीज ने जवाब दिया, मैं हवा, सूरज की तेज रोशनी और गर्मी को महसूस करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर बीज डर गया। उसने सोचा, बाहर तेज धूप है, आंधी होगी, बारिश होगी, जानवरों का भी खतरा होगा, मुझे कोई तोड़ सकता है। मैं यहीं पर मिट्टी के अंधेरे में सुरक्षित हूँ जब तक मैं मिट्टी के नीचे हूँ। अब दिन बीतते गए और आसपास के जितने भी बीज थे वो साहस करके मिट्टी को चीर कर बाहर निकल आए और सुंदर पौधों में बदल गए। वे धूप और बारिश का आनंद लेते हुए रोज मजबूत हो रहे थे और ज्यादा मजबूत हो रहे थे जैसे जैसे वो मौसम का सामना कर रहे थे। लेकिन वो डरावा बीज कभी भी बाहर आने की सोचता ही नहीं, और जब कभी भी वो ऐसा सोचता वो अगले ही पल डर जाता कि बाहर होगा, जितने भी जोखिम है बाहर, वो मेरे साथ क्या करेंगे या मेरे साथ क्या होगा, इस बात को सोचकर ही वो अपने कदम पीछे खींच लेता और बाहर नहीं निकलता। वो सही समय का और खतरों के टलने का इंतजार करता रहता, और वहीं पर उसके आसपास के जितने भी पौधे थे वो बहुत बड़े होने लगे। एक सुबह एक मुर्गी वहां पर आई। वो मिट्टी को कुरेद रही थी, अपना भोजन तलाश कर रही थी। उसने मिट्टी को कुरेदा, वो बीज बाहर आया और उसने बीज को खा लिया। अंत समय में बीज को ये समझ में आया कि जिस सुरक्षा को वो अपना सहारा समझ रहा था वही उसका काल बन गई। वो भूल गया था कि जीवन में विकास जोखिम के साथ आता है। बीज का भविष्य पौधा बनने में था, मिट्टी में सड़ने का नहीं। ये बात समझने में कई बार इंसान को भी बहुत समय लग जाता है कि हम जिन परिस्थितियों को अपना कंफर्ट जोन समझते हैं कि ये हमारे लिए कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट है हमें यहीं पर रहना, वो कई बार आपकी ग्रोथ रोक देता है। मज़ा तब है जब इंसान उस परिस्थिति से बाहर निकले, बाहर निकल कर जब वो आए, सब चीज़ों का सामना करें। वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। आप पहले से इस बात को सोच नहीं सकते, निर्धारित नहीं कर सकते कि वो चीज़ें अच्छी ही होंगी या बुरी। जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं उस तरह से उसका सामना करना, उस तरह से उसका जवाब देना इंसान को बहुत बहुत आगे तक ले जाता है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ। बहुत सोच समझ के तोल मोल कर बोलना चाहिए भाई। हमारी कब कौन सी बात किसको बुरी लग जाए ये कह नहीं सकते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आप हर वक्त हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। फ्रेंडली बिहेवियर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मजाक करने के शौकीन हैं तो बहुत सोच समझ के मजाक कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका मजाक किसी को हर्ट कर जाए या किसी को बुरा लग जाए, और हो सकता है कि आपका व्यवहार अच्छा ना हो, आप गुस्सैल हो। तो हर जगह गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह के व्यक्ति को पसंद बिल्कुल नहीं करता जो हर किसी पर गुस्सा करता रहता है या बहुत ही एटीट्यूड में रहता है, बहुत घमंडी है या अहंकारी है। हमें इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपने लिए किया है, वो दूसरे के लिए नहीं किया है। इस बात पर थोड़ा विनम्र होने की ज़रूरत है, और इस बात को आप याद रखें, ध्यान में रखें, और ध्यान में रखते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप अपनी बातें हमें ज़रूर बताएं। आप हमें feedback@fmrainbow@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। feedback@fmrainbow@gmail.com पर आप हमें मेल करें। व्हाट्सएप आप हमें करते रहते हैं, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें। अब ये बेहद खूबसूरत ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सभी के लिए सुप्रभात में रेणु भट्ट आपके साथ।

तो हमें सिर्फ अपनी ग्रोथ की ओर नजर डालनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ हो रही है तो हाँ मुश्किल बहुत होती है इस तरह की परिस्थितियों में फंस जाना, लेकिन जब ठंडे दिमाग से व्यक्ति सिर्फ सोल्यूशन की ओर देखता है ना तो उसे सोल्यूशन नजर आते हैं और यकीन मानिए नजर आते हैं, पर अगर आप प्रॉब्लम्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप प्रॉब्लम सेंट्रिक बन जाएंगे। तो बाहर बीज का बाहर ना निकलना प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी नियति है कि वो बीज से पौधा बने, पौधे से पेड़ बने, लेकिन क्योंकि उसे बाहर ना तो सूरज की तेज धूप लेनी है, ना आंधी से उसका सामना करना चाहता है वो, ना हवाओं से, हो सकता है कि जानवर खा जाए, जो भी उसके डर हैं, जो भी भय हैं, उन सभी भय को, उन सभी डरों से को काबू कर उसे बाहर निकलना चाहिए था और खुशी खुशी निकलना चाहिए था। लेकिन हम भी जब ऐसे अपनी ग्रोथ को खुद ही से रोक लेते ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं वहाँ पर तो ऐसा ही है, वहाँ पर तो ऐसा ही होगा, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एक बार के लिए ट्राई करना तो बनता है। हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग जरूर बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी परिस्थिति, चाहे वो जितनी भी हार्ड क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे सामने कमजोर पड़ जाए। क्योंकि जब आप ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं, आप अपने आप को और मजबूत करते रहते हैं और यकीन मानिए व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि कब किस तरह से वो एक समझदार और मजबूत इंसान के तौर पर निखरता जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल पाता है। ये पता चलता है उसके आसपास के लोगों को जब वो ये देखते हैं कि इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी कितने अच्छे से इसने ये सिचुएशन को टैकल किया है और संयम के साथ इस परिस्थिति को भी उसने निपटा दिया है।

पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से और डॉली दिल्ली से मैसेज करती हैं, आप सभी को कार्यक्रम पसंद आ रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी भी पसंद आई, इस बात पर भी धन्यवाद। गाने पसंद आ रहे, ये भी जानकर अच्छा लगा। आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहें, आप सभी के मैसेजेस का, आपके एफर्ट्स का हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप दिन भर कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर भावना के साथ। 8:00 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में आपके साथ रहूंगी मैं। 9:00 के समय है दिल के तराने का, नए पुराने का, भावना ही रहेंगे आपके साथ। और उत्कर्ष के साथ आप सुन सकते हैं मैचलेस म्यूजिकार 10:05 पर। और कार्यक्रमों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे बॉलीवुड की सभी ताज़ा तरीन हलचल। बॉलीवुड ट्रेल्स में बबीता त्रिपाठी के साथ सुनेंगे आप 11:05 पर। उत्कर्ष रहेंगे आपके साथ प्लेट कूल में 12:05 पर। और बबीता त्रिपाठी के साथ 1:05 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स इनेबलमेंट ऑफ MSMEs थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME टीम। हमारे गेस्ट रहने वाले हैं श्री वैद्य सागर सिंह, आप सीनियर जनरल मैनेजर हैं डिजिटल इनिशिएटिव सेल NSIC से। 2:00 के समय है आशियाना का, शालिनी रहेंगे आपके साथ। और प्रियंका त्रिपाठी के साथ आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर 3:00। और आज हमारा टॉपिक है स्पेशल ऑन वर्ल्ड एलर्जिक वीक पर है, एलर्जी

care is essential care. डॉक्टर नीरज गुप्ता एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ रहने वाले हैं. कोई भी क्वेरी हो आप जरूर हमसे बात करें, हमारे एक्सपर्ट से बात करें. 4:05 पर आप सुनेंगे अल्फा जैन शालिनी के साथ और 5:05 पर प्रियंका त्रिपाठी लेकर आएंगी सिटी लाइट्स. गीत गुंजन आपके साथ रहेंगे. मैसेज मसाला मिक्स में 6:05 का समय है और 7:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम कंट्री कार्निवल में मुक्ता रहेंगे आपके साथ. 8:00 म्यूजिक मस्ती में गीत गुंजन ही रहेंगे आपके साथ. 9:00 आपकी याद आती रही लेकर आएंगे हिना मौज और मुक्ता आपके साथ रहेंगी 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम में. और रंगे महफिल में आपके साथ रहने वाली हिना मौज 11:05 पर. इन सभी प्रोग्राम्स में कार्यक्रमों में आप जरूर शिरकत करें, सुने, हमसे जुड़े, हमें अपनी बातें बताएं. हमें जानकर बहुत बहुत अच्छा लगता है.

आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम क्या चीज़ ठान रहे हैं, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं या फिर हम अपने आप को और संकुचित कर रहे हैं। संकुचित नहीं करना है, जितना उड़ सकते हैं, ये पूरा आसमान हमारा है। जितनी आप अपने पंखों को हौसला दे सकते हैं, आप उतनी ऊंची उड़ान ले सकते हैं। इस बात पर यकीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी बात के साथ मैं रेणु भट्ट ले लूँगी आप सभी से इजाज़त। फिर मिलूंगे आपसे ठीक है एक घंटे बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में, और तब हम आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर भावना के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इन्क्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

बिल्कुल, कितना सोचा बस थोड़ा और लेट हो जाए, थोड़ा और आराम कर लूं, बस मंडे थोड़ी देर बाद आना, कल आना, परसों आना, लेकिन मंडे तो मंडे है। ये जो थोड़ा आराम कर लूं होता है ना, और अलार्म के जो वो 5 मिनट और होते हैं उसका सुकून ही और होता है, लेकिन संडे तो यूं ही निकल जाता है। ऐसा लगता है कि बस पलक झपके और संडे निकल गया, लेकिन वीकडेज निकलते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कब ये वीकडेज निकले, वीकेंड आए, लेकिन वीकेंड तो झट से निकल जाता है और फिर आ जाता है मंडे, और आ चुका है सोमवार, और सोमवार

यानी कि मंडे, और मंडे में मन है तो मन लगा लीजिए अब हमारे साथ। और देखते ही देखते, क्योंकि मंडे ने सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक दे ही दी है, 29 जून का दिन है। चलिए तो इस बस 5 मिनट को यहीं छोड़ते हैं और इस नई सुबह की शुरुआत करते हैं मुस्कुराहट के साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ भावना नायर। और हफ्ते का पहला दिन, नई शुरुआत का दिन, नई ऊर्जा का दिन, और साथ ही साथ आज एक दिलचस्प बात भी है। जून को अलविदा कहने में ना बस अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी है, यानी साल 2026 का आधा सफर लगभग पूरा होने जा रहा है। तो आज सुबह हम आपके दिन को एक और शानदार सुबह बनाने वाले हैं, इसको देने वाले हैं एक मजेदार मंडे किक स्टार्ट। बात करेंगे दिल्ली के किस्सों की, इतिहास के कुछ दिलचस्प पन्नों की, जानेंगे आज के दिन की खास बातें, खेल जगत की ताजा हलचल भी होने वाली है, सेहत से जुड़ी जानकारी कैसे छूट जाए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, और संगीत, संगीत तो पूरा आपको आधा घंटा नहीं पूरा पूरा सफरी संगीत के साथ बीतने वाला है। चाय की पहली चुस्की हो, मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हो, या ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो, मंडे हमारे साथ मनाइए, इसी मुस्कुराहट के साथ मनाइए, क्योंकि पूरा हफ्ता थोड़ा आसान लगने लगता है एफएम रेनबो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ एक और बेहतरीन गाने के साथ। मंडे ब्लूज नहीं, मंडे को मोटिवेशन समझिए मेरे दोस्त।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, वक्त हो गया है 7:18 और 11 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ भावना। सुबह की सबसे अच्छी शुरुआत 102.6 FM रेनबो के साथ ही होती है, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं दिल्ली से जुड़े वो तमाम किस्से जो आपको जानने जरूरी है। लेकिन दिल्ली की गर्मी की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी चल रही है इस समय और खूब पसीने बहा रही है। संडे ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वक्त ऐसा होता था जब मानसून आ जाता था, लेकिन मानसून की तो दस्तक क्या बाहर दरवाजे तक भी अभी लग रहा है कि आई नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आंधी जरूर आती है, लगता है कि अब बारिश आएगी। दिन में कभी एक बार तेज हवाएं चल जाती है, लेकिन फिर भी दिल्ली NCR में गर्मी और उमस से ना फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज के अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 से 42 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद जरूर बताई जा रही है, लेकिन दोपहर या शाम के समय ये गरज चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। लेकिन हर रोज यही लुका छुपी का केस तो चल ही रहा है। अगर बात करें आने वाले दिनों की तो कहा अभी भी यही जा रहा है कि उमस बनी रहेगी, इसलिए घर से निकलते समय ना दोस्तों पानी की बोतल जरूर साथ रखेगा, हल्के कपड़े पहनेगा और धूप में ज्यादा देर रहने से बचिएगा। अच्छी खबर आपको बता दूं, 2 जुलाई के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद यहां जताई जा रही है। सुनते रहिए 102.6 FM। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

दोस्तों, हर तारीख ना अपने साथ कुछ कहानियां लेकर आती है। आज है दिन 29 जून और हम पलटेंगे इतिहास के कुछ दिलचस्प पन्ने। जानते हैं किन किन घटनाओं ने दुनिया की दिशा बदली और आज का दिन क्यों है खास। आज भारत में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। सुनने में ना ये आंकड़े शायद थोड़े बोरिंग लगे, लेकिन जरा ठहर कर सोचिएगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना इनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर मौसम का अनुमान ना हो तो किसान अपनी फसल कैसे बोएगा, अगर जनसंख्या का सही आंकड़ा ना हो तो सरकार योजनाएं कैसे बनाएगी, अगर महंगाई का अंदाजा ही ना हो तो आम आदमी अपने खर्चों को कैसे संभालेगा, और अगर देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर ना हो तो विकास की दिशा कैसे तय होगी। यानी हर वो योजना, हर नीति, हर विकास की कहानी आंकड़ों की मजबूत नींव पर खड़ी होती है। ये दिन महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नाम पर मनाया जाता है। उन्होंने भारत में आधुनिक सांख्यिकी को एक नई दिशा प्रदान करी। महालनोबिस मॉडल के जरिए उन्होंने देश की आर्थिक योजना की को दिशा दी और यह दिखाया कि सही डेटा सही निर्णय लेने की ताकत देता है। आज के इस डिजिटल दौर में डेटा सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये हमारी आदतों, हमारी जरूरतों और हमारे भविष्य की कहानी कहते हैं। तो आज अगर कोई कहे ना नंबर्स डोंट लाई, तो मुस्कुराइए और याद रखिए सही आंकड़े ही सही फैसलों की शुरुआत होते हैं और सही फैसले ही एक मजबूत देश की पहचान बनाते हैं। सुनते रहिए 102.6 एफएम रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ, आपकी प्यारी भावना।

साथी दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, यानी वो दिन और उन इलाकों का दिन जहां सूरज ना सबसे ज्यादा चमकता है, जहां जैव विविधता सबसे समृद्ध होती है और जहां दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। ये वही क्षेत्र है जहां घने वर्षा वन है, जहां अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं और जहां प्रकृति अपने सबसे जीवंत और विविध रूप में दिखाई देती है। भारत भी ट्रॉपिकल देशों में शामिल है। हमारे मॉनसून, हमारे जंगल, हमारी खेती, हमारी नदियां सब इस उष्णकटिबंधीय प्रकृति की पहचान है। लेकिन इन क्षेत्रों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है दोस्तों, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और तेजी से बढ़ती ये जो शहरीकरण की प्रक्रिया है। तो आज का दिन हमें ये याद दिला रहा है दोस्तों कि प्रकृति का ख्याल रखना दरअसल अपने भविष्य का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम इन संसाधनों को सुरक्षित रखेंगे ना, तो आने वाली जो जेनरेशन्स हैं उनके लिए एक बैलेंस्ड और हेल्दी पर्यावरण सुनिश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही दिन हमें याद दिलाता है और यही जागरूक रहने का भी दिन है। Thank you.

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 FM के साथ, यानी मेरे साथ भावना के साथ। गुड मॉर्निंग, चलिए NCR चल रहा है। और एक ऐसी खबर जो आपकी सेहत और आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई है। आज है 29 जून और आज लॉन्च होने वाला है आरोग्य सेतु 2.0। याद है ना, कोविड के दौरान आरोग्य सेतु ऐप कितना मददगार साबित हुआ था। अब इसका नया रूप और भी ज्यादा स्मार्ट होने जा रहा है और इस ऐप में आप अपना आभा हेल्थ आईडी बना सकेंगे, अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे, AI की मदद से हेल्थ रिपोर्ट समझ पाएंगे और दवाई और हेल्थ चेकअप की याद दिलाई जाएगी आपको। साथ ही वियरेबल डिवाइस से हेल्थ ट्रैक भी होगी, परिवार के सभी सदस्यों की हेल्थ प्रोफाइल एक जगह रहेगी, पास के अस्पताल, डॉक्टर, एम्बुलेंस, यहां तक कि ब्लड की उपलब्धता भी आप देख सकेंगे। यानी आपकी पूरी हेल्थ अब आपकी जेब में होने वाली है और अगर तकनीक सही दिशा में काम करे ना दोस्तों, तो जिंदगी बहुत आसान लगने लगती है। और जब ये आसान लगने लगती है तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। आप अपने परिवार और अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। आज है मंडे, यानी कि मन का डे, तो इस मन की भी माने और दिमाग की भी सुने। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो, मेरे साथ भावना के साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आपका दिन ठंडा रहे इस भरपूर गर्मी में भी, मन खुश रहे और सोमवार शानदार गुजरे। मैं चलती हूँ, फिर एक बार मिलूंगी 9 बजे आपसे दिल के तराने गाने नए पुराने लेके, यानी नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक होगा, साथ ही रेट्रो का तड़का भी होगा। लेकिन अब वक्त हो गया है स्पोर्ट्स की पल्स जानने का, जहां कविता शर्मा लेकर आ रही है खेल जगत की हर छोटी बड़ी हलचल और ताजा अपडेट। मैं हूं आपके साथ भावना। आपका मंडे शानदार हो, मुस्कुराहटों से भरा हो और नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़े। हैव अ वंडरफुल मंडे एंड हैव अ वंडरफुल वीक डेज दैट आर कमिंग अहेड। बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स,
0: हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों से भरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। मैं हूं कविता और आज सोमवार का दिन है और इस दिन की शुरुआत खेलों की खबरों के साथ हम करेंगे और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो इस 15 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे यहां पर फीफा वर्ल्ड कप से, क्योंकि फीफा का वर्ल्ड कप का जो अब रोमांच है वो पहुंच चुका है अपने अगले दौर में, जहां पर हमें मिलेंगी क्वार्टर फाइनल।

0: से आगे की रस्ते। और फीफा वर्ल्ड कप में यदि कल खेले गए मैच की बात करें हम, तो कल का जो मुकाबला था, मतलब आज सुबह जो दिन में हुआ, तो स्टीफन की आखिरी मिनट के गोल से कनाडा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। जी हां, कल जो मुकाबला था वो साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में था, जिसे कनाडा ने एक गोल से जीत लिया है। मिडफील्ड स्टार स्टीफन के 92 मिनट में किए गए शानदार गोल की बदौलत सह मेजबान कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ इन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है और पहली टीम बनी है। पूरा मुकाबला रणनीति और संघर्ष से भरपूर रहा और ऐसा लग रहा था कि मैच अतिरिक्त समय में जाएगा, हालांकि कनाडा पूरे मैच में अधिक आक्रामक नजर आया। जेसी मार्श की टीम ने कुल 14 शॉट लगाए और दक्षिण अफ्रीका के गोलकीपर रोनवेन विलियमसन को 7 शानदार बचाव करने पड़े। मैच के 75वें मिनट में कप्तान अल्फोंसो डेविस के मैदान पर उतरने से कनाडा के खेल में एक नई जान आ गई। उनकी तेज रफ्तार ने दक्षिण अफ्रीकी रक्षा पंक्ति को लगातार परेशान किया। दक्षिण अफ्रीका के पास भी कुछ अच्छे मौके जरूर आए, लेकिन वो इसे गोल में तब्दील नहीं कर पाए। उसके बाद फिर यहां जो एक शोर था वो कनाडा खेमे में ज्यादा रहा और इस तरीके से कनाडा की टीम ने यहां पर अब एंटर कर लिया है 16 अंडर जो खेले जाएंगे मुकाबले प्री क्वार्टर फाइनल के बाद। लेकिन एक टीम तो ऐसी होगी जिसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा, वो टीम यहां पर बन गई है साउथ अफ्रीका। और अब बात करते हैं आज देर रात होने वाले मुकाबले की। तो आज रात ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि एशियाई टीम 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को चौंकाने की कोशिश करेगी। कार्लो एंचेलोटी की टीम ने धीमी शुरुआत के बाद टूर्नामेंट में शानदार वापसी की, लेकिन उन्हें प्रभावशाली जापानी टीम से कड़ी चुनौती मिलेगी। ब्राजील ने अपने अभियान की शुरुआत मोरक्को के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ से की थी, जिसमें उन्हें थोड़ा भाग्यशाली भी माना गया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड और हैती के खिलाफ बिना कोई गोल खाए 6 गोल दागे और अब वो इस विश्व कप की असली दावेदारी टीम की तरह नजर आ रहे हैं। हालांकि नॉकआउट चरण में उन्हें स्कॉटलैंड और हैती की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ब्राजील के खेमे में आत्मविश्वास और सकारात्मक माहौल बना हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप के बाद बात करते हैं अपनी अगली खेल खबर की। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार साबित हुई, क्योंकि 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। अनेक खिलाड़ियों ने एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया और कई एथलीट्स ने विश्व स्तर के प्रदर्शन से अपनी दावेदारी मजबूत की। यह प्रतियोगिता आगामी एशियाई खेल 2026 और राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय टीम के चयन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रही। यहां पर सबसे ज्यादा जो आकर्षण के केंद्र रहे कुछ खिलाड़ी, उनके बारे में आपसे बात करते हैं। रोहित यादव बने प्रतियोगिता के सबसे आकर्षण। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 25 वर्षीय रोहित यादव ने अपने अंतिम प्रयास में 87.05 मीटर का शानदार थ्रो करके न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। वो 2026 सीजन की दुनिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रो रहा। रोहित ने अपना पुराना व्यक्तिगत रिकॉर्ड 83.76 मीटर से काफी आगे बढ़ाया और एशियाई खेलों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर दी। इस स्पर्धा में यशवीर सिंह, जिन्होंने 83.72 मीटर दूसरे तथा सचिन यादव 82.32 मीटर तीसरे स्थान पर रहे, दोनों खिलाड़ियों ने भी एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन मानक पार किया। वहीं एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता किशोर जैना 77.21 मीटर के साथ 5वें स्थान पर रहे। मुरली श्रीशंकर की धमाकेदार वापसी। कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.38 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। ये 2026 में किसी भी एशियाई खिलाड़ी द्वारा लगाया गया सर्वश्रेष्ठ लॉन्ग जंप है। एनसी सोजन ने भी इतिहास रचा है। महिला लंबी कूद में केरल की एनसी सोजन ने 6.88 मीटर की छलांग लगाकर भारत की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। यह भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में सबसे यादगार पलों में शामिल रहा। एनसी ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया। चलिए यहां पर आपको एनसी ने इस जीत के बाद क्या कहा सुनवा देते हैं।
1: We are also growing like a world class jumper. I want to be consistent like this. I'm working hard for that, going further more and more. Like a 7-meter jumper, that is my ultimate goal. It is like an hard work that I got first international medal after 10 years. So it is like a hard work, patience and dedication and the belief. I want

0: been gold medal in Asian Games. I want to hear the national anthem. That's my dream. And Asian Games record.
1: तो जब इस तरह से रिकॉर्ड टूटते हैं तो वो खिलाड़ी जो पहले कोई रिकॉर्ड बना लेते हैं उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगली जो आवाज है वो अंजू बॉबी जॉर्ज की है, जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था और उसके बाद एनसी ने ये कारनामा किया है। अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम स्वर्णिम इतिहास में दर्ज है, लेकिन अंजू ने एनसी की अचीवमेंट पर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: I was expecting this record-breaking performance since 2021 when Shaili played from my academy touch 660 and got a world junior silver medal. This year, but they couldn't do. This year I was expecting because this is specially Asian Games year and all the athletes will be at their peak, that for sure. So I was expecting either from Shaili or Ansi. Yeah. So Ansi could break my record. And Mofasina, she is a junior athlete. She is from Lakshadweep, reached 653. Yeah. And hope she will do better. Long jump is such a highly technical event. I crossed 7+ jumps many times. Even in Olympics, I crossed 7 meters, but I couldn't register a valid jump 7+, yeah, though I was capable. So long jump, as I said, highly technical, and getting that right rhythm and right takeoff and reaching up to where we need is really literally difficult. Yeah. And 680+ jump is always world class.
3: अच्छा मैम, क्या लग रहा है एशियन गेम्स में पदक लेके आ सकेंगे हमारी ये खिलाड़ी?
2: Definitely, women long jump we are expecting 2 medals, men long jump we are expecting medals, triple jump, high jump especially, both high jump men and women we are expecting, and all the events in athletics we are doing perfectly well this time.
1: इनसे बात की हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने और अब बात करते हैं आगे। फिलहाल यहां पर ऊंची कूद में भी नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो बन गया। पुरुषों की हाई जंप में सर्वेश कुशारे ने 2.31 मीटर की ऊंचाई पार करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पोल वॉल्ट में सिंधु श्री का स्वर्णिम प्रदर्शन कर्नाटक की। सिंधु श्री ने महिला पोल वॉल्ट में 4.25 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के अलावा एशियाई खेल 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और प्रतियोगिता के शुरुआती दिनों की यदि बात करें तो भारतीय स्टार धाविका ज्योति याराजी ने अपने पसंदीदा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार शुरुआत की थी। वहीं गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ का खिताब अपने नाम किया। इस थिन हैमर थ्रो में अनुष्का यादव, पोल वॉल्ट में देव मीना ने भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर प्रतियोगिता को ऐसी ऐतिहासिक एक शुरुआत दी थी। अनुष्का भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक बनी। 18 वर्षीय सनसनीखेज खिलाड़ी अनुष्का यादव ने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 67.02 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ भारत के सीनियर महिला हैमर थ्रो राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कई खिलाड़ियों ने यहां पर एशियाई खेलों का टिकट जो है वो हासिल किया है। जैसा मैंने अभी बताया, भारतीय एथलेटिक्स के लिए सकारात्मक संकेत है ये 5 दिन तक चली राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जिसमें कई रिकॉर्ड टूटे, अनेक मीट रिकॉर्ड बने और खिलाड़ियों ने विश्व स्तर के प्रदर्शन किए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय एथलेटिक्स नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। खासकर थ्रो, जंप और स्प्रिंट स्पर्धाओं में युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन भविष्य के लिए उत्साहजनक रहा। प्रमुख उपलब्धियां रोहित यादव, जैसे मैंने बताया, 87.05 मीटर के साथ दुनिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रो रहा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 भारतीय एथलेटिक्स इतिहास की सबसे सफल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक रही।
4: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: अब लिए चलते हैं आपको क्रिकेट के ग्राउंड में, जहां भारतीय महिलाओं के लिए एक निराशाजनक खबर है, साथ ही साथ फैंस के लिए भी है। महिला T20 विश्व कप के ग्रुप चरण के अंतिम और बेहद अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस हार के साथ भारत का पहली बार T20 विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका बिना मैदान पर उतरे ही सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा था, लेकिन टीम एक बार फिर बड़े मैच में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 तय नहीं कर पाई। तेज गेंदबाजी विभाग में शामिल सभी 4 पेसर्स को मौका मिला, लेकिन कोई भी लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर सका। यहां पर क्या कहते हैं कोच अमोल मजुमदार, आइए सुन लेते हैं।
5: आई थॉट एट द हाफ स्टेज 170 आई थॉट वाज अ गुड स्कोर एंड आई गेस द इट वाज अ पावर स्कोर ऑन दिस पिच। So what we did, we even got the momentum towards the end of that innings, and I think we carried it on the field as well. It's just that I think at the end of the day, I think Australia were a better side than us.
1: तो इसी के साथ अब

टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का सामना वेस्टइंडीज से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ये वही दिन है जब T20 के इतिहास में एक खिताब भारत की झोली में आया था। रोहित शर्मा के कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप जीत करके हमने इतिहास रचा था। और फिलहाल ये आज का दिन भी ऐसा ही रहा, जहां पर अब हम ये बता रहे हैं कि टीम इंडिया जो है महिलाओं की, वो आगे नहीं बढ़ पाई। एक बहुत बड़ा उलटफेर क्रिकेट जगत में ये भी हुआ है कि भारतीय टीम, जो कि एक लंबे वक्त के बाद T20 खेल रही थी वर्ल्ड कप विजेता बनने के बाद, वो आयरलैंड जैसी टीम के साथ उन्होंने 2 T20 मुकाबले खेले और उसके बाद इन्हें इसमें हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड ने बड़ा लुटफेर किया। आयरलैंड ने भारत का 2 मैचों की T20 सीरीज में सुपड़ा साफ करके इतिहास रच दिया। आयरलैंड की टीम ने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में भारत से सीरीज जीती है। मेजबान टीम ने रविवार को दूसरे मुकाबले में 1 रन से रोमांचक जीत हासिल कर ली और इसी के साथ ये भी सुनिश्चित कर दिया कि किसी भी टीम को कम नहीं आका जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है और ये अनिश्चितताएं हमें मैदान में बिल्कुल नजर आ गई दोस्तों। और जिस तरीके से आयरलैंड ने यहां पर टीम इंडिया के साथ ये जो सीरीज खेली है, इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इंडिया को अभी बहुत कुछ यहां सीखने की जरूरत है। फिलहाल कार्यक्रम का वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहे हैं हम भी बात करेंगे हॉकी की। FIH हॉकी प्रो लीग 2025-26 के पुरुष वर्ग का खिताब बेल्जियम ने अपने नाम कर लिया। रेड लायंस ने नीदरलैंड्स पर शानदार जीत दर्ज करके 1 मैच शेष रहते ही खिताब अपने नाम कर लिया। ये बेल्जियम का दूसरा FIH प्रो लीग खिताब है। इससे पहले उसने 2021 में उपलब्धि हासिल की थी। इस जीत के साथ बेल्जियम ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी सुनिश्चित कर लिया। पूरे सत्र में बेल्जियम ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग 2025-26 के अपने अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर सीजन का समापन सकारात्मक अंदाज में किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बिल्कुल भी एकदम इक्वल चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये जो जीत है भारत के खेमे में गई और इस जीत के साथ भारत को 2 अंक मिले और फिलहाल जो भारत का जो पायदान रहा वो इसमें रहा 8th पोजीशन और टीम यहां पर थोड़ा सकारात्मक प्रभाव जरूर डाल पाई इस जीत के बाद।

0: चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ पर हम वॉलीबॉल से जुड़ी हुई कुछ खबरें, क्योंकि भारत के लिए वॉलीबॉल में भी एक इतिहास जो है वो बन गया है। एशियाई पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार कांस्य पदक जीता है टीम ने। भारत ने पहली बार आयोजित एशियाई पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करते हुए इतिहास रच दिया। 20 से 28 जून तक गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के इतिहास का पहला पदक जीता। मेजबान भारत ने कांस्य पदक मुकाबले में गत चैंपियन बहरीन को हराकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। ग्रुप चरण में भारत का दबदबा दिखाई दिया। भारतीय टीम ने पूरे ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के बलबूते भारत जो है कांस्य पदक जीतने में जरूर सफल रहा और सेमीफाइनल में भले ही उन्हें हार मिल गई, लेकिन यहां फैंस का जो दिल है वो इस टीम ने जरूर जीत लिया और ये दिखा दिया कि वॉलीबॉल में भी भारत का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है। और अब चलते चलते एक नजर बैडमिंटन से जुड़ी हुई खबर पे, क्योंकि बैडमिंटन में भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारत के किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में रनरअप रहकर भारत को यहां पर पदक दिलवाया है और फिलहाल उन्हें चीनी ताइपे के सूली यांग से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पदक जो है वो जरूर इनके झोली में आया। इसी के साथ अब स्पोर्ट्स पल्स कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त है। इसी के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: Sports Pulse.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। और जब ये गाना चलता है ना, हर बार मैं ये कहती हूँ कि इस गाने के आखिरी साउंड तक इसको मैं पूरा सुनती हूँ। जब ये ट्रेन से जो आवाज़ आती है ना, भाप इंजन की, और पूरा देखना भी अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है, और इसको सुनना, इसके साउंड को इमेजिन करना और सुनना, महसूस करना भी एक अपने आप में मज़ा है। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है ट्रेन में, लेकिन बहुत लोग हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। जब भी कहीं जाना होता है किसी को कहीं पर, तो ट्रेन एक बहुत बहुत अच्छा जरिया है यात्रा को कंप्लीट करने का। अच्छा, कई लोगों की कई कहानियाँ हैं रेल के साथ। कई लोगों की कहानी इस वजह से भी होंगी कि वो ट्रेन में नहीं बैठे हैं, वो एक बार ट्रेन में बैठना चाहते हैं। कई लोगों की कहानियाँ इस वजह से है कि वो ट्रेन में बहुत बैठे हैं, बहुत तरह के लोगों से मिले हैं। तो सबके अपने मज़े हैं। जितने भी आप ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स देखेंगे, सबका अपना अपना मज़ा है और आनंद आता है। जिसको भी आप ट्रैवल करें, चाहे आप रोड ट्रैवल करें, या फिर आप ट्रेन से करें, या फिर आप एयर से करें। अभी फ़िलहाल आप सभी के लेकर बेहद खूबसूरत ट्रैक लेकर आई हूँ कार्तिक की आवाज़ में, गजनी फिल्म से। आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में ढेर सारी बातें मेरे पास हमेशा की तरह आप सभी को अपडेट करने के लिए।

अच्छा, एक फ्रेश ब्रीज यानी कि एक ऐसी हवा सी एक आई है जो कि बहुत बहुत अच्छी बात लेकर आई है और उन सभी बच्चों के लिए बहुत शानदार बात है जो ब्रेवरी और ऐसी कुछ चीज़ों में है जो कि उनको दूसरे बच्चों से अलग करती हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 की, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है और देश के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने और मान्यता देने वाला ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। और अपने सभी सुनने वालों को हम बता दें कि नामांकन या आवेदन करने की आखिरी तिथि जो है वो है 31 जुलाई 2026 और आयु सीमा है बच्चों की जो होनी चाहिए 5 से 18 वर्ष के बीच। बच्चा भारत का नागरिक या फिर निवासी होना चाहिए। कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो भी हम आप सभी को बता दें। वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आधिकारिक तौर पर जैसा हमने आपको बताया कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चों को आप जानते हैं जो आपके आसपास रहते हैं या आपके घर में हैं, आप ज़रूर उनके लिए आवेदन करें। और आवेदन के लिए आपको जाना होगा किन पोर्टल्स पर, हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आप जा सकते हैं या फिर माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी आप जाकर से जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था बच्चों को नामांकित कर सकते हैं और बच्चे अपना सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त देश के किसी भी हिस्से से, अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो असाधारण तौर पर योगदान दे रहा है इन सभी क्षेत्रों में जो हमने आपके साथ साझा किए, आप ज़रूर उनके नाम को आगे करें और उस बच्चे की मेहनत को पहचान दिलाएं। और यूं ही हमारे साथ बने रहे, आप सुन रहे हैं कर्ट मॉर्निंग डेली एनसीआर आकाशवाणी के FM रेनबो पर रेणु भट्ट के साथ।

एग्जैक्टली इस उम्र में सब कुछ करना है. अब स्कूल पूरा हो गया है तो कॉलेज भी तो करना है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, जॉब भी करना है और उसके बाद आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. तो इसीलिए आपको रीच आउट करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, DU को आपको जाना है अगर आप वहाँ पर से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और कॉमन सीट आवंटन प्रणाली के पहले चरण की शुरुआत तो हो गई है. जिन भी एप्लीकेंट्स ने CUET UG 2026 परीक्षा दी है और DU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CSAS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. इस पोर्टल पर पंजीकरण किए बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें. DU के 67 कॉलेज में जो कोर्सेज हैं वो 73 स्नातक पाठ्यक्रम में आप एडमिशन इसी के थ्रू ले सकते हैं. कई सारी चीज़ें हैं जो DU ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर दिया, आपको उस गाइडलाइन को पढ़ना है अच्छे से और तभी आपको चीज़ों को फॉलो करना है. और हम आपको बता दें कि पंजीकरण प्रारंभ हो गया है लेकिन इसकी अभी अंतिम तिथि की कोई घोषणा नहीं हुई है. आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स ले सकते हैं और UG@admission.DU.ac.in पर भी स्टूडेंट्स संपर्क कर सकते हैं. आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसमें आपको जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी आपको वहाँ पर भरना है. अपने सारे दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जितने भी लिसनर हमारे अभी स्टूडेंट हैं और DU में अप्लाई करना चाहते हैं, आप उन सब की फ़ाइल बनाकर ना अपने पास रख सकते हैं ताकि लास्ट मोमेंट आपको ना कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढने में दिक्कत ना हो. सब बैच के तौर पर या फाइल के तौर पर आपके पास रहें और आपको इधर उधर ना जाना पड़े. तो इस बात की आप ज़रूर मेक श्योर आप कीजिएगा कि आपके पास सारी चीजें साथ रहनी चाहिए. किस तरह से आपको पेमेंट करना है वो

भी आपको ध्यान में रखना है, पहले आप प्री डिसाइड करके रखें कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है। एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे वेबसाइट पर जाके, सारी डिटेल्स आप ले लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा एडमिशन लेने में। और इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, टेक योर टाइम और सारी चीज़ें आप अपने साथ रख कर ही एक ही बार में एडमिशन लेना प्रोसेस शुरू करें। तो इस बात को ध्यान में रखें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
3: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
4: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
5: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
4: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का

0: आज
1: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

वेलकम बैक सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर बहुत चिक्के हम लोग हैं यानी कि डेली आइट्स हैं। हम वेट कर रहे हैं कि बारिश हो क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता जा रहा है और इससे बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है और इस गर्मी से अभी तो हमें यानी कि दिल्ली वालों को राहत मिलने के चांसेस नहीं है, आज तो बिल्कुल नहीं है। और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की ओर नज़र डालें तो 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, करंट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी लेवल जैसे मैंने कहा कि बढ़ता रहेगा। हाँ, दिन में जो है हम लोगों को सूर्य देवता और बादलों के बीच में लुका छुपी का खेल ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बारिशों के दौर की बात करें तो आने वाला जो बुधवार उससे थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि बारिशों की ओर हम बढ़ सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं, या फिर दिल्ली जो इंतजार कर रही है बारिश में भीगने का वो इंतजार पूरा हो सकता है बुधवार से। लेकिन बुधवार तक यानी कि आज और कल हमें गर्मी झेलनी पड़ेगी। हम गर्मी झेल पा रहे हैं एनी हाउ, बहुत मुश्किल ज़रूर हो जाता है ह्यूमिडिटी इस तरह की गर्मी को बर्दाश्त करना, लेकिन एक बार फिर से हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों के लिए फिर भी आसान है इस तरह की गर्मी को बर्दाश्त करना। लेकिन हमारे आसपास हमारी प्रकृति में बहुत ऐसे जीव हैं, जीव जंतु हैं जिनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हमें अपना दिल थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है और ऐसे में उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जीवों के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आप छोटा सा कटोरा या बर्तन पानी का रख सकते हैं, मटका आप कहीं पे रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे खाने के लिए कुछ रख दें या दे दें तो भी ज़रूरत है। इस टाइम पे बाहर जब पानी रहता है ना तो वो भी बहुत गर्म हो जाता है, तो आप प्लीज़ ये देखिएगा कि उसे समय समय पर बदलते रहें या थोड़ा छांव में रखें ताकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जिसे पीने में दिक्कत ना है। इस बात को ध्यान में रखें और हमारे साथ आप अपनी बातें शेयर करते रहते हैं। आप अगर कोई मेल करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो आपकी बातों का बहुत बहुत स्वागत है। आप कर सकते हैं हमें ईमेल, हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@fmrainbow@gmail.com feedback@fmrainbow@gmail.com पर हमें मेल करना है और आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। हमारी बातों को सुनकर अगर आपने कोई भी इनिशिएटिव लिया है तो आपकी उस इनिशिएटिव का भी बहुत बहुत स्वागत है, हमें ज़रूर बताएं। जो भी आप हमसे जानकर अगर करते हैं या कर रहे हैं पहले से ही तो आप हमें बताएंगे तो हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ईमेल हमें ज़रूर करें, मैसेजेस आपके मिलते रहते हैं, लेकिन मेल करेंगे तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। विशाल डडलानी की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए। come on, come on.

0: डांस बसंती।
1: गाने बजाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में, और इसी से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी बात मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। दिल्ली से जुड़ी हुई है ये कि दिल्ली में द्वारका सेक्टर 29 में बनाया जा रहा है निगम का पहला डॉग शेल्टर, जो कि नवंबर तक बनकर तैयार होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और इसमें लगभग 1500 लावारिस कुत्तों को रखने की क्षमता होगी। 2.5 एकड़ के इस शेल्टर होम का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, और क्योंकि दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए समाधान ढूंढे जा रहे हैं, तो एमसीडी प्रशासन ये कई सारे डॉग शेल्टर बना रहा है। और ये हमारा एमसीडी का पहला जो है डॉग शेल्टर है, और हम आगे उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे शेल्टर्स और बने, ताकि उन सभी को भी रहने की और सर छुपाने की जगह मिले जिनके पास अभी जगह नहीं है, और वो सभी लावारिस कुत्ते सड़कों पर ऐसे ही घूमते रहते हैं।

रोबोट फिल्म से आपने ट्रैक सुना, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो जरूर जरूर आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म। अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि 36 पीएचडी कार्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुका है और 1 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है। यानी कि अभी भी आपके पास 2 दिन है, आज और कल का, आप जा सकते हैं और ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर किसी वजह से आप नहीं फिल कर पाए हैं तो ज़रूर आप फिल करें, 1 जुलाई आखिरी डेट है, आप इसको ज़रूर याद रखें। आप इनकी ज़्यादा वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जितने भी नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप वहाँ पर जाकर के ज़रूर पता करें, अपने आप को अपडेट रखें और ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन लें और ऑनलाइन ही आवेदन करना है आपको, इस बात का भी ध्यान रखें। आप सुन रहे हैं कुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर।

अच्छा, हम जब बाहर जाते हैं ना, शहरों की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, हर जगह की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, लेकिन पार्किंग एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जो आप कहीं भी जाएंगे, आप शहरों में जा रहे हैं और या फिर आप छोटे शहरों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, मुझे लगता है हर जगह ये प्रॉब्लम ना बढ़ती जा रही है, अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। ऐसे में जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, दिल्ली जैसे जो कि नेशनल कैपिटल भी है, ऐसे में पार्किंग की समस्या एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के तौर पर सामने आती है। इसके बहुत उपाय किए जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए हम आप सभी को बता दें कि नगर निगम इस एक वर्ष में 3 बहुमंजिला पार्किंग बनाएगा, ऐसी बात सामने आ रही है और इसकी तैयारी एमसीडी प्रशासन ने शुरू कर दी है। जंगपुरा, कालकाजी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बहुमंजिला कार पार्क

पार्किंग का निर्माण होगा जिसमें 400 से अधिक कारें पार्किंग की सुविधा इनको मिलने वाली है। जब आपके लिए सरकार ऐसी कोई सी सुविधा का निर्माण करती है तो आपसे इस बात की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप उस सुविधा का इस्तेमाल भी करें, ये ना सोचें कि वहाँ तक कौन जाएगा, अपनी गाड़ी इतनी दूर जाके पार्क क्यों करनी है और बहुत समय लग जाता है, थोड़ा समय आपको भी अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा ताकि सड़कों पर जाम ना लगे, सड़कों पर आप अपनी गाड़ी को ना खड़ी करें, जहां पर उनके लिए जगह बनाई गई है वहां पर आप जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे तो आपके लिए भी सहूलियत है और आने जाने वालों के लिए भी सहूलियत है, इस बात का ध्यान रखें।

वेल, अगर किसी के पीछे भागना है तो सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के पीछे भागना है, इस बात को याद रखना है। और मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत, कल फिर मिलूंगी आपसे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, दिल के पुराने गाने नए पुराने में। जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि आगे कौन कौन से प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मेरे जाने के ठीक बाद यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे दिल के पुराने गाने नए पुराने, भावना के साथ उत्कर्ष लेके आएंगे मास्टर्स म्यूजिक, और 10

बजकर 5 मिनट पर, बबीता त्रिपाठी के साथ सुनेंगे आप बॉलीवुड थ्रिल्स 11:05 पर। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहे 24/7 साल के 365 दिन। मैं रेणु भट्ट लेती आप सभी से इजाजत, गुड बाय एंड टेक केयर, गुड डे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से भावना। कार्यक्रम शुरू हो चुका है दिल के तराने, गाने नए पुराने। वक्त स्टूडियो क्लॉक से अपने जो रिस्ट पे बांधी हुई घड़ी है ना, उससे मिला लीजिए। सुबह के ठीक 9 बज रहे हैं। अरे कोई तो जरा इस मंडे से कह दू, मंडे जरा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाना। संडे को भी पूरी तरह जी भी नहीं मैं पाई थी कि तुम फिर से दस्तक दे चुके हो मंडे। यानी मन का मंडे, मन ना भी करे लेकिन मंडे को अपनाना तो पड़ेगा। लेकिन क्या करे?

मंडे है और मन कह रहा है चलो अब काम पर लग ही जाओ क्योंकि मंडे की शुरुआत हो चुकी है। और सच तो यही है कि मन लगे ना लगे, मन लगाना तो पड़ेगा। तो चलिए नए हफ्ते की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करते हैं। जोर से हंसिए, जोर से ठहाके लगाइए क्योंकि हम मुस्कुराना कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। घड़ी के 9 बजते ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है दिल के तराने गाने नए पुराने लेके, और सड़कों की रफ्तार भी इस समय पकड़ी जा चुकी है दिल्ली में, क्योंकि कोई इस समय ऑफिस की ओर निकल रहा है, कोई मेट्रो का सफर कर रहा है, तो कोई घर के नाश्ते की खुशबू के साथ दिन की बेहतरीन शुरुआत कर रहा है। और चाहिए भी क्या, जिंदगी में गर्मी अपने पूरा शबाब पर है, पूरा असर दिखा रही है। पानी पीते रहिएगा, धूप से बचेगा, और अपना ख्याल तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत कि ये नहीं रखना है, अपना ख्याल पूरी भरपूर तरीके से रखना है। जून का महीना अब विदा लेने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, यानी आधा साल पूरा हो गया। वो जो रेजोल्यूशन आपने लिए थे ना, उसका क्या हुआ? अभी भी आप कह रहे हैं देखी जाएगी, आधा साल है अभी, देख लीजिए। चलिए संगीत की शुरुआत करते हैं, सोमवार को थोड़ा आसान, थोड़ा खुशनुमा बनाते हैं। नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक होने वाला है, रेट्रो का साथ भी होने वाला है, मेरा और आपका साथ अगले 1 घंटे बरकरार रहेगा। चलिए धड़ाधड़ गाने की लिस्ट के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि ये दिल धड़क रहा है मेरे दोस्तों।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, यानी नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का सफर जारी है। लेकिन मेरे दोस्त, मौसम का हाल भी तो यहाँ बताना आपको जरूरी है, क्योंकि आप दिल्ली की सड़कों पर निकल चुके हैं और आपको भीषण गर्मी का इस समय सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं ना, खून पसीने की कमाई बड़े काम आती है, तो ये बस पसीने की कमाई है जो हम सबको काम आ रही है। आपको बता दें कि इस समय जो उमस भरी गर्मी दिल्ली में हम सब सफर कर रहे हैं, उसके लिए अब IMD ने, यानी कि मौसम विभाग ने, एक अच्छी खुशखबरी दी है। सोच लेते हैं कि अच्छी खुशखबरी, क्योंकि 2 जुलाई के बाद मौसम बदलने वाला है, लेकिन अभी भी कुछ दिन हैं जहां आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा। यानी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब अटक ही गई है सुई और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस समय हो रही है। लेकिन इस सब के बीच हमें और आपको अपना ख्याल रखना है, छाता जरूर लेकर बाहर निकल रहा है, सनग्लासेस लगा लीजिएगा, सिर्फ फैशन के लिए नहीं लेकिन आंखों के बचाव के लिए भी। साथ ही साथ हल्के कपड़े पहनिएगा और सूती कपड़े पहनिए, पानी पीते रहिए। और हमारे जो इंडियन पे है उसको कैसे भूल गए आप, कहाँ आप मॉकटेल के ज़माने में जी रहे हैं। हमारे जो भारतीय पेयजल है ना, वो इतने स्वादिष्ट हैं, उनका भी मज़ा ले लीजिए। इसी गर्मी में आता है इनका मज़ा, आम का मज़ा तो आप ले ही रहे होंगे, लेकिन छास है, आम पन्ना है, फिर आप दक्षिण में चले जाइए अलग आपको मिल जाएगी, फिर आप पूरब में चली जाइए आपको अलग ड्रिंक मिल जाएगी। ऐसे इंडियन ड्रिंक्स जो है ना, हमारी सुपर ड्रिंक्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्वाद में ही अच्छी नहीं है, ये हमारे पोषण के लिए भी बहुत अच्छी, और जिसकी बात आजकल हम कर रहे हैं ना गट हेल्थ के लिए, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो आप अगर गड्डी लेकर निकल चुके हैं, रास्ते में कोई मोड़ आ चुका है, ट्रैफिक का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो मेरे दोस्त जरा डिस्टेंस बनाकर रखिएगा और फालतू में हॉर्न बजाकर कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि रेड लाइट है तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी, रूल्स तो ब्रेक नहीं करने ना। तो ऐसे में एक तो आप शांति बरकरार रखिए, 102.6 FM के साथ दिल के तराने, गाने नए पुराने सुनते रहिए और मंडे की शुरुआत बेहतरीन कीजिए। कोई भसड़ नहीं चाहिए, कोई गुस्सा नहीं चाहिए, हंसिए मुस्कुराइए, शांत रहिए और दिन की एक बेहतरीन शुरुआत हमारे साथ कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: और अब वक्त हो चला है रेट्रो गीत की सुनने का, और अब जो गीत आने वाला है ना, उसमें मोहब्बत की बात भी है, शिकायत भी है, इंतजार भी है और अजीब सी वफादारी भी है। आइए आपको गीत सुनवाते हैं तड़पाओगे तड़पाना, लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा ये गाना। एंजॉय कीजिए इस मंडे मॉर्निंग।

0: कहलो।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और एक और रेट्रो गीत का वक्त आ चला है। एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही ना कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहले प्यार की मासूमियत, पहली मुलाकात की धड़कनें और दिल की वो मीठी सी हलचल, इन सबको ना बड़े ही चुलबुले अंदाज में समेटता है ये रेट्रो गीत। फिल्म CID का ये सुपरहिट नगमा है जिसे मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और आशा भोसले ने अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है। संगीत है ओपी नैयर का और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। तो मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और ये सुनिए सदाबहार तराना लेके पहला पहला प्यार।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और अब ना बारी एक ऐसे गीत की जो बजते पुराने दौर की चंचल अदाओं और मुस्कुराहटों की याद ताजा कर देता है। ये वो जमाना था जब प्यार की बातें भी नजाकत से होती थी, इजहार भी गीतों के जरिए होता था और हर धुन में एक सादगी, एक मिठास बसती थी। फिल्म बहार का ये सदाबहार गीत शमशाद बेगम की दमदार और चुलबुली आवाज

में आज भी उतना ही ताजा लगता है। संगीत है एसडी बर्मन का और बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने। तो मुस्कुराइए, पुरानी यादों की गलियों में चलिए और सुनिए सैया दिल में आना रे।

0: सुनते रहिए दिल के तराने, गाने नए पुराने।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और दोस्तों, इसी के साथ सुरों और यादों से सजा ये एक घंटे का सफर अब अपना विदा लेने को है, यानी कि इस पर लगा रहे हैं विराम। उम्मीद है कि आपको नए और पुराने गीतों की ये जो महफिल है ना, आपके सोमवार की शुरुआत को और थोड़ा खुशनुमा बना गई होगी। और अगर सुबह की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी आई होगी ना, तो मानिएगा मेरा प्रयास सफल रहा, हमारी टीम का प्रयास सफल रहा। मैं हूं आपके साथ भावना। अब लेना चाहूंगी आपसे अनुमति, लेकिन संगीत का सिलसिला यही नहीं थमने वाला है, क्योंकि अब बारी है पश्चिमी धुनों की, यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक की और इंटरनेशनल हिट्स की। आ रहे उत्कर्ष लेकर मैचलेस म्यूजिक, अब एक ऐसा शो जो समर्पित है बेहतरीन वेस्टर्न म्यूजिक को। मैं चलती हूं, हैव अ वंडरफुल मंडे, और यूं ही आपका हफ्ता मुस्कुराते हुए बीते। सुनते रहिए FM रेनबो 102.6 FM। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।
2: दिस इज something

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की

संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रॉड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: We will also never let you go, for sure. But you know what they say, absence makes the heart grow fonder. So please allow us to make you grow even fonder of us with this very short break. Stay tuned.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: टाइम फॉर एन अपडेट ऑन द ट्रैफिक। देयर विल बी ए कंप्लीट नाइट क्लोजर ऑफ बोथ कैरिजवेज ऑफ द भोगल फ्लाईओवर मथुरा रोड फ्रॉम मिडनाइट टू 4 AM टुनाइट एंड 2nd July। लेट रिटर्नर्स, night commuters and all those headed to the Hazrat Nizamuddin railway station, beware. Anyway, here's our first Hindi song of the hour, Ye Dil Tum Bin Lagta Nahi, from the movie Izzat, sung by Lata Mangeshkar and Mohammad Rafi, lyrics by Sahir Ludhianvi and music by Lakshmikant Pyarelal.

0: Tropical music really takes the edge of a hard day, doesn't it? Reminders of beaches and cool drinks are helpful at all times. So, fix yourself some cool drinks as we take the last brief break of this hour.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है।

0: आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: And with that, it is time for the last Hindi number of the hour, and we give you Musafir Hoon Yaaron, an evergreen tune sung by Kishore Kumar with lyrics by Gulzar and music by R.D. Barman.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल।

शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर ये समय है बॉलीवुड ट्रेल्स का, यानी बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें, ढेर सारी अपडेट्स इसी समय होती हैं, इस घंटे होती हैं और साथ में होते हैं आपके मनपसंद एकदम नए नए ताजा तरीन बेहतरीन गाने भी उन्हीं अपडेट्स के साथ। तो आपके लिए एक सवाल भी तो है और भी तो बहुत कुछ है जो आपको इस शो को बिल्कुल छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा, मजबूर कर देगा ऐसा नहीं बोल सकती, मजबूर नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आपके लिए एक सवाल होता है और उस सवाल का जवाब देना है अगर तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होता है और सवाल पूछा जाएगा लगभग 11:30 बजे। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी समझनी जरूरी है क्योंकि आप बॉलीवुड से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं बबीता त्रिपाठी के साथ भी। तो आप जुड़े रहिए इस शो बॉलीवुड ट्रेल्स में बबीता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है। एंजॉय।

देखिए जी, आंखों से आंखें चार तो यहाँ पर हो नहीं सकती, यहाँ पर तो हम दिल से दिल मिलाते हैं, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो के जरिए हम दिल की बातें करते हैं और अपने मन की बातें, हमारे मन की बातों में ये भी शामिल है कि हम बॉलीवुड की बातें करें, क्योंकि बॉलीवुड थोड़ा सा हमें फिल्मी कर देता है और हम फिल्मी होना बड़ा पसंद कर देते हैं। और हमारे जो स्टार्स हैं वो इसीलिए स्टार्स हैं क्योंकि हमने उनको अपने दिल में जगह दी है। तो उन स्टार्स के बारे में जानना समझना नहीं चाहेंगे आप, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं और कर रहे हैं, वैसे बॉक्स ऑफिस का क्या हाल है ये भी तो जानना है। चलिए मैं बताती हूँ, फिलहाल आपको बता दूं कि आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि 11:30 बजे आपके लिए एक व्हाट्सएप मैसेज वाला करने वाला एक सवाल आएगा जिसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे तभी जब आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे ध्यान से। और आसान सा सवाल होगा वैसे, क्या पता आप वैसे भी बिना सुने भी आप जवाब दे दें, अगर आपका ज्ञान बॉलीवुड की दुनिया में उत्तम है तो। फिलहाल आपको बता दूं कि उस जवाब का अगर आप उस सवाल का जवाब अगर आपने सही दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और बॉलीवुड सरताज बनने के लिए इतनी आसान सी बात करनी हो तो कौन ही नहीं चाहेगा बॉलीवुड सरताज बनना, क्योंकि हमसे बात करने का मौका जो मिलता है आपको। फिलहाल इतनी सी बात, अभी आपको बता दूं बॉक्स ऑफिस का हाल। वेलकम टू द जंगल रिलीज हो गई और रिलीज होने के बाद क्या धमाल कमाल और बवाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर, जानना अगर आप चाहेंगे तो हम बिल्कुल बताना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या पता आपने वेलकम टू द जंगल नहीं देखी है और आप इस बात के इंतजार में हो कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर चल कैसे रही है। जब अच्छी चल रही होगी तब जाएंगे, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जिस तरह से वेलकम टू द जंगल की शानदार बातें हो रही थी, इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट, इतने सारे स्टार्स एक साथ आने को तैयार थे और ऐसे में बहुत सारी चर्चा गर्म थी, तो वो गर्मा गर्म खबर आ गई है कि अब वो चल कैसे रही है। 26 जून को ये सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और उसके बाद से ये वेलकम की तीसरी जो फ्रेंचाइजी है किस तरह से कमाल कर रही है वो बता देती हूँ। पहले दिन 15.25 करोड़ ओपनिंग हुई, उसके बाद 31.1% की अच्छी बढ़ोतरी, उसके बाद भी पॉजिटिव रिस्पांस आता रहा और खास तौर पर लास्ट के दिनों में और बढ़िया, मतलब वीकेंड पर बहुत बढ़िया कमाई की इसने, 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग की दूसरे दिन, उसके बाद कलेक्शन आता गया और अब 63.75 करोड़ भारत में, और वर्ल्ड वाइड बात करें तो 59.75।

करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया है। सौदा बुरा नहीं है। सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

श्रद्धा कपूर की एक मूवी आने वाली है ईठा। रिलीज से पहले थोड़ा सा विवादों को में घिर गई है। पता है क्यों? क्योंकि टाइटल ना कुछ अलग डिमांड किया जा रहा है कि टाइटल को बदलना चाहिए, ईठा के बजाय कुछ रियल बायोपिक जिस पर ये बन रही है मूवी वो नाम रखा जाना चाहिए। ये मूवी बन रही है लावड़ी कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के रूप में, जो श्रद्धा कपूर हैं वो निभा रही हैं इस रोल को। और ये लावड़ी और तमाशा कलाकार हैं विठाबाई नारायण गांवकर। और इन पर जब ये मूवी बन रही है तो उनके परिवार वालों का कहना है और भी लोगों का कहना है कि भाई जब विठाबाई का कैरेक्टर निभा रही हैं, उन पर बायोपिक बन रही है, तो नाम ईठा क्यों, विठाबाई क्यों नहीं। अब फिल्म किसने बनाई है, नारायण उतेरकर जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या सोचकर या उनकी टीम ने क्या सोचकर ईठा नाम रखा है, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विवाद गहरा रहा है बॉस, और विवाद इस तरह से अगर लंबा हुआ तो क्या पता ईठा का नाम विठाबाई हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये हो सकता है। तो फिलहाल तो हम इंतजार करेंगे, नाम कुछ भी हो ये मूवी आए, ताकि हम भी इस कलाकार के बारे में और बेहतर जान पाए, है ना। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से या नहीं, क्योंकि 11:30 बजे आपके लिए सवाल लेकर आऊंगी। बॉलीवुड सरताज जो बनाना है आपको,

मिर्जापुर जो सीरीज आई थी उसमें आपने किसी कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दिल से पसंद किया हो तो बताइए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बिल्कुल यूनिक नहीं था। उसमें हर कैरेक्टर अपने आप में एस्टैब्लिश्ड था, यूनिक था और बहुत एंटरटेनिंग था, है ना। और शायद इसी वजह से ये मूवी आ रही है, मिर्जापुर द मूवी। और इस मूवी में हमारे गुड्डू भैया उसी तरह की कुछ तैयारी के लेकर आएंगे, ऐसा उनका कहना है। गुड्डू भैया कह रहे हैं कि तैयार हैं एकदम, और उसी तरह की तैयारी की थी जैसे कि उन्होंने वेब सीरीज बनाने से पहले की थी, और अब ये मूवी एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के काम में बिजी है, मतलब इस पर चल रहा है ये काम, और जनता की फिल्म है और पहले सीजन की तरह ही वो ओरिजिनल कलाकार का लुक उनको दिया गया है और लोगों को वैसा ही मजा आने वाला है। गुड्डू भैया कौन? अली फजल। जानते नहीं है हमारे गुड्डू भैया को? अली फजल से ज्यादा हम गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं उनको। तो अभी तो वो निर्माता भी बन चुके हैं, अभी तो अपना प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, बहुत सारी न्यूज भी आने वाली है उनके बारे में। तो आप बस ऐसे ही सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता।

पार्टी के साथ। वैसे बीटी नहीं भी बताएंगी तो कोई और बताएगा, लेकिन इस घंटे बॉलीवुड की खबरें पक्की हैं आपके लिए। बस आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक पर, क्योंकि हमारे लिए पहला

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
4: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
5: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
6: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
5: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
7: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

बात और जुबान पे थी। क्या कमाल की जोड़ी है सैफ अली खान और हमारे खिलाड़ी कुमार आई मीन अक्षय कुमार की। फिर तो ये जोड़ी बहुत लंबा इंतजार करवाती रही एक साथ आने के लिए, और अब जब आ रही है तो हम तो आपको कुछ अपडेट देना चाहेंगे ही, बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन हाँ रिलीज डेट इनकी एक साथ जो मूवी आ रही है उसकी आ गई है, तो ये खबर तो बनती है ना, 11 सितंबर हैवान मूवी देखने जाएंगे कि नहीं, और अगर नहीं जाएंगे तो इस गाने को फिलहाल एंजॉय कीजिए, तब तक मूड बनाइए, टाइम बहुत है।

और आप बिल्कुल खफा मत रहिए, आपके लिए सवाल एकदम रेडी है। 11:30 बजने ही वाले हैं और आपके लिए सवाल आएगा और उसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज।

तो भैया सैफ अली खान और अक्षय कुमार की सस्पेंस थ्रिलर 11 सितंबर को हैवान नाम की मूवी रिलीज हो रही है और आपको अगर देखना है तो अभी बहुत सारा टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिलहाल आप इंतजार कर रहे थे कि आपका सवाल कहाँ गया भाई, तो लीजिए आपका सवाल हाजिर है, हमारा सवाल हाजिर है जिसका जवाब आपको देना है। और अगर आज किस्मत ने साथ दिया तो बॉलीवुड सरताज क्या पता आप ही हो और हमसे बात करने का मौका मिले। तो चलिए आपको सवाल अब बताते हैं। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल का जो रोल है या कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? बता तो दिया, बस आपको बताना है व्हाट्सएप मैसेज करके। कैसे? 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, और अगर बॉलीवुड सरताज ना भी बने तो आपका नाम शामिल होना तो एकदम पक्की बात है, है ना सौदा एकदम खरा खरा। तो फटाफट अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप मैसेज कर डालिए। नंबर अगर नहीं सुना तो वो भी बता देती हूँ, इवन सवाल भी बता देती हूँ। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड रील्स, बोले तो बीटी विद बीटी।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

है आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी। बीटी विद बीटी सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और आपको बता दूं कि मेरी बहुत सारी अपडेट्स बॉलीवुड की जो मैं लेकर आई हूँ ना, वो आप तक जा चुकी हैं। और मेरे पास एक और उड़ती उड़ती खबर आई है और अभी जस्ट आके बैठी है, तो वो ये है कि अक्षय कुमार, अभी उनकी बात हो रही थी खिलाड़ी की, इतनी सारी सीरीज आ गई हैं, कह रहे हैं कि क्या पता कि वो एक और खिलाड़ी सीरीज बनाने में, एक और कड़ी जोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम फाइनल कर लिया है, नाम उनको पसंद आ गया है। और वो नाम है, वो बता देती हूँ, जो कुछ भी आएगा वो बता देती हूँ और आगे की जो अपडेट आएगी वो भी बता देंगे। आप तो बॉलीवुड ट्रेल्स सुनते ही है ना रेगुलरली, तो सब आपको पहुंचता जाएगा एकदम ताज़ा ताज़ा। फिलहाल तो यही खबर आई है कि वो जो खिलाड़ी की अगली सीरीज का जो किस्त लेकर आएंगे ना, अगला जो जो भी फिल्म फ्रेंचाइजी लेकर आएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे

लाड़ी कुमार, और इसके अलावा अभी वो स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, बाकी चीजों पर काम करेंगे, लेकिन नाम फाइनल कर लिया है और वो आप तक पहुंच गया है। तो क्या पता आगे हमें खिलाड़ी कुमार भी एक मूवी के नाम से अक्षय कुमार को हम देखें। तो अभी तो फिलहाल बहुत सारी मूवीज उनकी लाइन में है और रिलीज आसपास की डेट्स में ही होने वाली है, आसपास के मंथ्स में ही होने वाली है जैसा अभी बताया था। तो उनका एंजॉय करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं और बाकी की चीजें बाद में। फिलहाल तो ये गाना एंजॉय कीजिए। और एक बार और आपको सवाल बता देती हूँ, क्योंकि बॉलीवुड सरताज बनने के लिए क्या पता अभी आपने सवाल नहीं सुना हो।

देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आज का सवाल क्या है, तो आपको बता देती हूँ आज का सवाल। आपने क्या पता मिस कर दिया हो, तो उसके लिए भी हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आते हैं थोड़ी देर बाद। एक बार रिपीट कर देते हैं भाई, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो जी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अहम इसलिए होता है कि आसान सा सवाल है। अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको हमसे बात करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आप बनेंगे बॉलीवुड सरताज। और रैंडमली हम किसी को बॉलीवुड सरताज चुन सकते हैं, और बस चुनने के ही लिए एकदम हम बेकरार हैं। आप जवाब तो दीजिए। सवाल यह है कि मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? मिर्जापुर द मूवी जो कि आने वाली है, वैसे तो वही नाम है जो मिर्जापुर सीरीज में था, लेकिन नहीं पता तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो वही नाम है, इतना हिंट मैं आपको दे देती हूँ। मिर्जापुर द मूवी में अली फजल के कैरेक्टर का नाम क्या है? यही है आज का सवाल, जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। व्हाट्सएप मैसेज करना है बिल्कुल आसान, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम भेज देना है 9868107070 पर, 9868107070। सुन रहे हैं आप बीटी विद बीटी, बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

देखिए जी, आप सबके मैसेजेस की लाइन लग गई है और मैं चाहती हूँ कि किसी का नाम मिस ना हो, तो फटाफट आप सबके नाम जिन्होंने जवाब दे दिया है, जो बॉलीवुड सरताज का सवाल था उसका जवाब दे दिया है, उन सबके नाम लेती हूँ। राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं और सूरज का मैसेज दिल्ली से आया है और नेक्स्ट मैसेज अरुण सेन का मध्य प्रदेश से, हरीश गौड़ मेरठ से लिख रहे हैं, विजय कुमार शालीमार बाग से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज किसका दिख रहा है भाई, ये सलीम मलिक मेरठ से हमेशा की तरह, तरुण कोहली सूरजकुंड से हमेशा की तरह, बसंत तोमर किसी ने अपनी जगह चेंज नहीं की है, मेरठ से ही लिख रहे हैं, प्रवीण कुमार मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं और आसिफ मेरठ से लिख रहे हैं, दानिश खतौली से और हैरी सिंधु भटिंडा से, शंकर गोवा पंजिम से, नौशाद चौधरी ने भी लिखा है लेकिन क्या लिखा है ये लंबा मैसेज है, वो जो नहीं शामिल हो सकता। और उसके बाद अनूप साहू का मैसेज दिख रहा है और कहां से ये नहीं दिख रहा है, पूजा एंड कोमल हरिनगर न्यू दिल्ली से, नेक्स्ट मैसेज है किसका, अपना नाम सबसे पहले लिखना चाहिए था भाई श्रेयांश, नहीं तो अगली बार से नाम नहीं शामिल होगा, रोहिणी दिल्ली से ये मैसेज आ रहा है, मिसेज धर्म भाटिया का भी मैसेज आ रहा है बठिंडा से और चित्रंजन सक्सेना का मैसेज नोएडा से आ रहा है, जाहिद अहमद का मुजफ्फरनगर से आ रहा है और उसके बाद अरुण कुमार का भी मैसेज शायद चंडीगढ़ से आ रहा है और ये है किसका नाम नहीं लिखा, विवेक मैंने ढूंढ निकाला आपका नाम क्योंकि हमारा कंप्यूटर ना ढूंढ लेता है, आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा था, अगली बार से ध्यान रखिएगा। उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं, गोविंद पंडित, ये बहुत सही है, गोविंद पंडित ने सही जवाब में भी पंडित लगाया है, वेरी गुड। मोहम्मद फुरकान सियाल मेरठ से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज किसका है भाई, अररिया बिहार से और राकिब का मैसेज है, कुछ ऐसा ही नाम है और मैं जल्दी जल्दी में अगर गलत पढ़ूं तो देख लीजिएगा क्योंकि आपने सबसे पहले अपना नाम नहीं लिखा तो ढूंढना पड़ा मुझे। और सुप्रीत का मैसेज दिल्ली से लिखा है, अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर से और इरशाद अशरफी का भी मैसेज दिख रहा है और किसका मैसेज दिख रहा है, प्रदीप सागर का मैसेज दिख रहा है, वसंत विहार से, ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से और मोहम्मद इमरान का, इमरान बिहार से लिख रहे हैं और मोहम्मद फुरकान का भी मैसेज कहीं था, अगर नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मिस हो गया ना तो कम से कम 50 मैसेज इस बात के लिए आएंगे कि आपने मेरा नाम शामिल क्यों नहीं किया। बहुत डर लगता है भाई। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड सरताज ढूंढ कर लाती हूँ, आप सब रेडी रहिए, नेटवर्क में रहिए, क्या पता आप ही को ट्रिंग ट्रिंग घंटी बज जाए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर

दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ बीटी विद बीटी। और सबसे बढ़िया इंतजार आप सब के लिए जो है वो ये रहता है कि बॉलीवुड सरताज क्यों कौन बनेगा। कहीं आपकी कॉल आपको तो कॉल नहीं आने वाली है और आपका इंतजार अब खत्म हुआ। बॉलीवुड सरताज जिसको भी बनना है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये चुकी हैं। अब ये तो अब बस थोड़ी कुछ सेकंड्स में खुलासा हो जाएगा, लेकिन कुछ नाम है जो मिस हो गए, जैसे बही। कुछ ऐसा नाम होता है क्या, कार्तिक शायद नाम है सही, लेकिन उन्होंने बही नाम क्यों लिखा पता नहीं। और एक मैसेज मुझे बिहार से दिख रहा है और नाम फिर भी नहीं लिखा है, परवेज महाराष्ट्र से दिख रहे हैं और इन सब ने बड़ा इंसिस्ट किया मेरा नाम ले लीजिए, लीजिए आपका नाम हमने ले लिया। लेकिन हाँ, अब आपका इंतजार खत्म, बॉलीवुड सरताज हमारे साथ हैं और वो अपना नाम खुद स्वयं अपने आप बताएंगे। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं आप?
1: हाँ जी मैम, बबीता जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ।
0: अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: नमस्कार जी।
0: तो अर्चना जी, क्या करती हैं आप और कितना सुनती हैं आप आकाशवाणी रेनबो और कैसे बॉलीवुड सरताज में आना हुआ आपका?
1: मैम मैं कुछ दिनों से रेगुलर सुनती हूँ और मेरा फेवरेट प्रोग्राम है ये बॉलीवुड ट्रेल।
0: हाँ।
1: और उसके बाद रेडियो डॉक्टर।
0: ओके, दो आपके फेवरेट शोज हैं, है ना?
1: जी।
0: रेगुलर सुनती हैं आप शो?
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छी बात है। और आपको इसका मतलब काफी कुछ जानने समझने में इंटरेस्ट है ना? अलग
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ। घर के काम अच्छे से हो जाते हैं और म्यूजिक से मेरा लगाव बचपन से ही है। गाने सुनती भी हूँ और गाती भी रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ और मजे से काम करती हूँ।
0: वाओ, और हम भी यही चाहते हैं कि आप अपना काम करते रहें और खुश होकर काम करें, गाते गुनगुनाते काम करें, और यही रेडियो का मकसद होता है। और साथ में इन्फॉर्मेशन आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, आपके देश में जो कुछ भी हो रहा है ना। तो चलिए, आकाशवाणी रेनबो सुनकर आपने बताया कि किस तरह से अपना टाइम आप व्यतीत करती हैं, बहुत अच्छा लगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, आज आप बनी हैं बॉलीवुड सरताज, कैसा लग रहा है बाद में पूछूंगी, पहले मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब एक बार आप ऑफिशियली दे दीजिए। मैंने पूछा था कि अली फजल, जो कि मिर्जापुर द मूवी में भी आ रहे हैं, सीरियल में तो थे ही, उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम,
1: हाँ जी,
0: मिर्जापुर द मूवी में क्या है?
1: जी, उनका नाम है गुड्डू भैया।
0: गुड्डू भैया और गुड्डू पंडित, ये नाम है जिसके नाम से वो फेमस है और काफी इस नाम की चर्चा है पूरे के पूरे मिर्जापुर सीरीज में। अब मूवी आएगी तो मूवी में ऑफ कोर्स क्योंकि लीड रोल है तो होगा ही, है ना? तो काफी फेमस कैरेक्टर, आपने देखी हुई है ये सीरीज?
1: नहीं, मैं टीवी सीरीज देखती रही हूँ लेकिन मैं नॉलेज रखती हूँ। अब टीवी से मेरा नाता टूट गया है जब से मैंने रेडियो से जुड़ी हूँ।
0: अरे वाह, मतलब रेडियो आपको ज्यादा इजी लगता है सुनना और
1: बहुत अच्छा लगता है। पॉकेट में रेडियो न्यूज ऑन एयर पे सुनती हूँ और काम करती हूँ, जहाँ जाती हूँ चलता ही रहता है रेडियो मेरा न्यूज ऑन एयर पे।
0: अर्चना जी, आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन आज के बॉलीवुड सरताज बनने के लिए और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से दिल तक जुड़ी रहे आकाशवाणी रेनबो से।
1: जी जरूर।
0: चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी?
1: हाँ जी,
0: कुछ कहना चाहेंगी? और
1: जी मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि रेडियो के इतने अच्छे प्रोग्राम सुनती हूँ, इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, खास करके रेडियो डॉक्टर और ये बॉलीवुड दोनों ही मेरे मतलब ये फेवरेट टॉपिक्स हैं।
0: थैंक यू सो मच, इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, ठीक है?
1: धन्यवाद।
0: ओके, बाय।
1: थैंक यू।
0: इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी कहना होगा चाचा बाय बाय, और आप सब अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: There are several such trees and plants acting as street corners and resident landmarks that are actually ancient and rare species. Do you have a story about such a tree from your younger days? Let us know at 9868107070 on WhatsApp and allow us a quick break.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: मेनी ऑफ अस हैव एनकाउंटर्ड तुलसी श्रब्स थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड्स। इन एडिशन टू बीइंग ए होम रेमेडी फॉर सेवरल इलनेसेस, it also purifies air quite well. So if you can, try growing some in a pot at home. Moving on, we have No More Rain by Kylie Minogue.

0: What's with the party music, you ask? Well, full-grown trees are also a great venue for garden parties and evening drinks breaks. So, plan with your friends, turn up the radio, and tell us about the garden parties you've been and the trees and plants you think there are in vogue at 9868107070. We'll be back after a short break.
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: The Northern Ridge, Sanjay Van and Asola Bhatti are Delhi's lungs and have enabled us, believe it or not, to become the world's second most bird-rich capital city. Do you have any memories of exploring the woods? Tell us at 9868107070 as we take one last quick break.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: As we near the end of this hour, we hope that you now know more about trees than you did before. So if you can, participate in your nearest plantation drive or water the shrubs near your place. On that note, here's Wildflower by Billie Eilish.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के

रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका 102.6 एफएम रेनबो पर। और आज हेल्पलाइन में हमारा जो टॉपिक है वो हम सभी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं सुनना भी एक कला है। आज के समय में इस कला को ना लोग भूलते जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी होता है। व्हाई लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, इसी टॉपिक पर रहेगा आज का हमारा रेनबो हेल्पलाइन। और हमारी एक्सपर्ट है, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जस किरण गिल। बहुत बहुत स्वागत है जस किरण।
2: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: कैसी हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन का है जस किरण। हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और इसी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो है सुनना। हम दूसरों को अच्छे से सुने, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
2: जी मैम, जैसे आपने बोला कि कहा कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें बोला भी जाता है और सुना भी जाता है। बोलने और सुनने के बिना एक कॉन्वर्जेशन कम्प्लीट नहीं होता है। पर हो क्या रहा है कि हमेशा से बोलने को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बल्कि ये अज्यूम किया जाता है कि सुनना तो हमें आता है। सुनने में क्या है, सुनने में क्या सीखना है? कान में आवाज जा रही है मतलब सुन रहे हैं, जबकि ये समझने की जरूरत है लिसनिंग और हियरिंग में बहुत ज्यादा फर्क है।
1: लिसनिंग एक अलग टर्म है और हियरिंग एक अलग टर्म है।
2: जी बिल्कुल। अब कान में सड़क पे जाते हैं, हजारों आवाजें कान में जाती हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, तो कान में आवाजें जा रही हैं, मतलब कि वी आर हियरिंग राइट। पर लिसनिंग का मतलब है कि आवाज को तो सुनना, बट उसके साथ साथ समझने की कोशिश करना कि कोई कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, उसके पीछे मतलब क्या है, वो जानने की भी कोशिश करना एक लिसनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
1: बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने जस किरण लिसनिंग का। तो जैसे कि मैंने कहा कि लिसनिंग जो है कला है, इट्स एन आर्ट। तो इसी बारे में आज बहुत सारी बातें हम जानेंगे और सीखेंगे आपसे। तो श्रोता, अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 102.6 FM रेनबो के साथ। हमारी

टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 011-234-2108 एंड व्हाट्सएप नंबर इज 9868107070। हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे हमारी जो यंग वेरी प्रोफेशनल एंड डायनेमिक गेस्ट है जसकिरण गिल के पास।

0: मोहित चौहान की आवाज में फिल्म रॉकस्टार का गाना हमने सुना एंड ये चॉइस थी जसकिरण आपकी। तो जसकिरण, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है व्हाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिसन?
1: देखिए, आजकल कोई सुन नहीं रहा है और इससे, जैसे आपने पहले बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई अपनी मन की बात शेयर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है लोगों को। तो डिजिटलाइजेशन जैसे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया के एज में हम रह रहे हैं, हमेशा फोन हमारे हाथ में रहता है, नहीं तो लैपटॉप खुला रहता है, हजारों तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर होती हैं और हमें परेशान कर रही होती है, बट हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है लिसनिंग, किसी को सुनना या किसी को वो स्पेस देना कि वो हमसे बात कर पाए।
0: जसकिरण, हमारा अगला जो सवाल है आपसे वो ये कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ पीपल नॉट लिसनिंग एनफ?
1: जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हमारा एक बेसिक ह्यूमन नीड है और हर ह्यूमन बीइंग वी वांट लव, वी वांट टू बी वैल्यूड, राइट? कि हमारी भी कदर हो, वैल्यू महसूस करी जाए। तो ऐसे ही हर ह्यूमन बीइंग चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग अनसुना महसूस कर रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस तो लो होता ही है, उसके साथ साथ लोग शट डाउन कर लेते हैं, मतलब किसी से बात ही नहीं करते, सब कुछ अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनको कई बार मानसिक संतुलन भी उनका खराब हो जाता है। लड़ाइयां झगड़े बढ़ते हैं, पेरेंट्स को लगता है बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, हस्बैंड को लगता है वाइफ नहीं सुन रही है, वाइफ को लगता है हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं। हम किसी कॉरपोरेट में, प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, लगता है बॉस हमारी बात नहीं सुन रहा है, बॉस को लगता है भाई मेरी टीम ही बात नहीं सुनती है। तो हर तरफ हो

0: रहा है एक्चुअली में सब लोग बोल रहे हैं, हर तरफ से टॉकिंग हो रहा है, उसने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला और हमें लगता है कि हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ, बट एक्चुअली में उसमें कोई लिसनिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम किसी को समझ नहीं पाते हैं। इससे और लड़ाइयां बढ़ती है, अरे तूने मुझे बोला तो ये बोला कैसे, लड़ाई बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो विच आर देयर बिकॉज पीपल आर नॉट लिसनिंग एनफ।
1: एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे कि हम इनकी बात नहीं सुन रहे। हेलो
2: सुजाता जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, बोलिए।
2: हम आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: धर्मवीर जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच।
2: जो आप लोग हमें जो नए नए कार्यक्रम और नई नई जानकारियाँ सुझाते हैं और समझाते हैं, बहुत बहुत इसके लिए हमारे आपको धन्यवाद, क्योंकि हमें नई नई जानकारियाँ मिल पाती हैं।
1: थैंक यू सो मच। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड?
2: जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हर आदमी अपने अपने अंदर ही गमों में जीता है, अपनी अपनी परेशानियां हैं, सब अपनी अपनी परेशानियां मोबाइल के साथ ही मतलब बांटते हैं, बस कोई परेशानी ही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और अपना कार्यक्रम करने शुरू होते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है कि अगर अपने को कोई टेंशन है या दिमाग में कोई परेशानी है तो हम सबसे अच्छा जरिया सुनते हैं अपना, अच्छा कोई सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं जिससे अपने आराम से माइंड से सारी टेंशन खत्म हो जाती है। इसके लिए कोई दबाव तो है नहीं, मैं एक्सपर्ट से यही पूछना चाहता हूँ। मैडम नमस्कार, इसके लिए कोई ऐसा कोई दवाई है कि जो हम दवा भी खा सकते हैं कि आराम से अपनी टेंशन दूर कर लें? आपने बताया कि हर आदमी अपना बच्चा भी हमारी बात नहीं सुनता, तो वो बच्चे को हम जबरदस्ती कह तो नहीं सकते कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल का उनका अपना फील्ड है। अब पहले के समय जो था वो अलग था कि सामाजिक कार्यों में जाते थे लोग, आजकल नाटक वगैरह देखने जाते थे, तो समाज के साथ जुड़ना भी तो एक जरिया है, सबके साथ समाज के साथ रहना भी एक अच्छा एक अपना समय काटने वाली बात है, क्योंकि आजकल समाज के साथ कट चुके हैं लोग।
1: जी जी, तो धर्मवीर जी आपने तो इतनी सारी बातें हमें बता दी, मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने को रह गया है। आपने क्वेश्चन ही आपने आंसर बता दिया हमको, लेकिन जो आपने पूछा है कि कोई दवा भी है क्या, तो जसकिरण व्हाट वुड यू लाइक टू से?
0: नमस्ते धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ने के लिए और आपके सवाल के लिए। देखिए, आई विश मैं आपको कोई ऐसी दवा होती और जो मैं आपको बता पाती, पर जैसे सुजाता जी ने बोले कि आपने जवाब भी खुद ही दे दिया है, और ऐसी कोई दवा तो नहीं है, पर यही है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम अच्छा सुनना शुरू कर दें तो बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाएंगी।
1: तो धर्मवीर जी थैंक यू सो मच अपने अच्छे विचार रखने के लिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जसकिरण, यहाँ पर लगता है कि एक ब्रेक ले लिया जाए, उसके बाद हम लौटेंगे।

0: स्वागत है आपका रेनबो हेल्पलाइन में। तो जसकिरण, आपने ये बताया कि परिवार में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम एक दूसरे को जब सुनना नहीं चाहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ को सुनना नहीं चाहता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं सुनना चाहते, हम ऐसा प्रतीत होता है, पेरेंट्स बच्चों को नहीं सुनना चाहते और बच्चे जो है पेरेंट्स को नहीं सुनना चाहते, तो ये पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसा ही एक मैसेज हमें मिला है मनोहर लाल गांधी जी का, गाजियाबाद से लिखते हैं कि छोटे अगर बड़ों को कोई काम की बात या कोई मजाक करते हैं तो बड़े अपने आप में खुद को समझदार मानते हैं, छोटों की बात अनसुनी कर देते हैं। हो सकता है छोटे अगर बात कुछ कह रहे हैं तो बड़ों के फायदे के लिए ही कह रहे हो, लेकिन जो बड़े हैं ना वो अहम में रहते हैं, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए?
1: देखिए, जैसे आपने अपने प्रश्न में ही बोला है कि बड़े अपने आप को बड़ा मानते हैं और समझदार मानते हैं, बहुत दफा क्या होता है कि हमारी मान्यता, हमारी assumptions एक बहुत ही बड़ा बैरियर एक्ट करती हैं हमारी लिसनिंग को लेके। हम समझते हैं, और ये हमारा नजरिया है, हम समझते हैं कि हम बड़े हैं, हम समझते हैं कि हम समझदार हैं। तो जब हम ये समझ के साथ या ये मान्यता के साथ हम किसी को सुनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो बच्चा हो, तो आप ये देखेंगे कि आप पहले ही आपकी लिसनिंग को तो बंद कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपको बच्चा कुछ कहना भी चाहेगा तो आपकी जो मान्यता है वो बीच में उसके आड़े आएंगी। तो बहुत ही जरूरी है कि अपनी मान्यता को, अपनी assumptions को साइड में रख के बच्चों के नजरिए से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि अगर वो कह रहा है तो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। और बच्चे को भी कैसा लगता है जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं या जब हम उन्हें बोलते हैं कि वो, मैं तो बड़ा हूं, तुम मुझे ये कैसे बोल सकते हो। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उनके नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और अपनी मान्यताओं को हटा के सुनने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कनेक्शन बच्चों के साथ भी बना पाएंगे।
0: और यहाँ पर एक बात जो मैं एक्सपीरियंस से अपने कहना चाहूंगी जसकिरण, वो कि कई बार हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं बहुत सी बातों को लेकर जागरूक हैं, जैसे कि स्वच्छता को लेकर या फिर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने को लेकर, जैसे कि मेट्रो में जब दरवाजे खुलते हैं तो बहुत सारे बड़े जो है ना अफरा तफरी एकदम से दे पुश इन, तो बच्चे ऐसे में कहते हैं कि मामा प्लीज लेट द पीपल कम आउट, कि आप प्लीज जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, या फिर कागज का टुकड़ा यहाँ फेंक दिया, कूड़ा यहाँ फेंक दिया। लेकिन बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि क्लीनलीनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तब ऐसे वक्त बच्चे जो है पेरेंट्स को बोलते हैं कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट प्रॉपर। तो ये सब बातें हमें बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है अगर हम उनकी केयर करें, हम उन्हें उनकी लिसनिंग करें प्रॉपरली।
1: जी बिल्कुल सुजाता जी, जितना हम बोलने से देखिए हम कुछ हद तक सीख सकते हैं। अगर आपको सच में किसी के बारे में कुछ सीखना है या किसी चीज के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में कुछ सीखना है तो जब तक आप उसकी सुनेंगी नहीं आप सीख नहीं पाएंगे।
0: एक कॉलर है, हेलो।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
2: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है अनवर जी आपका।
2: मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को और हमारे श्रोता है विशेषकर धर्मवीर जी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ।
0: जी
2: मैडम, मैं अभी आप दोनों की बातें सुन रहा था, मैं आप लोगों से 100% आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। सही बात है कि हम बच्चों की भी बात सुने और उनकी भी इज्जत करें और जो मान मर्यादा है बच्चों को वो हम दें। अब हमारी वाइफ है, मेरी बेटी जी ने एक दिन मेरे पास फोन किया, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ, तो मेरी बेटी ने फोन किया कि पापा स्कूल से टीम जा रही है और बैडमिंटन का खेल होगा, हम उसे भाग लेना चाहते हैं और मम्मी मुझे मना कर रही है कि मत जाओ, तुम बड़ी हो चुकी हो, क्लास 9 से पहुंच चुकी हो। मैंने कहा वाइफ को बिल्कुल गलत बात, बेटी है अब बड़ी हो रही है, होने दो, अब उसके अंदर जो शौक है उसको उभरने दो। मैंने बेटी को बोला जा बेटी खेल के आ, और वो गई और वो अच्छा प्रदर्शन करके आई वहाँ। तो हमें बच्चों को रोकना नहीं चाहिए और उनकी भी बात को सुनना चाहिए। एक सवाल तो मेरा ये है, दूसरा सवाल मेरा ये है मैडम कि आज के डेट में हर शख्स मोबाइल में लगा है, चाहे फैक्ट्री हो, बाजार हो, कहीं भी हो, चार लोग अलग अलग बैठ जाते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आखिर हमें

0: का क्या कुछ करना चाहिए कि मोबाइल के प्रति लोगों का इंटरेस्ट कम हो, और जो पहले जो गांव में एक जगह बैठकर लोग आपस में बात करते थे, उससे मोहब्बत बढ़ती थी, इत्तेफाक बढ़ता था, क्या किया जाए कि फिर से वो पहले वाला माहौल कायम हो।
1: बहुत सुंदर बात कही आपने जी। अनवर जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आपने अपनी बेटी को सुनने और समझने की कोशिश की और उनको प्रोत्साहन दिया कि वो खेल पाए। देखिए, कई बार हमें बच्चों को किसी बात से मना भी करना पड़ता है, पर बहुत जरूरी है कि कैसे मना किया जाए वो सीखना भी बहुत जरूरी है, ताकि उनकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे और हम उनकी बात को और उनकी भावनाओं को भी समझ पाए। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है कि आजकल आप सही कह रहे हैं कि मोबाइल पे सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग मोबाइल पे 24 घंटे मोबाइल पे रहते हैं। देखिए, पहले जैसा माहौल बने ये हम सब चाहते हैं, पर असलियत यही है कि बनना मुश्किल है। पर जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से एफर्ट ही कर सकते हैं कि कई बार जैसे आपका दोस्त आपसे बात करने आता है तो आप मोबाइल पे हैं, मैसेज कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम उसको बंद करके उसको साइड पे रख दें, बजाय कि हाथ में मोबाइल है और दोस्त को बोल रहे हैं हाँ बताओ किस बात में बात करनी है या हाँ क्या हाल चाल है, उसको साइड पे रखेंगे, हाँ भाई बताओ अब मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है, बताओ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आप देखेंगे कि उससे इतना, क्योंकि लोगों की ऐसी चीजें मिलती नहीं है कि कोई उनको इतनी अटेंशन दे रहा है, इतना ध्यान रह रहा है, इसी बात से लोगों को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये जरूर कर सकते हैं, रात को खाने पे बैठे हैं तो मोबाइल वहां पे ना रखें, ताकि एक दूसरे से बात कर सके, पूछ सके कि दिन कैसा निकला, कैसा महसूस कर रहे हो। तो अपनी तरफ से ये एफर्ट हम जरूर कर सकते हैं। आप देखिएगा कि घड़ा देखिए बूंद बूंद से भरता है, एक करेगा कल, दो करेंगे, चार करेंगे, तो धीरे धीरे ही कोई भी चेंज जो है वो आ पाएगा।
2: शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जसकिरण, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर लिसनिंग इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्यों कम्युनिकेशन में, तो व्हाई डू यू थिंक इट्स नॉट टॉट लाइक रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज टॉट?
1: जी सुजाता जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि हमें स्कूलों में रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग तो सिखाया जाता है पर लिसनिंग नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि इसको इतना जरूरी नहीं समझा जाता। ये अजम्पशन बहुत स्ट्रांग है कि सुनने में क्या है। अब देखिए, बच्चे क्लास में, अभी आप भी स्कूल गए होंगे, हम सब स्कूल गए हैं, तो जैसे क्लास में एक टीचर अध्यापक जो है हमेशा बोलेंगे देखते सबसे पहले जवाब कौन देता है, या बच्चे की तारीफ करेंगी, अरे बच्चा यू आर सच अ गुड स्पीकर, इतनी अच्छी स्पीच दी तूने, तुमने इतना अच्छा जवाब दिया। तो हमेशा जो है हम बोलने वाले की तारीफ करते हैं। स्कूल में भी बच्चों की उनकी तारीफ होती है जो अच्छा बोलते हैं, पर उनकी तारीफ कभी नहीं की जाती, अरे बेटा तुम अच्छे लिसनर हो, तुम अच्छा सुनते हो। तो शुरू से ही एक यू नो लिसनिंग हैज ऑलवेज बीन आउट ऑफ द इक्वेशन, आउट ऑफ द पिक्चर। तो हमारे मन में भी, बच्चों के मन में भी हमेशा रहता है कि शायद सुनना, तो अच्छा सुनने की भी ट्रेनिंग होती है, सुनना भी सीखना जरूरी है। तो ये जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समस्याएं जितनी बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं। आजकल आप देखिए कॉरपोरेट्स में भी सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो गुड लिसनर्स की है, क्योंकि कोई बात सुनना नहीं चाहता, और बहुत सारी कॉरपोरेट्स बहुत सारा पैसा लूज कर रही हैं ऑन अ ईयरली बेसिस, क्योंकि लोग जो है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, मीटिंग में बात कुछ होती है करते कुछ हैं, तो सुनते नहीं है, समझते नहीं है। तो लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, और बहुत ही जरूरी हो गया है कि लिसनिंग को स्कूल्स का, कॉलेजेस के करिकुलम में शामिल करना चाहिए। और जैसे कि हम स्पीकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सिखाते हैं, वैसे ही लिसनिंग को भी बच्चों को सिखाना चाहिए।
2: बहुत अच्छी बात की। और जसप्रीत, मुझे एक बात याद है कि जब हम स्कूल में थे और अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है और बहुत ज्यादा चुप रहता है, तो उसके पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, कुड देयर बी सम प्रॉब्लम। मुझे याद है मैं बचपन में थोड़ी सी क्वाइट थी, बहुत कम बोला करती थी, तो पेरेंट्स को लगता था ये बोलती नहीं है, ये बच्चा बोलता नहीं है। तो आपको लगता है कि ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपोजिट होना चाहिए कि हो सकता है बच्चा सुन रहा है.
1: जी बिल्कुल,
2: दैट्स आल्सो अ गुड हैबिट.
1: जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके सीखते हैं, पर हम क्या है उनको वो मौका ही नहीं देना चाहते ये देखने के लिए. हम वेट भी नहीं करना चाहते कि शायद ये बच्चा अच्छा ऑब्जर्वर और शायद ये सुनता अच्छा है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन कर रहा है, शायद वो बच्चा ज्यादा सीख रहा है. हम

0: प्रॉब्लम वो लेबल कर देते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है भाई, इसका इलाज होना चाहिए. तो बच्चे को भी लगता है कि शायद बोलने वाला ही अच्छा समझा जाता है.
1: एक कॉलर है, इनकी बात सुने. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ जी.
2: हाय सुजाता जी, मैं धर्मवीर. एक सवाल मेरे मन में अभी आया कि स्कूल में बच्चों को भाषण देना क्यों नहीं सिखाया जाता है? शुरू से ही बच्चों को अगर खड़े होकर भाषण देने कोई भी लाइन दे दी जाए, 4 लाइनें 10 लाइनें, क्योंकि जिंदगी में मैंने लाइफ में एक ही बार भाषण दिया था, वो भी अचानक ही किसी ने मुझे खड़ा कर दिया. तो मुझे क्या बोलना मुझे ये नहीं पता था, पर हमने भाषण दिया, बात करी अपनी रखी. तो बच्चों को अगर शुरू से ही अगर भाषण देने की जो एक टेक्निक है जो शुरू से आ जाएगी.
1: जी जी, तो ये तो बात हुई कि बोलना सिखाया जाए, भाषण देना सिखाया जाए. चलिए, ये भी आपकी बात स्वीकार कर दी. लेकिन साथ में उस भाषण को सुनने की कला भी आनी चाहिए.
0: जी बिल्कुल.
1: तो चलिए धर्मवीर जी, थैंक यू सो मच एक बार फिर से अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए. अब यहाँ पर एक ब्रेक हम लेंगे.

0: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का रेनबो हेल्पलाइन में। हमारी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट गेस्ट हैं जसकिरण गिल, हमारे साथ मैं हूं सुजाता रथ, और टॉपिक है व्हाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, सुनना क्यों जरूरी है आज की लाइफ में। तो जसकिरण, एक व्हाट्सएप मैसेज है, दिस इज फ्रॉम गुवाहाटी हर्ष की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि इफ यू कैन गिव सम टिप्स टू बिकम अ बेटर लिसनर, हाउ कैन वन बिकम अ बेटर लिसनर।
1: जी हर्ष, बहुत ही धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, बोलना हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और अभी भी सीख ही रहे हैं, और पूरा लाइफ लग जाती है तब भी हम परफेक्ट स्पीकर नहीं बन सकते। इसी तरह से बहुत ही जरूरी है अभी से एफर्ट डालना कि हाउ टू बिकम अ बेटर लिसनर। और सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्ट बाय लिसनिंग टू योर ओन सेल्फ, अपनी सुनना सीखें और एक्नॉलेज करें कि देखिए मुझे अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखिए, अगर किसी को कोई बीमारी भी होती है और अगर वो उसको दवा दो भी, जब तक वो एक्नॉलेज नहीं करता उसको दवा की जरूरत है तब तक वो नहीं खाएगा। इसी तरह से पहले एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि मुझे ये सीखने की जरूरत है। जब आप अपने आप को सुनना शुरू करेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको कैसा महसूस होता है, या आपकी क्या लिसनिंग हैबिट्स हैं, लिसनिंग पैटर्न्स हैं, क्या आप टोकते बहुत ज्यादा हैं कोई बात कर रहा होता है तो, या क्या आप बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, किसी ने आपको कोई बात बताई, समस्या बताई, आप जल्दी से जल्दी उसका हल देने शुरू कर देते हैं, तो या फिर आप कोई अपनी बात खत्म करता भी नहीं है और अपने दिमाग में उसका रिस्पांस तैयार करना शुरू कर देते हैं, या आप कोई बात कर रहा होता है तो आपका ध्यान उनके कपड़ों पे होता है, अरे यार इसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो बात क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है। तो किस तरह के आप लिसनर हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी लिसनिंग हैबिट्स को, अपनी लिसनिंग गैप्स को, अपने लिसनिंग पैटर्न्स को जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तब जरूरी है उस पर काम कर पाना और सीखना, किसी तरह की ट्रेनिंग लेना कि अपनी लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसमें बहुत सारे टूल्स सिखाए जाते हैं कि कैसे किसी की बात को समझना चाहिए, कैसी अपनी जो हमारे बहुत सारे देखिए बायसेस और जजमेंट्स होती हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो खराब होते हैं, या क्योंकि बच्चे हैं वो हमें कुछ नहीं बता पाते, बच्चे समझदार नहीं होते हैं। तो हमारी बायसेस क्या हैं, आपकी बायसेस क्या हैं, उनको समझिए और कैसे आप अपने नजरिए को साइड पर

0: के दूसरे के नजरिए से कैसे बात को समझ सकते हैं उस पे काम करना शुरू कीजिए।
1: सतीश कामले फ्रॉम परभणी महाराष्ट्र, इन्होंने लिखा है कि मैं इस वक्त अपना काम कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग माई ट्यूटोरियल्स एंड वाइल राइटिंग आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम। आज आप एक्स्ट्रा 2 घंटे प्रोग्राम कीजिएगा, इज लाइकिंग इट सो मच। तो थैंक यू सो मच सतीश फ्रॉम परभणी महाराष्ट्र। और एक मैसेज और आया है सीमा गांधी का गाजियाबाद से, घर में नई बहू आती है लेकिन अक्सर कई घरों में सास बहू को बात बात पर टोकती है, बेटे को पहला स्थान और बहू को बात का स्थान देती है, बहू अगर मन की बात कहती है तो पति से, ऐसे में सास और बहू को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम आप? जसकिरण जी
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये समस्या तो हर एक रिश्ते में है, हर एक रिलेशनशिप में है आजकल, तो प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है। एक तो सास बहू के केस में हजारों तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक इनमें से ये भी हो सकती है कि बहू और बेटी में जो आज भी हम जितना भी चाहें पर वो फर्क कहीं ना कहीं आ जाता है या हम ले आते हैं। तो जब हम बेटी की बात सुनने की कोशिश करेंगे, वैसे शायद हम बहू की नहीं सुनते हैं या फिर उनके नजरिए से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने आप को साइड में रख के, मैं सास नहीं हूं, क्या मैं इसको कैसे इस लड़की को इंसान टू इंसान कॉन्वर्जेशन कर सकती हूँ, ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे कनेक्शन बना सकती हूँ, कैसे इसको और जानने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है मुझे 10 चीजें इसकी नहीं पसंद, क्या मैं उन 10 चीजों को साइड पे रख के इसको और जानने की कोशिश कर सकती हूँ या ये समझने की कोशिश कर सकती हूँ अगर इसने ये बोला है तो इसके पीछे इसका क्या मतलब था ये बोलने का, या मैं भी अपने आप को कैसे सुधार सकती हूँ ताकि ये रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सके। तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, हाँ, हम बोलते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, पर ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखना विदाउट लिसनिंग, मेकिंग एन एफर्ट टू लिसन टू द अदर पर्सन, उसका कोई फायदा नहीं है। समझेंगे तभी ट्रस्ट आएगा, समझेंगे तभी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा।
1: अनुभा का मैसेज लेते हैं। एज अ पेरेंट व्हाट कैन आई डू टू बी अ गुड लिसनर व्हेन माय चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टैंट्रम?
2: जी अनुभा जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। देखिए, वही बात आ जाती है कि अगर टेंट्रम भी थ्रो कर रहा है तो बजाय, हम क्या करते हैं, अगर बच्चे ने जिद की तो हम या तो उसको धमकाने लग जाते हैं या हम उसको लालच देते हैं, अरे उठ जाओ ऐसे मत करो, मैं तुम्हें देखो चॉकलेट ला के दूंगी, या फिर हम उसको झिड़क देंगे कि ऐसे करोगे तो एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर फिर से ये किया तो। तो क्या होता है कि हम बच्चे कि ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्यों बच्चे को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो बच्चा उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो बजाय कि रोकना टोकना शुरू कर दें या उसको लालच कर दें या उसका माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दें, जो कि हम बहुत बार करते हैं, तो उससे क्या है कि जो बच्चे के अंदर फीलिंग्स है वो वहीं दबी रह जाती हैं, उसको आउटलेट नहीं मिला। तो बहुत जरूरी है कि एज अ पेरेंट उसको एक्नॉलेज करे कि देखो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही है, या तुम्हें कैसा लग रहा है कि अगर हम ये नया खिलौना नहीं ले रहे हैं या तुम्हें नया खिलौना लेके देंगे तब तुम्हें कैसा लगेगा। तो उसको जानने की, उसके साथ बात करने की कोशिश करे बजाय कि अरे यार ये तो फिर से शुरू हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, एक तो वक्त नहीं होता है कि इतना कौन सुने, इसीलिए सुनना मुश्किल है और बोलना आसान है।
1: और अब वक्त है एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने का, और ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारा, जसकिरण मेरा और आप सभी का, रेनबो चैनल 102.6 पर ये जारी रहेगा, लेकिन आफ्टर दिस वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: तो इस बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के बाद लौटते हैं रेनबो हेल्पलाइन में। और जसकरण, जैसे कि हम कोई भी बहुत अच्छा म्यूजिक जब प्ले हो रहा होता है या कोई कॉन्सर्ट चल रहा होता है तो हम बिल्कुल खो जाते हैं उसमें। तो कहते हैं कि कोई भी जो संवाद है वो एक तरफा नहीं होता है। अगर मंच पर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, भले ही म्यूजिक का चल रहा हो, डिस्कशन का चल रहा हो, एनीथिंग, तो जो ऑडियंस होती है उसको भी एक अच्छा लिसनर बनकर एक्सप्रेस करना पड़ता है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे उसके एक्सप्रेशन से हो। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन जो है दोनों तरफ से होता है। अगर कोई बोले जा रहा है और दूसरा आदमी उसकी बात नहीं सुन रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, या फिर अगर वो कुछ बोल रहा है तो दूसरा आदमी कुछ भी और बोल रहा है विदाउट उसकी बात सुने, तो वो फिर वो भी एक कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ। दोनों ने कुछ ना कुछ बोला और दोनों बोल के चले गए और हमें लगता है कि हमने कॉन्वर्जेशन किया है। तो कॉन्सर्ट में हम जाते हैं तो बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, जैसे मैं पहले बता रही थी कि आज मुझे इसको सुनना है, तो हम उसमें खो जाते हैं क्योंकि हमारे

0: ये एक्नॉलेज करने के बाद कि शायद मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, शायद मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, शायद मुझे ये अच्छे से नहीं समझ आए, पर फिर भी मैं अगर ध्यान ला के इसको सुनने की समझने की कोशिश करूं तो क्या नया मैं इसमें से सीख सकता हूं, ये बहुत जरूरी है।
1: जैसे कि मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। हम कोई कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, हमें पसंद आ रहा है तो हम दाद दें, वाहवाही करें और बीच में बातचीत ना करें, मोबाइल जो है साइलेंट रखें, बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। जी एक कॉलर की बात सुन लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी
2: हेलो
1: हेलो हाँ जी बोलिए।
2: मैं रवि जोशी मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: हाँ रवि जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए।
2: अभी बारिश हुई तो उसमें टेम्परेचर डाउन हो गया, तो मेरा 12 साल का बेटा है वो स्कूल जाता सुबह 9 बजे। मैंने उससे कहा भी तू गुनगुने पानी में नहा ले, ठंडे पानी में मत नहा। बोला नहीं पापा मैं तो जो ना ठंडे पानी में नहाऊंगा, आप बूढ़े हो गए आप नहाइए। अब देखिएगा इतना डिफरेंस। उसके बाद भी स्कूल चला गया, फिर वो जब वापस आ गया आज अभी सुबह अभी वापस आया है तो छींके मार रहा। तो मैंने उसको यही समझाया, मैंने कहा जब टेम्परेचर में इतना डिफरेंस आ जाता है तो वायरस जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो थोड़ा समझा इस बात को। सो इज इट दिस कम्युनिकेशन गैप।
0: रवि जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आपको क्या लगता है रवि जी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, वेयर डू यू सी द गैप हियर?
2: मैं तो उसके स्वास्थ्य के लिए बोला था कि इतना जो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है तो कहीं ना कहीं जो है वो उसके शरीर को थोड़ा सा परेशान करेगा।
0: जी
2: जी
0: जी क्या आपको लगता है कि आप का जो अप्रोच रहा है, जैसे आपने बोला कि उसको मैंने बोला कि तू ठंडे पानी से मत नहा, तो आपको लगता है कि आप इसको थोड़ा सा डिफरेंटली अप्रोच कर सकते हैं? जैसे आपने उसको मना करते हैं हम बच्चे को किसी चीज से, तो बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा वो चीज जरूर करता है। तो जहां हम गैप की बात करते हैं, अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसको ट्राई कर सकता हूं, आपको लगता है कि आपको उससे मदद होगी?
2: यस ऑफ कोर्स। अब यही है ना कि अब उसको जब छींके आने लगी तो मैं उसको समझाया, मैंने कहा ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है ये वायरल जो है आ गया है आपके अंदर, वो छींके मार रहे हो आप
0: जी,
2: तो थोड़ा थोड़ा समझ गया इस बात को भी। हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं पापा
0: जी जी,
2: वही है मतलब कहने का कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये कहीं ना कहीं से जो है हम दोनों को ही परेशान करता है।
0: बिल्कुल,
2: ये तो बात मानने की है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: थैंक यू रवि जी, आपने जो महसूस किया उसे हमारे हम तक पहुंचाया, थैंक यू सो मच। और जसकिरण बहुत सारे मैसेजेस आए हैं लेकिन उनमें वही कॉमन बात है जो हम ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में कवर कर चुके हैं। मिसेस धर्मवीर भाटिया हैं रोहतक से, एंड हर्ष ने एक और क्वेश्चन भेजा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट नॉट जस्ट टू लिसन टू ईच अदर बट ऑल्सो टू अवर बॉडी?
0: जी हर्ष जी बहुत ही जरूरी है। देखिए हम लोग अपने आप को आजकल क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल टाइम है, हमारी जॉब्स इतनी स्ट्रेसफुल हैं, तो हम अपने आप को पुश करते रहते हैं और बहुत सारे केसेस में हम बर्नआउट जल्दी हो जाते हैं या थोड़ी सी तकलीफ होती है हमें लगता है कि अरे यार छोटी सी बात है कुछ नहीं होता अभी भी मैं ये कर सकती हूँ। तो क्या है कि अगर हम बॉडी को नहीं सुनते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। और बहुत ही जरूरी है कि अपनी बॉडी के साइंस जो हैं हमें अपनी बॉडी हमेशा देती है उसको रिकॉग्नाइज करके अगर हमें लग रहा है कि अरे यार अभी मुझे थकावट हो रही है उसको इग्नोर ना करके बल्कि वहीं पे अपने आप को रोकें या कुछ रिलैक्स करने के लिए करें ताकि फ्यूचर में जाके हमारी तकलीफ हमारी दिक्कतें और ना बढ़ें। तो बहुत ही जरूरी है अपनी बॉडी को सुने। हम बाहर जंक फूड आजकल सब लोग खाना पसंद करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग एसिडिटी की गोली लेते हैं फिर जंक फूड खाते हैं। अब उनको मालूम है कि मुझे जंक फूड खाने से एसिडिटी होती है, पर वही है कि अपनी बॉडी की ना सुनते हुए हम अपनी मनमर्जी करते हैं जिससे कि देखिए नुकसान ही होता है आगे जाके।
1: तो पठानकोट से ज्योत्सना जी का मैसेज है कि उन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात दवा की बात किसी ने कही थी जसक्रीन, तो मेरे मन में एक बात है कि जब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके लिए अगर कोई अच्छा श्रोता बनकर उन्हें समय दे तो ये उनके लिए एक मेडिसिन का काम करती है। यहां पर जो है लिसनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है हम और आप महसूस कर सकते हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू से?
0: जी बिल्कुल सुजाता जी, मैं आपसे 100% अग्री करती हूँ. देखिए बड़े बुजुर्गों जो हैं वो ज़्यादा लोनली इसीलिए फील करते हैं क्योंकि बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है, तो या फिर अगर वो कुछ कहना भी चाहें तो हम यंगर जनरेशन

0: नहीं, या तो अपने फोन पे होती है, अपने कामों में होती है, सुना अनसुना कर देती है, तो उससे उनको खराब ज्यादा लगता है। बल्कि आप देखेंगे, हमने कई बार जो हम स्टोरीज सुनते हैं लिसनिंग की ट्रेनिंग के बाद, उसमें यही है कि कैसे कुछ यंगस्टर्स ने एफर्ट किया है अपना कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी दादी के साथ, दादा के साथ, जिसको कभी सुना नहीं था। इनको लगता था कि यार ये तो बहुत खड़ूस है, अरे ये सठिया गई है, कुछ भी बोलती है, या फिर हमेशा गुस्से में रहती है, क्योंकि इनकी अब उम्र हो गई है। पर उसने इस बार ये ट्राई किया कि वो अपनी अप्रोच को कैसे बदल सकता है। दादी आज आप बात करो, मैं आपकी बात सुनूंगा। और उसकी दादी ने एक दो घंटे इतना बात की है, दिल की पूरी बातें निकाली है, और वो रो पड़ी क्योंकि कितने सालों से उनको ऐसे किसी ने सुना ही नहीं था।
1: तो आई थिंक विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज आज का प्रोग्राम हम वाइंड अप करेंगे। दिल दिया गल्ला सुनना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच जसकिरण। हमारी एक्सपर्ट थी जसकिरण गिल, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। व्हाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक पर था हमारा हेल्पलाइन। टेक केयर, बाय बाय।
2: रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
8: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
11: अल्फा जेन,
8: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

ಮನ ಕಸ್ತೂರಿ ರೇ ಜಗದಸ್ತೂರಿ ರೇ ಮನ ಕಸ್ತೂರಿ.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर आ गई हूं प्रोग्राम आशियाना। और दोस्तों, आज आशियाना में बात होगी हिसाब किताब की। भाई, हिसाब किताब जिंदगी में बहुत मायने रखता है, जैसे कि हर रिश्ता भी किसी न किसी हिसाब से जुड़ा होता है। कहीं प्यार का हिसाब नहीं रखा जाता तो कहीं छोटी छोटी बातों का लेखा जोखा रिश्तों में दूरियां ले आता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं उन रिश्तों की जहां दिल का हिसाब दिमाग के हिसाब से कहीं ज्यादा मायने रखता है।

तो दोस्तों हम बात कर रहे थे परिवार में हिसाब किताब की। क्या परिवार के सदस्यों से पैसों का हिसाब मांगना सही है या गलत? कई लोग कहते हैं कि रिश्तों में भरोसा होना चाहिए क्योंकि परिवार में तो भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब बात दोस्तों पैसे की आती है ना, तो कई बार छोटी सी जो गलतफहमी होती है वो भी रिश्तों में दूरियां ले आती है। तो क्या हिसाब मांगना अविश्वास है या फिर जिम्मेदारी निभाने का तरीका, आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जवाब थोड़ा सा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिसाब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप बच्चों में एक अच्छी आदत डालते हैं, साथ ही साथ एक ऑनेस्टी का भाव भी उनके अंदर आता है कि हिसाब किताब देना है तो कहीं से कुछ गोलमाल नहीं कर सकते।

तो साथियों, दिल तो चुराया जा सकता है, लेकिन हाँ, हिसाब की गड़बड़ी जो होती है ना, वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए रिश्तों में भरोसा तभी रहेगा बरकरार जब हिसाब भी होगा बिल्कुल साफ साफ। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के जो समय में ना कहीं बड़े परिवार हैं, छोटे परिवार भी हैं, खर्चे बढ़ गए हैं तो जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि चलो हिसाब किताब को साफ रखते हैं, तो इसे बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साफ बातचीत अक्सर कर रिश्तों को बचा लेती है। तो इसी दिलचस्प मुद्दे पर हम कर रहे हैं आज ढेर सारी बातें आपके अपने प्रोग्राम आशियाना में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
6: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
7: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
8: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
7: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
9: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
10: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
11: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
12: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
13: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
12: म्यूजिक मस्ती।
14: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
15: सुनिए रोजाना शाम 8

सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना और आज आशियाना में बात हो रही है कि क्या परिवार के सदस्यों से हिसाब किताब मांगना सही है या गलत। दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल व्यू की तो हमने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल भी होता है जहां पर कोई हिसाब किताब के परे आपकी मदद करे। कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट मनी में से अगर कोई भाई या बहन मदद कर देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है उसके साथ, लेकिन कई बार हिसाब मांगने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर लहजा प्यार भरा हो तो बात आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन अगर शब्दों में ताना हो तो अपने भी पराए लगने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी है पहले शब्दों को तोलने की और फिर बोलने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातचीत का लहजा हमेशा ही मायने रखता है। क्योंकि परिवार के जो रिश्ते होते हैं ना, वो एक छोटे से एक बारीक से धागे से जुड़े होते हैं, तो उन्हें प्यार से सहेजने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि आपके परिवार में आप हिसाब किताब को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे जब बच्चों को किसी सामान को लेने के लिए भेजते हैं ना, तो कैसे उनसे हिसाब मांगा जाता है। सही बोल रही हो ना?

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया।

0: ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी?
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना कर लिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू

0: जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी। उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा,
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
2: चुब्बा
0: अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। है सोचा बेटे, सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: बेटा बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो...
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा।

0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं।
2: ये देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा आई,
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा गांडा चुप गया आई।
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
2: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को। तो
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा, चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।

0: हाँ अरे चुब्बा हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे हैं।
1: तू समझ गई है?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।
1: सच्ची।

0: संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
1: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
2: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
1: किसी ने कहा,
3: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
1: किसी ने कहा,
4: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
1: किसी ने कहा,
5: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
1: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
1: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
2: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और फिलहाल समय हो गया है 2:59 और 3 बजने को हैं। इसी के साथ ये समय होता है कार्यक्रम रेडियो

डॉक्टर का, जिसमें आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है और उनके बारे में आप जान सकते हैं सीधे एक्सपर्ट से। तो फिलहाल बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता, एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद पूजा जी।
1: हमारे इस खास कार्यक्रम में अगर इस विषय से जुड़े आपके पास हैं कोई सवाल तो आप हमें करिए कॉल। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1082। श्रोताओं, आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, आज हम आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे एलर्जी है, और आज ये इतनी आम क्यों हो गई है, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है।
2: धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एलर्जी क्या चीज़ है ये हमें समझना है। जब भी कभी कोई भी चीज़ के संपर्क में हमारा शरीर आता है, चाहे वो कोई कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, या बाहरी कोई कण है, तो ऐसे शरीर में, ऐसे स्वरूप में हमारे शरीर से कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस अक्सर हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे को बचाता है वो करता है। अगर ये इम्यून सिस्टम बाहरी चीज़ को पसंद नहीं करता, उसको समझ नहीं आता, तो वो उसके खिलाफ रिएक्शन करता है। अगर वो इन्फेक्शन है तो उसके खिलाफ इन्फेक्शन के रिएक्शन करता है। अगर वो साधारण कण है, जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शरीर एलर्जी के कुछ लक्षण प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एलर्जी जो है वो साधारण चीजें, जिन चीजों को नॉर्मल व्यक्ति को रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसको भी इम्यून सिस्टम गलत समझ के उसके खिलाफ रिएक्शन करता है, अधिक प्रतिक्रिया करता है, और जिसकी वजह से एलर्जी होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें कि एलर्जी के कारण और प्रकार क्या है, और कोई कब और कैसे उसको पता चले कि वो एलर्जी का शिकार हो गया है।
2: जी जी, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एलर्जी जो है वो एक कई सारे लक्षणों के साथ में प्रेजेंट कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आँखों की एलर्जी के अंदर, जिसके अंदर आँख के अंदर खुजली होना, लालीपन होना, पानी आना, नाक की एलर्जी, जिसमें आपने अक्सर कहते सुना होगा लोगों को कि छींकें आती हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग के अंदर आती हैं, उसके बाद में फिर नाक बहना, नाक बंद होना, कई बार कुछ लोग मुँह खोल के सोते हैं, खराटा लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें एलर्जी की संभावनाएं हैं। इससे कई बार नींद भी प्रभावित होती है, रात को नींद नहीं आ पाती है, दिन के अंदर कई बार स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस के अंदर नींद जो है वो आती है, तो ये सभी एलर्जी के लक्षणों की वजह से उनके प्रभाव हैं। फिर सांस फूलना, जिसके अंदर काफ़ी लोग इनहेलर, नेबुलाइजर की दवाइयां यूज़ करना, आपने अक्सर देखा होगा दिवाली के समय पे पॉल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और दिल्ली के अंदर तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पॉल्यूशन, मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक पॉल्यूशन काउंट किया जाता है दिल्ली के अंदर, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो एलर्जी के लक्षणों को बढ़ा देता है। इसी के अलावा खाने पीने की चीज़ें, बच्चों में कुछ अलग कारण होते हैं खाने पीने की चीज़ों के जो एलर्जी के रूप में प्रेजेंट कर सकती हैं। कभी कभी पेट की समस्याएं, कभी कभी चमड़ी की समस्याएं, जैसे उभरे हुए छत्के आ जाना और फफोले से, या कभी कभी एक्जिमा की तकलीफें हो जाना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये एलर्जी कर सकती है,
1: अंदर आती है। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर हम आपसे विस्तार में जानकारी लेंगे, उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। और श्रोताओं, आपको बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल है आवश्यक। और इस खास विषय पर आपके भी है अगर कोई सवाल तो आप करिए ना हमें कॉल, उसके लिए हमारे नंबर 3421080

0: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, कई लोग किसी खास तरह की सुगंध या किसी चीज के संपर्क में आने से ना छींकना शुरू कर देते हैं। क्या एलर्जी सिर्फ छींक आने या नाक बहने तक सीमित है, या ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है?
1: सो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें एक्चुअली दो प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ये नाक को प्रभावित करती है,

0: तो हम कहते हैं कि एलर्जी की एक बीमारी जो है पूरे शरीर को, और सिर्फ पूरे शरीर को नहीं, ये पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कैसे? कि जो लक्षण है वो लक्षण जो है एलर्जी के किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, वो नाक में भी आ सकते हैं, आंखों में भी आ सकते हैं, कई बार कान में बार बार दर्द होना, कान बहना, वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है।
1: जी
0: फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को कई बार कहा जाता है कि टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। बच्चों को नेबुलाइजर इन्हेलर की जरूरत पड़ना, छाती से सीटी जैसी आवाजें आना,
1: जी
0: ये सब भी छाती की एलर्जी की वजह से हो सकता है। शरीर पे दाने चकते होना, खुजली होना, और कभी कभी एलर्जी जानलेवा भी साबित हो सकती है।
1: जी
0: और इसी के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपके प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न जो है वो ये कि ये जो स्मेल है, ये स्मेल जो है इससे जैसे परफ्यूम हो गया या ये
1: जी
0: चीजें हो गई जो स्मेल की चीजें, स्ट्रॉन्ग स्मेल की
1: हाँ
0: चीजें हैं,
1: जी
0: अक्सर ये एलर्जी करती नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों की समस्याओं को बढ़ा देती है। तो
1: जी
0: ये ट्रिगर्स हैं, बट
1: जी
0: ये खुद अपने आप में एलर्जी नहीं
1: जी
0: करती
1: जी
0: है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को किसी तरह की स्मेल से एलर्जी है तो उसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है?
0: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब भी कभी कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, डेली बेसिस पे छींके आ रही है, आपको बार बार दवा लेने की जरूरत पड़ रही है, आपका काम प्रभावित हो रहा है, नींद प्रभावित हो रही है, आपको उसके लिए चिंता करनी पड़ रही है, इसका
1: जी
0: मतलब ये सही समय है कि जिसके अंदर एक एलर्जी के एक्सपर्ट को आपको जरूर मिलना चाहिए और जरूर दिखाना
1: जी
0: चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, ले लेते हैं इनको कॉल। हेलो
2: हेलो।
1: जी,
2: हाँ, पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरे 3 सवाल हैं। और
1: जी
2: पहला सवाल, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी
2: तो मेरी उम्र 48 वर्ष है और व्हाइट मेरी स्किन, जैसे फॉरनर्स होते हैं ना ऐसे मेरी स्किन है। तो
1: जी जी
2: मेरा सवाल है कि मुझे ना श्वसन एलर्जी है।
1: जी
2: अब जो भी खुशबू या महक से मुतालिक चीजें हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बदबू या स्मेल से मुतालिक चीजें हैं
1: जी
2: इससे मुझे मतलब एक दिमाग में भी वो प्रॉब्लम चल जाती है और पेट में भी, और
1: जी
2: सांस लेने में जो है वो दम सा घुटता है,
1: जी
2: और कुछ हद तक मुझे स्किन एलर्जी भी है। तो इसके लिए मैं घरेलू स्तर पर मैं क्या करूं, या अगर आपके पास आते हैं तो वहां मतलब मेडिसिन से इलाज हो जाएगा कि मतलब खून खराब है तोड़ फोड़ मार झाड़ की नौबत आएगी? पहला
1: जी
2: सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल कि मेरी माता जी को वो चमड़ी स्किन से मुतालिक एलर्जी है, उनकी उम्र 73 वर्ष है, तो वो क्या करें घरेलू स्तर पर, और अगर आपके पास आया तो आप क्या करें? तीसरा, मेरी सिस्टर है उनकी उम्र 47 साल है और उनको जो है नाक से मुतालिक एलर्जी है। तो ये 3 सवाल है, इनका जवाब दें बड़ी मेहरबानी
1: जी
2: होगी।
1: जी जी डॉक्टर साहब,
0: तो
1: आपने
0: धन्यवाद आपके प्रश्न का। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके तीनों प्रश्न एक दूसरे के साथ संबंधित ही हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि तीनों जो सदस्य घर के हैं जो ब्लड रिलेटेड हैं, तो ये ब्लड रिलेटेड तीनों सदस्यों को एलर्जी की समस्या है। और जो सांस की नली से संबंधित, तो सांस की नली हमारी नाक से शुरू होती है और फेफड़ों तक जाती है, तो जिसको हम रेस्पिरेटरी एलर्जी कहते हैं। और आपको अगर देखा जाए तो किसी एक सदस्य को नाक के लक्षण ज़्यादा हैं, किसी दूसरे सदस्य को शायद सांस के लक्षण ज़्यादा हैं,
1: जी
0: पर ये एक कॉमन एलर्जी ही है। अब ये हमें समझना है कि दो तरीके के कण जो है वो मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। एक तरीके का कण है जिसे वाकई में एलर्जी होती है, जैसे फूलों के पराग कण हुए, या जैसे मौसम बदलाव के साथ में अलग अलग तरीके के पराग कण आते हैं, कभी कभी कुछ तरीके के डस्ट माइट, कॉकरोच, पेट डेंडर्स, घर के अंदर पालतू जानवर, इनके जो डेंडर्स होते हैं,
1: जी
0: उन सभी चीजों से जो एलर्जी हो सकती है वो ट्रू एलर्जी है। लेकिन जिस व्यक्ति को एलर्जी की शिकायत है, ऐसी स्थिति में उनकी जो नाक की त्वचा है अंदर से, या सांस लेने की जो त्वचा है अंदर से, वो अधिक सेंसिटिव हो जाती है, अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाकी चीज़ों को भी रिएक्ट करती है, जैसे कोई स्मेल आ गई तो उसको भी रिएक्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में वाकई उसे एलर्जी नहीं होती, पर क्योंकि त्वचा पहले से ही संवेदनशील है जिसकी वजह से वो रिएक्शन करती है और आपको लक्षण आते हैं।
1: जी
0: रही बात बचाव की, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, एक विशेषज्ञ से मिलके उनकी सलाह के साथ में ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके और उनको दूर करने की कोशिश करना है कि किस तरीके से उसका बचाव किया जा सके। और कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिन ट्रिगर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाइयां जिनको भी दिया जा सकता है और उसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही सांस की नली में और नाक के अंदर जो संवेदनशीलता है उसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे बार बार वो रिएक्शंस ना हो। ओवरऑल जो आपको चीजें तकलीफ करती हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्मेल से होने वाले एलर्जी की, तो बहुत से लोग लोग एलर्जी और सामान्य सर्दी जुकाम में अंतर कभी कभी नहीं कर पाते, आम व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि उसे एलर्जी है या सिर्फ वायरल संक्रमण?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर देखें तो जैसे आपने नाम लिया वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण जो है वो एक तरीके का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें या वायरस जो है वो ज्यादातर बुखार के साथ आपको मिलेगा। एक बार जब भी कभी आएगा तो बुखार आएगा, बुखार के साथ में 5 से 7 दिन की वो प्रतिक्रिया रहेगी, जिसके अंदर शुरू के 3-4 दिन के लिए बुखार

0: नाक बहेगी और अक्सर जो है वो छींके मतलब लगातार आना, लगातार नाक से पानी बहना, और ये चीज़ें अचानक शुरू हो जाएंगी और उसके बाद वो दवाओं को एक दिन दो दिन के अंदर तीन दिन
1: जी
0: में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगी। एक और बड़ा अच्छा मिलेगा आपको वायरल के अंदर कि एक से अधिक लोगों को एक ही समय के आसपास में वायरल घर के अंदर मिलेगा। तो आप हमेशा पूछ सकते हैं घर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को भी कुछ सर्दी जुकाम चल रहा है क्या, तो उसकी वजह से शायद ये वायरल ज़्यादा है।
1: जी
0: लेकिन अगर ये सिंपल एलर्जी है तो उसमें बुखार नहीं आएगा, बदन दर्द नहीं होगा, शरीर में थकावट नहीं होगी, लेकिन सुबह उठते के साथ ही अर्ली मॉर्निंग छींकें आएंगी, सर्द गर्म के समय के ऊपर भी छींकें वगैरह ज़्यादा परेशान
1: जी
0: करेंगी, नाक ब्लॉक करेगी, तो इसका मतलब हम एलर्जी की वजह से ज़्यादा परेशान हो
1: जी
0: रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार,
1: नमस्कार
2: मैं टीना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
1: जी।
2: मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर सर से। डॉक्टर सर को नमस्कार पहले, और एंकर मैम को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: जी पूछिए सवाल।
2: सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जैसे ना सर मुझे ना बहुत ज्यादा धूल मिट्टी से एलर्जी है, मतलब आप ये समझिए कि जैसे जरा सी हवा चलती है और मिट्टी उड़ने लग जाए तो मुझे एकदम से सांस घुटने लग जाता है और एकदम से बेचैनी होना शुरू हो जाती है। या जैसे मैं बाहर कहीं ट्रैवल करती हूँ तो भी अगर जैसे धूल मिट्टी उड़ रही है या ज्यादा क्या नाम है धूप धूप की वजह से भी मुझे कई बार एलर्जी, मतलब सांस घुटने की जो है वो प्रॉब्लम है। तो और जैसे घर में हम धूप अगरबत्ती ये सब भी नहीं जला सकते, तो ये मतलब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने अस्थमा का वो किया क्या नाम है जांच की, वो नॉर्मल निकला है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इमरजेंसी एकदम ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर जहाँ पे मेरा कोई फैमिली का पर्सन मेरे साथ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? कोई क्या ऐसी मेडिसिन है जिसे खा के थोड़ी राहत मिल सकती है? और इससे
1: लगता है
0: तो
1: इनका
0: आपका
1: कॉल।
0: प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न
1: जी
0: है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो आपको जो समस्या है उसके अंदर दमे की समस्या अधिक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत नाक से होती है, नज़ले जुकाम से होती है। तो
1: जी
0: ऐसी स्थिति में कुछ तरीके के इलाज हमारे लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले, हाँ ये संभव है कि किसी व्यक्ति को दमे की शिकायत हो लेकिन उनका टेस्ट नॉर्मल आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अलग भांति के, अलग तरीके के टेस्ट, जैसे आजकल हमारे पास में कुछ अति संवेदनशील टेस्ट जिसको ऑसिलोमेट्री बोलते हैं, जो बहुत जरा सी चीज़ को भी पकड़ पाते हैं और उसके बाद में उसको बता पाते हैं कि क्या सांस की नली में थोड़ी बहुत भी सूजन है कि नहीं है। तो वो करके, और अगर हमें पता चल पाए कि थोड़ी सूजन भी है, तो आपको कुछ दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जिन दवाइयों के माध्यम से हम आपकी जो सांस की नली और नाक की जो संवेदनशीलता है उसको कम
1: जी
0: कर पाते हैं।
1: जी
0: फिर उसके बाद आपका प्रश्न है कि कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कभी कोई तकलीफ आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो उसके लिए कुछ रेस्क्यू मेडिसिन दी जाती हैं। अक्सर ये मेडिसिन जो होती हैं ये आपको नाक के माध्यम से या सांस के माध्यम से लेने की होती हैं, ये खाने पीने की नहीं होती हैं। रेस्क्यू मेडिसिन जो हैं, जिस समय के ऊपर अधिक तकलीफ है तब कोशिश की जाती है कि खाने पीने की दवा के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, या तो इन्हेलर या नेबुलाइजर की दवाइयाँ या नाक का स्प्रे, और या फिर अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, पर खाने पीने की टेबलेट सिरप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते।
1: नहीं डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है कॉल लाइन पे, ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो, हेलो,
3: नमस्कार जी, सर
1: नमस्कार।
3: को भी नमस्कार जी।
0: नमस्ते भैया
3: मैं यामिन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लॉन्ज जिला का
1: जी।
3: जी, मैं सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मौसम बदलता है
1: जी
3: तो उसमें लोगों को दिक्कत होती है, सर्दी से गर्मी में जाएंगे, गर्मी से
1: जी
3: बरसात में आएंगे तो दिक्कत होती है, तो ये भी एक एलर्जी होती है, और क्या ये माँ बाप से बच्चों में भी जाती है, कहीं जाना चाहिए।
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जेनेटिक होती है, अनुवांशिक होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स में, माँ बाप के अंदर, या इवन माँ बाप में भी नहीं, कभी दादा दादी या नाना नानी के अंदर भी अगर एलर्जी के किसी तरीके के लक्षण रहे हैं तो बच्चों में या पोते पोती नाती पोतों के अंदर भी काफ़ी हद तक उनमें एलर्जी होने के लक्षण हो सकते हैं। और जैसे आपने बताया मौसम के बदलाव के साथ लक्षण होते हैं जिसको हम सीजनल एलर्जी बोलते हैं, ये ज़्यादातर परागकणों की वजह से, क्योंकि अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग पेड़ पौधे जो हैं वो खिलते हैं, उन पर फूल आते हैं, उनके परागकण आते हैं, और ये परागकण जब संपर्क आते हैं स्पेशली संवेदनशील त्वचा के साथ, संवेदनशील नाक या सांस के
1: जी
0: साथ, सांस
1: जी
0: की नली के साथ, तब उस समय पर वो लक्षण करते हैं। तो यस, इसके लिए जानकार टेस्टिंग करानी बहुत जरूरी है, और उसके बाद में फिर उसका यथासंभव उपाय जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को गले में खराश होती है, तो क्या ये भी एक किसी एक तरह की एलर्जी का सिम्टम है?
0: जो गले में खराश है वो ज़्यादातर किसी एलर्जी की वजह से हो सकती है, लेकिन उसके अलग कारण भी हो सकते हैं। जो कॉमन कारण है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे किसी को नज़ला जुकाम है तो नाक आगे बहती है, लेकिन कई बार नाक बंद होती है, बहती नहीं है, लेकिन वो नाक पीछे गिरती है गले के अंदर। गले के अंदर गिरने की वजह से वो गले के अंदर अंदर एक तरीके की सूजन कर देती है, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा

0: में कोबल स्टोनिंग बोलते हैं। ये जो सूजन है इसकी वजह से गले की जो पिछली सतह है, जो त्वचा है, वो लाल हो जाती है और वहाँ पे खुजली होने लगती है, कभी कभी तालू में भी खुजली होने लगती है, आपने महसूस किया होगा। और ये सभी चीज़ें एलर्जी के लक्षण हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि लोग उसकी वजह से मुंह खोल के सांस लेते हैं, जो हवा जो है, जो पॉल्यूटेड एयर है, जो इन्फेक्टेड एयर है, वो उस कोबल स्टोन अपीयरेंस के साथ जाके चिपक जाती है और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन करती है, तो गला खराब होना, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ना, फीवर आना, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी अलग जैसे किसी को एसिडिटी, एसिडिटी काफी कॉमन चीज है और रिफ्लक्स की वजह से जो ये तेजाब है पेट से, ये रिफ्लक्स होके गले के अंदर जाता है और वहां पे भी ये खराश का कारण बन सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं इनका कॉल जी। हेलो
2: हेलो
1: जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: हाँ जी
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
2: मेरा पूछना ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि अगर पीएफटी नॉर्मल किसी का आ जाए तो उसको एस्थमा हो सकता है
0: जी।
2: अगर किसी को पीएफटी नॉर्मल आ जाए उसको फिर भी सिम्टम हो तो उसको कौन सी जांच करानी चाहिए?
0: बिल्कुल, तो उसके लिए जो जांच है उसका नाम है ऑसिलोमेट्री। ऑसिलोमेट्री के नाम से ये टेस्ट होता है जो पीएफटी के मुकाबले अधिक सेंसिटिव, अधिक संवेदनशील होता है, कुछ कुछ जगहों पर पाया जाता है। लेकिन हाँ, ये बारीक से बारीक सूजन को भी सांस की नली में पकड़ पाता है। जो स्पायरोमेट्री का जो टेस्ट है, जो पीएफटी का टेस्ट है, वो कभी कभी बारीक सूजन को पकड़ नहीं पाता, लेकिन जो ऑसिलोमेट्री का टेस्ट है वो उसको बारीक सूजन को भी पकड़ सकता है।
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ सबसे अधिक एलर्जी किन वजहों से होती है? क्या धूल प्रदूषण, परागण और कुछ खाद्य पदार्थ इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं?
0: जी, तो हमें ये समझना है कि एलर्जी को अगर मोटे तौर पे माने तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो किसी खाने पीने की वजह से होती है, एक है जो सांस लेने की वजह से होती है। अगर खाने पीने के अंदर बात करें तो सबसे अधिक जो मुख्य कारण है वो जैसे छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली दूध, दूध के बाद में जो अगला कारण है वो अंडा, फिर मूंगफली, कभी कभी किसी कुछ लोगों को गेहूं की एलर्जी भी होती है, और फिर उसके बाद में जो लोग नॉन वेजिटेरियन चीजें खाते हैं, सी फूड खाते हैं, तो उनसे भी कभी कभी एलर्जी हो सकती है। तो ये कॉमन कारण है खाने पीने की एलर्जी के। लेकिन हमने देखा कि भारतवर्ष के अंदर कुछ नए तरीके के कारण जो शायद विदेशों में नहीं मिलते, जैसे ब्रिंजल, बैंगन की एलर्जी होना, भिंडी की एलर्जी होना, तो ये भी हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि पाए जाते हैं।
1: सर, किसी प्रमुख सब्जी और जैसे आपने सी फूड के बारे में कहा, तो इससे एलर्जी होने का कारण क्या होता है?
0: देखिए, एलर्जी जो है वो किसी भी फूड के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है उससे होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम किसी को भी पसंद और नापसंद कर सकता है। तो जो ये पसंद और नापसंद करना है, ये हर एक के इम्यून सिस्टम का अपना खुद का रोल है जिसको कि कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ज्यादातर जेनेटिक कंडीशन में जो अनुवांशिक कंडीशन है उसके अंदर ये पोटेंशिएट हो जाता है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या पसंद करना है और क्या नहीं पसंद करना है। अभी जैसे आपको मैं बताऊं कि एलर्जी जो है, अगर आप देखेंगे तो जो लोग शहरों में ज्यादा रहते हैं, जो लोग साफ स्वच्छ वातावरण में ज्यादा रहते हैं, साबुन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कहीं अधिक पाई जाएगी। जबकि उसी के मुकाबले अगर आप देखेंगे गांव के माहौल के अंदर, जहां पे के लोग मिट्टी के साथ में पल बढ़ रहे हैं, वहां पे एलर्जी की समस्या कम होती है।
1: ऐसा क्यों?
0: तो जैसे जैसे हमारा वेस्टर्नाइजेशन, हम एक नवीनीकरण की तरफ बढ़ते जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, नेचुरल चीजों से दूर होते जाते हैं, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर जो है उन नेचुरल चीजों को भूलता जाता है। और फिर वही नेचुरल चीजें जब हमारे संपर्क में आती हैं बाद में, 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हमारे शरीर को समझ नहीं आता कि इनको कैसे रिएक्ट करना है, और ऐसी स्थिति में वो अननेचुरल प्रतिक्रिया करता है जिसको हम एलर्जी कहते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे बात कर रहे थे फूड एलर्जी की, उसी के साथ में रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस लेने की एलर्जी। अब इसके घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर अलग कारण है, चार दीवारी के बाहर अलग कारण है। चार दीवारी के अंदर जो कारण है वो अक्सर बोलते हैं डस्ट माइट। डस्ट माइट जो है, इसके अंदर ये एक छोटा कीड़ा होता है जो हमारे बिस्तर में, चादर में, सोफे में, गद्दों में पाया जाता है। ये बहुत महीन कीड़ा है जो हम आंख से नहीं देख सकते, और ये कीड़ा कुछ केमिकल बनाता है। ये केमिकल जो होते हैं, जब रात को जब हम सोने के लिए गए और ये केमिकल जो है नाक के जरिए अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा रात को 12 बजे 1 बजे इनहेलर की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, घुटन होना छाती के अंदर, सुबह सुबह उठते के साथ ही उनको छींके आना। कुछ लोगों को लगता है मुझे टूथपेस्ट एलर्जी है, कुछ लोगों को लगता है मुझे साबुन से एलर्जी है, पर एक्चुअल में ये डस्ट माइट की एलर्जी होती है, और ये डस्ट माइट के जो कण है ये इनको परेशान करते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है इंडोर में वो है कॉकरोच। आजकल हम सभी लोग कहते हैं कि कॉकरोच जो है वो हमारे घर में है नहीं, लेकिन कॉकरोच एक्चुअली सभी के घर में है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड होने की वजह से हमें दिखते नहीं, और ये कॉकरोच के जो कण है वो काफी दूरी तक, 70 मीटर 75 मीटर 100 मीटर दूरी तक भी क्रॉस कर सकते हैं हवा में। तो ये कॉमन कारण है।
1: और ये क्या परेशानी पैदा करते हैं सर?
0: ये वंस अगेन फिर से नाक के अंदर जाएंगे तो नाक के अंदर से नजले की दिक्कत करेंगे, सांस के अंदर जाएंगे तो सांस के अंदर दिक्कत करेंगे। और ये माना जाता है कि एस्थमा, दमा के मरीजों में जिनको कॉकरोच

0: एलर्जी है वो काफ़ी हानिकारक मानी जाती है और माना जाता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहेंगे, वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं।
1: जी
0: इसी तरीके से फंगस, कभी कभी हम घरों के अंदर पेड़ पौधे लगा लेते हैं, दीवारों में सीलन आती है, तो ये फंगस जो है ये भी
1: हाँ
0: परेशान करती
1: हाँ
0: है
1: ये एक मुख्य
0: जी।
1: कारण होता है जी,
0: और सबसे
1: बिल्कुल
0: इंपॉर्टेंट जो हमारे कल आजकल देखने में आ रहा है, पेट्स, कुत्ते और जो कैट्स और जो डॉग्स और जी ये जो घर के अंदर रखते हैं ये चीज़ें
1: सर, इस पर मैं आपसे
0: जी
1: विस्तार में बात
0: जी
1: करूंगी। उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
2: हेलो मैडम, मेरी
1: जी
2: आंखें लाल रहती हैं।
1: जी जी आप अपना
2: वो
1: नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं
2: मैडम, मेरा नाम रोशन सिंह है।
1: जी?
2: मैं वैसे रहने वाला तो उत्तराखंड काशीपुर का हूँ,
1: जी
2: लेकिन दिल्ली में हूँ इस समय।
1: ओके
2: तो मेरी
1: हाँ
2: आंखें काफी लाल रहती हैं, ऐसी रहती है जैसे कोई नशा कर रखा है, जबकि नशा कोई नहीं किया है। पानी, अगर सवेरे उठता हूँ पानी से नहाता हूँ, मैं साबुन भी नहीं लगाता तो भी मेरी आंखें लाल हो जाती हैं,
1: जी
2: और मुंह धोता हूँ तो भी आंखें लाल हो जाती हैं, काफी लाल हो जाती हैं। डॉक्टर को दिखाया था, करीबन 15-20 साल से लगातार लाल है। डॉक्टर
1: जी
2: को बहुत दिखाया तो डॉक्टर ने आंखें चेक करके ये बताया कि इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है, मुझे कोई जलन या खुजली सरे नहीं, लेकिन देखने वाला सामने कहता लाल है। लेकिन वो डॉक्टर कह रहे तो जो कोई परेशानी नहीं तो फिर मत इलाज करा, लेकिन देखने वाला परेशान हो जाता है। मैं गुरुद्वारे में हूँ इस समय तो
1: जी जी जी
2: लेकिन यही कहते हैं कि तुम कोई नशा करके आया है या कुछ है
1: जी जी
2: ऐसा,
1: डॉक्टर साहब,
0: तो
1: इनके
0: जो आंखों का
1: सवाल
0: लालपना है, जो आंखों
1: जी।
0: का लालपना है जैसे आपने बताया,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: ज्यादातर आंखों की जो एलर्जी है वो खुजली के साथ आती है, और खुजली के साथ में लालीपना होना, खुजली के साथ में आंखों से पानी चलना। तो लेकिन अगर आपने जैसे बताया कि सिर्फ लालीपना है लेकिन खुजली नहीं है,
2: हाँ
0: तो
2: खुजली
0: ऐसी
2: नहीं
0: स्थिति में
2: लेकिन
0: एलर्जी के चांसेस कम है, क्योंकि एलर्जी के लक्षण ज्यादातर खुजली के साथ में आएंगे, बिना खुजली के चांसेस काफी कम है।
1: जी उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है, और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता। इस विषय से जुड़े सवाल अगर आपके पास भी हैं आप हमें कॉल करिए ना, उसके लिए हमारे पास नंबर है 01123421080 और 2342102। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस विषय पर हमें बेहद इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर साहब आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन में ले लेते हैं इनको कॉल।
2: जी
1: हेलो।
3: हेलो, यस मैम, गुड आफ्टरनून।
1: जी जी, नमस्कार।
3: मैम मैं ऋषभ बोल रहा हूँ कटिहार बिहार से।
1: जी
3: मैम, अभी जितनी सारी एलर्जी को लेके बात हो रही है ना, वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीज मेरे लिए है, तो मैं अपना स्पेसिफिकली बताता हूँ। जैसे है ना कि जैसे मैं सोया हुआ हूँ, उठा, फैन ऑन है, मैं सो के उठा और जैसे उठा तो फिर जो हवा लगती है ना ठीक होने लगती है। फिर अगर तुरंत मैं पानी पी लिया तो उससे होने लगती है। या फिर जैसे अभी मौसम खराब है, हवा चलने लगी, धूल उड़ गया तो थोड़ा सा उससे हो जाएगा। कहीं पे गंदा जमा हुआ है, उसको अगर थोड़ा साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया तो उससे होने लगती है। तो कुछ कुछ ऐसे सही सिम्टम्स हैं। जैसे अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ थोड़ी ज्यादा गर्मी है, अगर थोड़ा सा घर गांव की तरफ चला गया तो वहाँ सुबह की हवा लगती है, उससे हो जाती है और छींक आती है, नाक से पानी जाता है, कुछ इस तरह।
1: इन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर साहब आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी
2: जैसे हमने आपको बताया, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जैसे हमने आपको बताया कि क्योंकि आपकी नाक की जो त्वचा है वो अंदर से काफ़ी संवेदनशील हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, जिसकी वजह से जो भी मौसम में बदलाव होते हैं, हवा, धूल के कण, ये सभी आपको परेशान करते हैं। मैं एक बहुत सरल से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। हम सभी लोग जैसे जब महिलाएं घर में खाना बनाती हैं और वो हाथ से नमक मिर्च कोई भी चीज़ डालती हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर हाथ में छोटा कट लग जाए और अब वो नमक हाथ लगाएं तो नमक जलाएगा, तो नमक नहीं जला रहा है, नमक तो पहले भी नहीं जला रहा था, वो कट है जिसकी वजह से अब नमक त्वचा के संपर्क में आया तो जलन महसूस हुई। इसी तरीके से अगर नाक आपका ठीक है, संवेदनशील नहीं है, तो यही चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर नाक को एलर्जी है और नाक आपका संवेदनशील है तो यही चीजें आपको महसूस करेंगी और जलाएंगी। तो उसके लिए मैं यही राय दूंगा आपको कि एक बार एक आप निकट के किसी एलर्जी विशेषज्ञ से मिलकर अपनी जांच कराएं, वो आपको जरूर मदद करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। हमें वेस्ट बंगाल से सादिर लिख रहे हैं कि मेरे को बहुत तेज खर्राटे आते हैं और इसकी वजह से इनके परिवार वालों को भी काफी दिक्कत होती है।
2: जी। तो हमें ये समझना है कि खर्राटा क्यों आता है। खर्राटा जो है वो अक्सर इस वजह से आता है कि नाक के पीछे का जो हमारा सांस लेने का रास्ता है, अगर वो रास्ता किसी कारण से थोड़ा पतला हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें खर्राटा आता है। अब ये कई कारण हो सकते हैं जिसके अंदर से, छोटे बच्चों के अंदर अक्सर ये एलर्जी होती है नाक की एलर्जी, जिसमें पीछे के रास्ते के अंदर जो टॉन्सिल है वो टॉन्सिल बढ़ जाता है, एडेनॉइड बढ़ जाता है, वो रास्ते पे दबाव डालता है तो रास्ता पतला हो जाता है तो खर्राटा आता है। यही चीजें 40-45-50 की उम्र के बाद में जो सांस के पीछे का रास्ता है उसकी दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती है। जब वो कमजोर हो जाती है, या मोटे लोगों के अंदर, ओबीज लोगों के अंदर, तो वो दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती है फैट डिपोजिशन की वजह से, तो रास्ता पतला हो जाता है, उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। तो हर खर्राटा एलर्जी नहीं है, पर हाँ कुछ खर्राटों में एलर्जी कारण हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, रोहिणी से राज लिख रहे हैं कि इनकी वाइफ को नोज पर निशान है और डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन उन्होंने हर्पिस की बीमारी बताई है, निशान अभी भी है, क्या हम आपके पास आ सकते हैं और ये क्या है प्रॉब्लम?
2: तो जो हर्पीज है, हर्पीज हमें समझना है कि हर्पीज एक वायरस का इन्फेक्शन है और वायरस का इन्फेक्शन जो है या हर्पीज जो है वो एलर्जी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में, बच्चों में या बड़ों में कभी कभी नाक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल क्रीज होती है जिसको हम एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं। सैल्यूट का मतलब क्या है कि जैसे किसी को नाक बह रही है और बार बार वो हाथ से नाक को रगड़ते हुए

0: की तरफ पहुंचता है तो नाक पे एक हॉरिजेंटल क्रीज बन जाती है, एक निशान आ जाता है जो परमानेंटली नजर आता है, तो उसको वो एलर्जी की वजह से हो सकता है।
1: जी। डॉक्टर साहब, नरेंद्र सिंह चौहान हमें उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि नागरिक ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि खासकर दिल्ली के पर्यावरण को वो शुद्ध करने में सहायक साबित हो सके।
0: ये एक बहुत अच्छी सोच है और एक
1: जी
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सिर्फ एलर्जी को ही नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ों को प्रभावकर होगी। सबसे पहला जो हमें समझना है कि सबसे पहले खुद को बदलाव करना है। सबसे पहले खुद ये करना है कि हमें किसी किस्म का पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, ये सबसे पहले ज़रूरी है।
1: जी
0: फिर उसके बाद अपने आसपास के माहौल को थोड़ा बेहतर करना है और उसके बाद आगे जाना है।
1: जी
0: तो एजुकेशन, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप चारों लोगों को बताएं कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग कितना हानिकारक है। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, आपके घरों के अंदर अगर अगरबत्ती धूप बत्ती यूज होती है,
1: जी
0: आप आज से ही उसको बंद कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि एक अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो
1: जी
0: 75 सिगरेट के बराबर धुआं देती है,
1: जी
0: एक धूप बत्ती 130 सिगरेट के बराबर धुआं देती है। तो आप समझिए कि अगरबत्ती धूप बत्ती आप जला रहे हैं लेकिन कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन कितनी सारी सिगरेट के धुएं के बराबर तो आप ऑलरेडी अपने फेफड़ों में लेके जा रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरू करें तो मुझे लगता है वहीं से ही बदलाव की शुरुआत हो जाएगी।
1: जी मनदीप झज्जर से लिख रहे हैं कि इनकी राइट साइड की तरफ फूड पाइप में घर घर की आवाज आती है और छाती में ऐसा खाली खाली लगती है, राइट साइड में होता है, ऐसा क्या करें?
0: देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सभी लक्षण हैं। लक्षण जो हैं, जैसे सांस की नली के अंदर दबाव की वजह से, सांस की नली में बलगम की वजह से, सूजन की वजह से, तो सबसे पहले आपको एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे सबसे पहले जांचना है, कराना है, PFT कराना है या ऑसिलोमेट्री कराना है और जानना है कि ये क्या सांस की नली में सूजन है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है कि अगर ये सांस की नली में सूजन है तो क्या एलर्जी है कि नहीं। अगर ये एलर्जी का लक्षण लगता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि एलर्जी की वजह से हो सकता है, फिर एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी यथासंभव जांच
1: जी
0: कराना।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार सर। डॉक्टर
0: नमस्कार जी।
2: साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: आप सवाल पूछिए अपना।
2: मैं आरडी जिला अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ, आशीराम मेरा नाम।
1: जी,
2: एलर्जी है
1: आपकी आवाज
2: नारियल।
1: थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा सा क्लियर। जी
2: मेरे नाक में बहुत परेशानी रहती, पानी बहता रहता है
1: जी
2: और नाक बंद हो जाता है और पानी अंदर गले में गिरता है और
1: जी
2: छींकें बहुत आती है।
1: जी
2: को करता हूँ तो बहुत जल्दी है। एक परेशानी तो ये है, और एक जो कभी कभी जैसे कुछ खाया तो रात को 1-2 बजे सांस की बहुत परेशानी हो जाती है और बिल्कुल ठीक होगा।
1: जी
0: तो धन्यवाद आपके प्रश्न का। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि जो सबसे कॉमन समस्या है वो रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस की एलर्जी है, जिसमें नाक की समस्या, सांस की समस्या जो अक्सर रात में या अर्ली मॉर्निंग के अंदर आती है, और बिल्कुल वैसे ही लक्षण आपने बताए। तो इसके लिए जो आपके आसपास बगल में अच्छे एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब से मिलके उनसे नाक की जाँच, सांस की जाँच कराएं, उसके बाद वो आपको कुछ दवाएं लिख के देंगे, नाक का स्प्रे, इन्हेलर की कुछ दवाएं लिख के देंगे, कुछ जाँचें करेंगे, कारण बताएंगे क्यों है, और साथ में उनके निदान को भी बताएंगे कि कैसे बचना है इस एलर्जी से।
1: जी डॉक्टर साहब, हमें सुकांता बालो जोधपुर राजस्थान से लिख रहे हैं कि इनको एक परेशानी है कि इनके नाक पर पिंपल आ गए हैं और जब ये सनलाइट से घर आते हैं तो इनको एलर्जी फील होती है, और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्होंने कुछ क्रीम वगैरह दी जिससे इनको अभी राहत नहीं मिली, तो ये क्या करें?
0: ज़्यादातर स्थिति के अंदर जो पिंपल्स होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से या फैट की
1: जी
0: वजह से होते हैं, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कभी गर्म से सर्द में या सर्द से गर्म में कभी जाएंगे और लक्षण अगर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आपकी नाक की त्वचा अंदर से संवेदनशील है। अगर
1: जी
0: वो अंदर से संवेदनशील है तो उसका कारण जानने की ज़रूरत है कि क्या ये एलर्जी है या ये एलर्जी नहीं है। तो
1: जी
0: वो जाँच करके पता चलेगा, कुछ एलर्जी के टेस्ट होते हैं जिनसे जाना जा सकता है कि क्या आप वाकई में एलर्जी से ग्रसित हैं कि नहीं है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं पहले उनका कॉल।
0: जी
1: हेलो
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार
1: नमस्कार
3: जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार
0: नमस्ते जी।
3: जी मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खोखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी
3: अच्छा सर, वर्ष 2002 में मैं ज्यादा बीमार होया था, मतलब बुखार वगैरह और भी प्रॉब्लम्स थी, तो उसके बाद मुझे मतलब बलगम रहने लगी, खांसी में लगातार बहुत खांसी उठती है। मैंने बहुत इलाज करा लिया, यहाँ कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो करनाल में है और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में है और बाकी और हॉस्पिटल से भी कराया है जी, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, आराम वो आराम नहीं मिला। मतलब ENT वाले को भी दिखाया यहीं करनाल में और जो ये टेस्ट स्पेशलिस्ट हो, TB वाले डॉक्टर हो, इनको भी दिखाया जी।
0: जी
3: तो बात यह है कि जो बार बार थूकना पड़ता है, रोके खंडे टाइम के बीच में उसका थूकना पड़ता है बलगम, या कई बार अंदर निकलनी पड़ती है, तो इलाज बताएं।
0: जैसे आप बता रहे हैं कि बलगम जो ऐसा लगता है

0: जैसे आपकी सांस की नली में अधिक बनता है, और अभी हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि बलगम जो अधिक बनना है वो इन्फेक्शन में भी हो सकता है, एलर्जी में भी हो सकता है। तो जो भी आपकी जांचें हुई हैं, जो भी आपके डॉक्टर साहब देख रहे हैं, सबसे पहले वो ये बताएंगे कि ये जो बलगम जो बन रहा है अधिक, ये क्या इन्फेक्शन की वजह से कि एलर्जी की वजह से। अगर ये एलर्जी की वजह से आता है और वो डॉक्टर साहब को लगता है एलर्जी की वजह से है, तो उस स्थिति के अंदर एलर्जी की जाँचें महत्वपूर्ण रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको वाकई में किसी किस्म की एलर्जी हो जो काफ़ी समय से पकड़ में ना पाई हो, जिसकी वजह से आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक एलर्जी के जानकार डॉक्टर से भी मिल लीजिए, वो बेहतर रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, वीरू बख्शी हमें मेरठ से लिख रहे हैं कि इनके लेग पर कट पड़ जाते हैं और वहां पर इनको खुजली होती है, जिसके कारण ये इनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है और खुजली करने पर खून निकलता है, तो क्या इनको करना चाहिए?
0: जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये खुजली होती है, और ये इसका मतलब ये है कि त्वचा में एक लेवल की एक्जिमा की शिकायत है। एक्जिमा एक तरीके की एलर्जी होती है, पर अक्सर ज्यादातर एक्जिमा जो है वो जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन स्पेशलिस्ट कोलीग्स होते हैं, वो डॉक्टर्स जो है वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, पर हम उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ कारण, जैसे व्हीट एलर्जी हो गई या डस्ट माइट एलर्जी हो गई या कुछ और तरीके की एलर्जीज हो गई, वो कभी कभी एक्जिमा को बढ़ा सकती हैं, तो वो कभी कभी हम टेस्ट करके उसमें मदद कर पाते हैं। पर स्किन की केयर जो है वो सबसे पहले इसके अंदर एसेंशियल है। अच्छे मॉइस्चराइजर्स के साथ, कुछ दवाओं के साथ, कुछ मलम के साथ में स्किन की केयर बहुत जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, आशा पाठक हमें नीदरलैंड से मैसेज कर रही हैं, वो लिख रही हैं कि मेरे हस्बैंड को और मुझे थायराइड की समस्या है, कभी कभी गले में खिचखिच होती है, क्या ये थायराइड की वजह से होती है या कोई एलर्जी इसका कारण है?
0: जो गले में खिचखिच होना है उसका और थायराइड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
1: जी।
0: जो गले में खिचखिच होना है, हाँ, वो पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसे हमने कहा कि नाक के अंदर एलर्जी होने की वजह से अगर पानी पीछे टपकता है तो हो सकती है, या कभी कभी एसिडिटी, जिसको हम बोलते हैं कि तेजाब की मात्रा अधिक बनना, एसिडिटी अधिक बनना, उसकी वजह से, रिफ्लक्स की वजह से भी गले के अंदर कभी कभी तेजाब आ जाता है और खिचखिच की समस्या हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमें कई हमारे श्रोता जो है व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं कि उनको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है और आपके द्वारा दी गई जानकारियां उनको बहुत खास लग रही है। इसके साथ ही हमें पवन कुमार शर्मा हुलास रोधापुर जिला बिहार से लिख रहे हैं कि मुझे घुमोरियों जैसे कुछ कुछ हो जाता है, हर साल एक ही जगह पर मुझे ये प्रॉब्लम होती है, क्या करना चाहिए, मैं इससे काफी परेशान हूँ।
0: जी, ये जो घुमोरियां आप बता रहे हैं, इसको हमारी मेडिकल भाषा में काफी कुछ समय पर अर्टिकेरिया कहते हैं, और ये अर्टिकेरिया अगर कुछ समय के लिए चलता है, 2-4 दिन 10 दिन चलता है, तो वो अक्सर वायरल इन्फेक्शन के साथ में, मौसम बदलाव के साथ में हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज जो होती है वो 2 या 3 महीने से अधिक चलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है, तब ऐसी स्थिति में ये एलर्जी की वजह से हो सकता है।
1: जी। एक और हमें देहरादून से मैसेज मिला है उषा जी का, वो लिख रही है कि जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ तो डस्ट के कांटेक्ट में आने से पूरी बॉडी पर एलर्जी रैशेस जैसा निकल जाता है और बहुत इचिंग होती है, मुझे कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी है।
0: जी।
1: ऐसे में ये क्या करें?
0: जैसे मैंने बताया आपको कि डस्ट माइट एक इस तरीके का कीटाणु है जो कण जो रिलीज करता है, वो कण जो है अगर सांस के नली में जाते हैं तो नाक की समस्या करते हैं, सांस की समस्या करते हैं, और अगर वही कण चमड़ी पे लगते हैं तो चमड़ी के अंदर भी वो खुजली की समस्या, एक्जिमा की समस्या, ये सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ। जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपके उस डस्ट के अंदर वो पार्टिकल्स हैं जिनको के पता लगाना जरूरी है। हाँ। कि वो क्या पार्टिकल्स हैं, और अगर उनको पता लगा के उनको हम रिमूव कर सकते हैं, पर आपके लिए तब तक के लिए एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि घर में ड्राई डस्टिंग न करें। आप जो भी करें, वेट मॉपिंग, गीले पोछे की सफाई करें, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, वो शायद ज्यादा फायदेमंद रहे।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार आप दोनों को।
1: नमस्कार मैम,
2: मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था कि
1: नाम बताइए मैम अपना।
2: सपना।
1: ओके।
2: हाँ जी, मुझे पूछना था कि मुझे कुछ सालों से, 6-7 सालों से ठंडी चीजें खाने से, दूध दही, मीठी चीजें खाने से, खट्टी चीजें, चावल, दालें, छोले, राजमा, इन सबसे दर्दें बहुत ज्यादा होती हैं।
1: जी।
2: और अब तो मतलब जॉइंट्स में भी हो रहे हैं, जबकि मेरे RA फैक्टर, CRP सब नॉर्मल है, तो क्या ये एलर्जी है? और सेकंड क्वेश्चन था कि धूप अगरबत्ती घर में जलाने से, जोत जलाने से, आरती करते हैं जो, तो क्या उससे भी पॉल्यूशन होता है?
0: तो जब का पहला प्रश्न है जिसके अंदर आपने पूछा, तो ये सीधे सीधे लक्षण एलर्जी के नहीं है। कभी कभी हमारे को कुछ अलग तरीके की बीमारियां होती हैं जो एलर्जी जैसे हमें लगती हैं। कभी कभी शरीर के अंदर विटामिन डी, B12 की कमी होती है, कभी कुछ और तकलीफें होती हैं जिसको मास्ट सेल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो बहुत रेयरली ही हम पकड़ पाते हैं, ज्यादातर डिसऑर्डर्स नहीं देख पाते हैं, तो उनके सब ये लक्षण हो सकते हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, पर ये सीधे सीधे एलर्जी नहीं लगती है। दूसरी बात, बिल्कुल धूप बत्ती अगरबत्ती जो है वो काफी ज्यादा नुकसान करती है, अभी हमने बात किया, लेकिन हाँ, इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव, अच्छा उपाय है कि जोत जलाना, तो जोत जला सकते हैं और उससे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जिन लोगों को पहले से स्किन किसी तरह की भी स्किन एलर्जी है, क्या ऐसे लोगों को घर पर पेट्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए?

0: कि जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की एलर्जी है उसके लिए कोई भी पेट रिकमेंडेड नहीं है, चाहे उनको
1: जी
0: पेट से एलर्जी हो या ना हो।
1: ना हो। जी, डॉक्टर सर, आजकल फूड एलर्जी की बहुत चर्चा होती है। फूड एलर्जी में और फूड इंटॉलरेंस में क्या अंतर है? क्या किन खाद्य पदार्थों से सबसे ज्यादा एलर्जी हो
0: ये बहुत
1: सकती
0: बहुत
1: है?
0: महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने पूछा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं कोई एक चीज़ खाता हूँ, जैसे कोई कहता है मैं गोभी खाता हूँ या मैं ये चीज़ खाता हूँ और उसके बाद मेरे पेट में थोड़ा अफारा आ जाता है, गैस बन जाती है, पेट फूलने लगता है या
1: सर,
0: उल्टी
1: फूड
0: होती है।
1: एलर्जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में क्या अंतर है?
0: हाँ वही बता रहा
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: तो जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं जब कभी कोई खाना खाता हूँ, ये
1: जी
0: कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाता हूँ, उससे मुझे पेट के लक्षण आ जाते हैं, गैस बन जाती है और उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद उनको उस चीज़ से एलर्जी है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनटॉलरेंस है। इनटॉलरेंस क्या होती है कि उस शरीर के उस फूड के जो कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है उसको शरीर ढंग से पचा नहीं पाता और जिसकी वजह से उसको गैशियस डिस्टेंशन, गैस बनने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, पेट की समस्याएं आती हैं, तो ये इनटॉलरेंस के लक्षण है। लेकिन जो वाकई में फूड एलर्जी है वो उसके प्रोटीन की मात्रा की वजह से होती है, जिसमें लक्षण जरूरी नहीं है पेट के आए। हो सकता है उसको शरीर पर खुजली होनी शुरू हो जाए, हो सकता है उसको छींके आने लग जाए, हो सकता है सांस फूलने लग जाए, आँख की समस्या आने लग जाए, जबकि उसने फूड का संपर्क हुआ है। जिसको ट्रू फूड एलर्जी है, कभी कभी वो फूड को सिर्फ टच भी करता है तो टच करने से भी उसको लक्षण आ सकते हैं, उसको खाना भी जरूरी नहीं है उसको। तो फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस दोनों अलग अलग चीजें
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, एलर्जी से रिलेटेड जो टेस्टेज हैं उनके बारे में बताइए, और क्या कोई आधुनिक इलाज आज उपलब्ध है एलर्जीज के
0: ये
1: लिए?
0: ना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले एलर्जी के अंदर हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब मरीज से बात करना। बहुत बार हम मरीज से लगभग आधा घंटा भी बात करते हैं, उनसे बहुत सारी तरीके के सवाल पूछते हैं, उनके बीमारी से संबंधित काफ़ी सवाल होते हैं जो बीमारी से संबंधित नहीं भी होते, घर के वातावरण के बारे में, धूप कितनी आती है, सनलाइट कितनी है, उसके साथ में वेंटिलेशन कैसा है घर के अंदर, घर में कोई पेड़ पौधे तो नहीं है, घर की दीवारें कैसी हैं, सीलन तो नहीं है। ये सारी
1: जी
0: चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत बार आपने गौर किया होगा स्पेशली पेट्स की जो एलर्जी होती है, जैसे कैट की, बिल्ली की जो एलर्जी है, तो
1: जी
0: कैट के जो डंडर्स की एलर्जी है वो इतनी ज्यादा होती है कि अगर आपका बच्चा स्कूल गया है और उसकी क्लास में कोई एक दूसरा बच्चा है जिसके घर में कैट है और वो कैट में अपने घर से खेलता है और वो यहाँ पे आता है, कैट के डंडर अपने कपड़ों पे लेके आता है, वही डंडर आपके बच्चे के कपड़ों पे पैसिवली ट्रांसफर होते हैं और आपके बच्चे को लक्षण आ जाते हैं और आपका बच्चा कभी कैट के पास गया ही नहीं। तो हिस्ट्री हमारे लिए सबसे बड़ी क्लू होती है।
1: जी
0: उसके बाद में फिर हिस्ट्री लेने के बाद में फिर हम एलर्जी टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि काफी लोग जो होते हैं वो लेबोरेटरीज में जाके खुद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एलर्जी टेस्ट करा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक जानकार डॉक्टर के पास जाके एलर्जी के जो एक हिस्ट्री है उसको एक डिटेल में इवेलुएट करके और फिर आपके लिए जो टेस्ट सही है वही आपको चूज करना चाहिए, जो एक डॉक्टर ही चूज कर पाएंगे। फिर उन टेस्ट के माध्यम से जो चीजें निकलती हैं उनको वापस लक्षणों से मैच करके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको इन इन चीजों से एलर्जी है। ये टेस्ट अक्सर दो तरीके के होते हैं, एक चमड़ी के ऊपर हल्के सुई से टच करके करते हैं जिसको स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं, बड़ा सरल टेस्ट होता है, आसान टेस्ट होता है, और दूसरा ब्लड टेस्ट होता है। और ये टेस्ट जो होते हैं इनके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि किन चीज़ों से एलर्जी है। फिर कुछ आपको बचाव के उपाय बताते हैं या आपको कुछ ऐसी दवाइयां बताते हैं जिसको आज की तारीख में इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं।
1: जी
0: ये इम्यूनोथेरेपी का दूसरा नाम एलर्जी वैक्सीन भी है। ये इम्यूनोथेरेपी जो होती है इसको अगर दिया जाए तो एलर्जी के कारणों को काफ़ी हद तक जड़ से दूर किया जा सकता है और ये लगभग 3 से 5 साल का इलाज होता है, जिसके बाद में लोगों की नाक की एलर्जी, दमे की एलर्जी और जो इन्हेलर नेबुलाइजर की जो ज़रूरतें हैं वो सब लगभग तमाम उम्र के लिए ख़त्म भी हो सकती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं बच्चों की। बच्चों में एलर्जी होने का कारण क्या रहता है, और इनको कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं कि बच्चों को एलर्जी से बचाया जा सके?
0: जी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे हमने बात किया जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब ये है कि अनुवांशिक, अगर मम्मी पापा के अंदर, दादा दादी में, नाना नानी में, कहीं पे भी ब्लड रिलेटेड किसी तरीके की एलर्जी रही है तो उनके अंदर बच्चों के होने के चांसेस अधिक हैं।
1: ज्यादा है।
0: सेकंड, अगर मदर या इवन ग्रैंड मदर ने कभी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान में स्मोकिंग किया है तो वो स्मोकिंग जो है वो जो बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है उनको भी आगे एलर्जी की तरफ धकेल देता है। फिर उसके बाद आ जाता है डिलीवरीज, डिलीवरी के अंदर जो बच्चे वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं उनको एलर्जीज कम होती हैं, जो सीजरियन सेक्शन से बॉर्न हुए हैं उनको अधिक होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के पहले 6 महीने माँ का दूध सर्वोपरि है, जो होना चाहिए,
1: जी
0: जरूरी है, एलर्जी
1: जी
0: से बचाता है।
1: जी
0: फिर उसके बाद ऊपर का खान पान जो हमारे एलर्जी करने के जो कारण है, जैसे मैंने आपको बताया दूध, अंडा, पीनट, जो हर तरीके के जो फूड आइटम्स हैं हम जनरली कहते हैं 6 महीने से 12 महीने के बीच में बच्चे के डाइट में इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए। तो
1: जी
0: वीनिंग जो है वो टाइमली शुरू होनी चाहिए, अगर हम वीनिंग टाइमली नहीं करते, डिले करते हैं तो एलर्जी हमारे होने के चांसेस
1: जी
0: अधिक होते हैं।
1: जी
0: घर में अगर दूसरे तीसरे साल के अंदर कोई पेट्स को लेकर आए हैं, कुत्ता बिल्ली को लेकर आए हैं, तो वो एलर्जी के

0: कारण बन सकते हैं। तो कभी अगर मान लीजिए किसी बच्चे की त्वचा अच्छी नहीं है, उसकी स्किन जो है उसको एक्जिमा है, तो उसमें एलर्जी के होने के चांसेस अधिक होते
1: जी
0: हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों को तरीके से बचाव किया जाए तो यही एलर्जी को बचाव भी कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, स्कूल में किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ताकि बच्चों को एलर्जी से बचाया जा सके, क्योंकि बच्चे ना रोज एक लंबा समय स्कूल में बिताते हैं।
0: ये बहुत अहम प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्कूल के अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इसको बहुत गौर करें इस चीज़
1: जी
0: के
1: जी
0: लिए
1: जी
0: कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक बहुत लंबा समय जो है स्कूल में बिताते हैं। और स्कूल के अंदर बच्चे खाना भी खाते हैं, शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, बर्थडे पार्टी हो रही है तो केक भी खाते हैं। और कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को मान लीजिए कोई दूध की या अंडे की एलर्जी है, लेकिन उसको बिना जाने अगर उसको एक्सपोजर हो जाए केक का या किसी दूसरे की फूड शेयरिंग का, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत
1: जी
0: होती है। तो
1: जी
0: सबसे पहले स्कूल अवेयरनेस, तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको बोलते हैं एलर्जी स्कूल। इस एलर्जी स्कूल के अंदर हम स्कूल्स में जाके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में उनको अवेयर करते हैं, सभी को बताते हैं कि क्या क्या एलर्जीज हो सकती हैं। खाना जो है वो हम कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को इस तरीके की तकलीफ है तो उसको खाना शेयरिंग के लिए फोर्स न किया जाए,
1: जी
0: बल्कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करके और उस तरीके की टेबल्स बनाई जाएं सेपरेटली कि ये पर्टिकुलर टेबल मिल्क एलर्जिक बच्चों के लिए है, ये
1: जी
0: पर्टिकुलर टेबल एग एलर्जिक बच्चों के लिए है। इसी तरीके से जो स्कूल्स की कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स के अंदर बहुत कॉमन जगह है जहाँ पे कि फूड की मिक्सिंग हो सकती है, कि किसी बच्चे को एक चीज़ से और दूसरी चीज़ से एलर्जी है और वो आपस में मिक्स हो गई और बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसने कब कंज्यूम कर लिया और उसको तकलीफ हो गई। जो
1: जी
0: स्कूल का जो स्टाफ है, जो स्कूल के अंदर जो नर्सेज होते हैं, वो इक्विप होनी चाहिए कि अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो उसको किस तरीके से डील करना है, कब उसको नेबुलाइजर देना है, कब इनहेलर देना है, और जानलेवा अगर तकलीफ हो सकती है तो उसके लिए क्या इंजेक्शन जो लगाना है और तुरंत लगाना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो
1: जी
0: अवेयरनेस जो है, जानकारी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस मुहिम के साथ, एलर्जी स्कूल के मुहिम के साथ जरूर जुड़ें और इस जानकारी को हर स्कूल, हर बच्चे तक जरूर पहुंचाएं।
1: जी सर, आपने अभी जानलेवा की बात की, तो क्या कभी एलर्जी जानलेवा भी हो सकती है? यदि किसी व्यक्ति को अचानक गंभीर एलर्जी हो जाए तो परिवार को तुरंत क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल हो सकती है एलर्जी जानलेवा हो सकती है। एलर्जी के अंदर सांस की नली के अंदर घुटन आ सकती है, सांस की नली बंद हो सकती है, चोक हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंसान का गिर सकता है, और जिस तकलीफ को हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, तो
1: जी
0: एनाफाइलेक्सिस अगर किसी को भी होता है तो उस समय के ऊपर एक इंजेक्शन होता है जिसको एड्रेनालिन कहा जाता है, वो इमिजिएटली तुरंत मरीज के लिए जान को बचाता है जो उसके लिए देना जरूरी है। और अगर कभी भी किसी को इस तरीके का एनाफाइलेक्सिस हुआ है तो एनाफाइलेक्सिस को मैनेज करने के बाद उसको एलर्जी स्पेशलिस्ट से सलाह करना चाहिए, कारण जानने चाहिए, जिससे भविष्य के अंदर उस एनाफिलेक्सिस को बचाया जा सके। और आगे कुछ इंजेक्शन आते हैं जिनको लाइफ को बचाने के लिए उनको अपने पास रखा जा सके प्रिवेंशन के तौर पे।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ हिडन एलर्जीज भी होती हैं जो किसी खास परिस्थिति में उभरती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बार ऐसा होता है, कई सारे कारण है, जैसे एक है इम्प्रॉपर लेबलिंग ऑफ फूड्स। बहुत बार आपने देखा है कि खाने पीने के अंदर जो लेबल्स या तो होते ही नहीं है, लेबल लगे होते हैं तो उसमें आधी अधूरी चीजें लिखी होती हैं, पूरी तरीके से चीजें नहीं लिखी होती, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो नहीं बताते कि इसमें क्या चीजें हैं। कभी कभी फूड की मिक्सिंग होती है, आप एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहीं पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ एक ही शेफ जो है वो बना रहा है, परोस रहा है, और कभी कभी सेम ग्लव्स के साथ इधर और उधर मिक्सिंग होती है। तो ये जो सारे कारण हैं, ये हिडन एलर्जेंस होते हैं। आजकल हम लोग व्हीट नहीं खाते, आजकल हम लोग जो होते हैं बड़े मिक्स फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा पास्ता। ये जो पिज्जा पास्ता है क्या है, ये सब एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट का, जिसके अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि कभी किसी को नट की एलर्जी है, किसी को व्हीट की एलर्जी है, और वो उभर के एकदम से सामने आ सकती है। और इसी तरीके से कभी कभी कुछ लोगों को पार्शियल एलर्जी होती है, जैसे व्हीट से थोड़ी एलर्जी है और उसी के साथ कोई दूसरा ट्रिगर जैसे पेन किलर की मेडिसिन खा लिया, एक्सरसाइज कर लिया, जिसको हम बोलते हैं फूड डिपेंडेंट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्सिस, या हमें दो या तीन ट्रिगर डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन में चाहिए होते हैं, तब जाके मरीज को उस एलर्जी के लक्षण आते हैं, लेकिन एक ट्रिगर से वो एलर्जी के लक्षण नहीं दिखाई देते
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, एलर्जी अवेयरनेस के लिए विभिन्न जो गतिविधियां की जाती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
0: देखिए, एलर्जी अवेयरनेस के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो काफी जोरों शोरों से काफी गतिविधियां कर रहे हैं।
1: जी
0: जैसे मैं आज अगर देखें तो एफएम एयर का काफी शुक्रगुजार हूं इस मौके को देने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए। इस तरीके की एक्टिविटीज हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, हमारा भी अपना एक सोशल चैनल है आई सास के नाम से, उस पर करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में हम सभी से जुड़ें और हम उस अवेयरनेस के लिए हम उन सबसे सबको बात करते रहें।
1: जी। डॉक्टर साहब, एलर्जी को लेकर ना समाज में की भ्रांतियां हैं कि बच्चों को जो एलर्जी है अपने आप ठीक हो जाती है, आप इन मिथकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और
0: देखिए
1: एलर्जीज का इलाज नहीं है, कई ऐसे मिथक भी
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जो कभी काफी लोग कहते हैं कि जैसे एलर्जी तो अल्लाह की मर्जी है, काफी लोग कहते हैं कि एलर्जी तो जन्म के साथ आई है तो वो मरने के साथ ही जाएगी, वो नहीं जाएगी, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि एलर्जी को हमें समझना जरूरी है कि एलर्जी क्यों हो रही है, हमारा शरीर की प्रतिक्रिया किसी दूसरी चीज को क्यों रिएक्ट कर रही है, और फिर उसके बाद जब एक बार वो समझ में आए तो उसके बाद में उसका यथासंभव टेस्ट और यथासंभव इलाज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनोथेरेपी। दूसरी चीज जो है बचाव, बचाव एक बहुत जरूरी है। ये एलर्जी जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आप बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग गांव में रहते थे, जो लोग पुराने लाइफस्टाइल के साथ जीते थे, उनमें एलर्जीज कम मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम विदेशीकरण की तरफ बढ़ते हैं, हम बहुत हाइजीन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने जो पुराने जो मिट्टी और जो बाकी चीज़ें हैं उनको छोड़ते चले जाते हैं, और शायद उसी वजह से हमारा शरीर कभी सीख नहीं पाता कि इन चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से कैसे रिएक्ट करना है, और फिर जब एकदम से किसी चीज़ के संपर्क में आता है तो फिर वो एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। तो ये एक लाइफ स्टाइल को हमें सुधारना है,
1: सादा जीवन, सरल जीवन ही
0: सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, वो बहुत जरूरी है, जो हमें समझना जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, क्योंकि अब कार्यक्रम में बहुत कम समय रह गया और आज हमने बहुत सी कार्या इस विषय पर प्राप्त किया आपसे, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कौन सी बातें जिन्हें हर व्यक्ति को एलर्जी के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें समझना है कि एलर्जी जो है एक बहुत ही कॉमन चीज है। अगर देखें प्रैक्टिकली तो हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी एलर्जी से सफर कर चुका है, गुजर चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको छींके ना आई हो, सांस ना फूला हो, तो हर एक व्यक्ति जो है उसको सफर कर चुका है, तो एक बहुत कॉमन चीज है। और अगर इसको तरीके से अप्रोच किया जाए तो हाँ, ये एलर्जी का इलाज किया जा सकता है। दूसरा, हमें यह समझना है कि एलर्जी को अगर न ढंग से किया जाए तो यह क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, अगर आज एक बच्चा है जिसको सांस फूल रहा है, जो अपना बच्चा रात को सो नहीं पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, तो उसके पेरेंट्स भी बेचैन हैं, वो पेरेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित है, वो भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि एलर्जी का इलाज नहीं किया जा सकता। समय रहते अगर एलर्जी के कारणों को पकड़ा जाए, उनको दूर किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से अगर उनका इलाज किया जाए, तो उसको बहुत तक ठीक किया जा सकता है, व्यक्ति अपनी साधारण लाइफ जी सकता है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: तो आज हमने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में बात की, एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है, और इस पर हमें खास जानकारी दी डॉक्टर नीरज गुप्ता ने, जो है एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे इस शो में आए और हमें इतनी खास जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों पर सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण विस्तार का उल्लेख किया और कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है। इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने, नवाचार को समर्थन देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं की गहराई बढ़ाने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना के अंतर्गत 5 संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। औषधि विभाग ने बताया कि आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना और चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना MDCSS नामक 2 उप योजनाओं के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रस्ताव अगले 23 अगस्त या उससे पहले विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करने होंगे। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्यवाही से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जैन और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, खास सोमवार के दिन हम अल्फा जैन में लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी कि आप में से ही मिलता है किसी खास को मौका यहाँ पर आने का और आप

0: हैं कि घर से बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कैसे वो बच्चे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, उसी मुद्दे को लेकर आई हैं लावण्या। लावण्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद शालिनी जी। मैं आज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि हेल्थ सिर्फ एक नंबर या स्टैटिस्टिक नहीं, ना किसी स्केल पर, ना किसी डॉक्टर के चार्ट पे। हेल्थ एक फीलिंग है, एक बैलेंस है, और ये बैलेंस तभी आता है जब हम अपने आप को पहचानते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, इंटेलेक्चुअली। तो आज हम यही करते हैं, एक एक डायमेंशन देख लेते हैं।
0: बिल्कुल। तो आज लावण्या आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने वाली हैं जिनको आप लोग महसूस करते होंगे, फील करते होंगे जब आप घर से बाहर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याओं से आप रूबरू होते होंगे। लेकिन उनको डील कैसे करना है और लावण्या ने क्या रास्ता निकाला है उनको डील करने का, उस पर होगी बात आज के यूथ

तो आज लावण्या आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने वाली हैं जिनको आप लोग महसूस करते होंगे, फील करते होंगे जब आप घर से बाहर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याओं से आप रूबरू होते होंगे। लेकिन उनको डील कैसे करना है और लावण्या ने क्या रास्ता निकाला है उनको डील करने का, उस पर होगी बात आज के यूथ स्पीक्स में। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ।

दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की। अब यहाँ एक बहुत रियल प्रॉब्लम है जो सब स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो है मेस का खाना। अगर आप कॉलेज हॉस्टल में हो या पीजी में, तो आपको पता ही होगा कि मेस मील कैसी होती है। रोज़ दाल, रोज़ आलू की सब्जी, कभी कभी कोई हरी सब्जी। और जब आप सारी रात पढ़ाई करते हो या दिन भर काम करते हो, तो बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है। सही फ्यूल नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपल चीज़ें, सिंपल सजेशंस आपके लिए जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में विदाउट लीविंग मेस फूड, जो मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद।

वेलकम बैक टू एफएम रेडियो। अब डिस्कस करते हैं कुछ सुपर फूड्स। अंडा, एक एग, सबसे सस्ता, सबसे वर्सेटाइल। एक हार्ड बॉइल्ड एग अपने एक बैग में रख लो एंड आपका एक्स्ट्रा प्रोटीन सॉर्टेड। फॉर वेजिटेरियंस आपके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं टोफू एंड सोया चंक्स। दही एंड योगर्ट, मेस में दही मिलता है ना, ले लो। कर्ड राइस, कर्ड विद रोटी या सीधा एक बोल, गट हेल्थ का सबसे सीधा रास्ता। चना, मूंग, राजमा, ये दालें ओवरनाइट सोक करके स्प्राउट सैलेड बना लो। कोई ड्रेसिंग की बॉटल अपने साथ रख लो फॉर टेस्ट। और अगर थोड़ी सी लग्जरी हो तो पीनट बटर, टेस्टी भी, फिलिंग भी और प्रोटीन भी। अब एक दूसरा बड़ा इशू, डेस्क जॉब्स। इंटर्नशिप कल्चर आजकल मोस्टली यही है कि आप एक स्क्रीन के सामने 8 से 9 घंटे बैठते हो। तो इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी मेंटेन करने का एक छोटा सा तरीका।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को

0: सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
0: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
1: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
2: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक टू आकाशवाणी रेनबो। हम बात कर रहे थे इंटर्नशिप्स में यूथ अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकती है, इसका क्या सॉल्यूशन है। वॉक, लिटरली बस चलो। ऑफिस लंच ब्रेक में 15 मिनट वॉक कर लो। अपनी पानी की बॉटल रिफिल करते रहो, हाइड्रेटेड भी रहोगे एंड यू विल गेट योर स्टेप्स इन एज वेल। स्टेयर्स यूज करो लिफ्ट की जगह। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट ओवर टाइम ये बॉडी को जागरूक रखती हैं। एक और चीज, नींद। स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, इट इज मेंटेनेंस। 6 से 8 घंटे की नींद को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना बिल्कुल जरूरी है। आई अंडरस्टैंड सम डेज इन कॉलेज एंड ऑफिस दे रिक्वायर दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, बट बर्नआउट होना बहुत ईजी है। चाय, कॉफी, रेडबुल से नींद चुराना एक शॉर्ट टर्म डील है जिसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट बहुत ज्यादा है।

मैं हूं लावण्या और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन ऑन एफएम रेनबो। फिजिकल हेल्थ के बाद सीधा आते हैं मेंटल हेल्थ पे, और यहाँ भी लोग सिर्फ स्ट्रेस मत लो बोल के आगे बढ़ जाते हैं। बट स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइक टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट कैन बी मास्टर्ड। पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की। हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम पे कोई परफेक्ट लाइफ जी रहा है, लिंक्डइन पे किसी का स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है, स्ट्रावा पे न्यू पीआरस हैं, और हम यहाँ अपनी स्लाइड समझने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक अबाउट अ डिजिटल डिटॉक्स। इसका ये मतलब नहीं कि अपना फ़ोन फेंक दो, इसका मतलब है कि डेली कुछ घंटे वो सब बंद कर दो जो आपको जज कर रहा है या किसी से कंपेयर कर रहा है। वो टाइम सिर्फ आपका होना चाहिए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ डूम स्क्रोलिंग। दूसरी बात, जर्नलिंग। ये थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है, बट स्टडी शो दैट अपने थॉट्स लिखने से मेंटल क्लैरिटी आती है। आगे बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की इस गाने के बाद।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की। घर से बाहर जाना सिर्फ लॉजिस्टिकल नहीं, इमोशनल भी होता है। पहली बार अकेले रहना, खुद से डिसीजंस लेना, कॉलेज एंड फ्रेंडशिप्स का स्ट्रेस एंड इम्पोस्टर सिंड्रोम, किसी को मिस करना, लोनली फील करना या ओवरवेल्म्ड फील करना, ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है। यहाँ आपको ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना चाहिए। रोज रात को एक चीज सोच लो जो आज अच्छी हुई है, सिर्फ एक। कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं होना चाहिए, मेस में बस आज दाल में पानी कम था, ये भी चलेगा। ये आपके माइंड को ट्रेन करता है टू एक्नॉलेज द पॉजिटिव थिंग्स एंड बिकम मोर रेजिलिएंट। ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
7: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
6: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
7: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं अल्फा जन ऑन आकाशवाणी रेनबो। कई बार जब हम अनजान लोगों से मिलते हैं तो ना कहना मुश्किल लगता है, बट बाउंड्री सेट करना भी ज़रूरी है। हमें लगता है कि लोग बुरा मान जाएंगे, बट इन सेइंग यस टू समवन आप खुद को मना कर रहे हैं, अपने लिए, अपने टाइम के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अपने अलोन टाइम को वैल्यू करना सीखें।

नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आकाशवाणी रेनबो। हम अब बात करेंगे सोशल हेल्थ की। आप जब भी सिटीज़ में मूव करेंगे, आपका एक अपना सोशल स्फेयर होगा। पीपल टेंड टू स्टे विद वो लोग जो उनकी भाषा बोलें, सेम कॉलेज से हों, सिमिलर बैकग्राउंड से हों। बट दिस इज़ द टाइम कि आप डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करें और हर सॉर्ट के लोगों से बात करें। किसी और की नानी की रेसिपी सुनना, किसी और के सिटी के किस्से, अलग फेस्टिवल, अलग म्यूज़िक, ये सब वास्ट टैपेस्ट्री तो है जो भारत को बनाती है। और जब हम सिर्फ अपनी लेन में चलते हैं तो इस पूरी टैपेस्ट्री का एक ही हिस्सा देखते हैं। इसके लिए किसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करिए, रीडिंग क्लब्स, म्यूज़िक सेशंस, वॉलंटियरिंग या कोई स्पोर्ट, कुछ भी जहां अलग लोग मिलते हैं। और यहां एक चीज़ और, सीनियर से सीखना एंड मेंटरशिप कल्चर का पार्ट बनना। इस गाने के बाद हम बात करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ की।

नमस्कार, मैं हूं लावण्या और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ की, और मैं यहां रिलीजन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं मीनिंग की, पर्पस की। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब ये है कि आपको पता हो कि आप सब कुछ क्यों कर रहे हो। व्हाई आर यू स्टडिंग, व्हाई आर यू वर्किंग। कोई गोल सेट होना इम्पॉर्टेंट होता है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन कैन हेल्प यू। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम होते हैं और आपका फोकस बढ़ता है। और हाँ, नेचर, एक पार्क की बेंच पे बैठना, एक कलरफुल स्काई देखना, एक पुराने पेड़ की छांव पे कुछ पल गुजारना, इवन इफ यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन अ रूफ लिसनिंग टू म्यूजिक।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हेल्थ, क्योंकि हम एक ऐसी जेनरेशन है जो बहुत कंटेंट तो कंज्यूम करती है बट बहुत कम सोचती है. रीडिंग, बुक्स, मैं जानती हूँ ये थोड़ा आउटडेटेड ज़रूर लगता है, बट एक अच्छी किताब पे अपना पूरा फोकस के साथ पढ़ना, इट गिव्स यू मोर डेप्थ देन एनी इंस्टाग्राम रील एवर कुड. एक कैरेक्टर के साथ कुछ घंटे भर रहना, स्ट्रगलिंग विद एन आइडिया, एक अलग ही दुनिया में खो जाना, ऑल ऑफ दिस बिल्ड्स योर इंटेलेक्ट. एंड आर्ट, ये तो सीरियसली ख़त्म हो रहा है यूथ में. पेंटिंग, स्कल्पटिंग, क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर एंड फोक आर्ट्स, ये सब सिर्फ कल्चर नहीं है, ये हमारे देश की मेमोरी है. इवन विद कनेक्टिंग पीपल ऑफ फॉरेन कल्चर्स. और अगर हम ये सब नहीं उठाएंगे तो और कोई नहीं उठाएगा. एक आर्ट गैलरी विजिट करो, चाहे लोकल हो. एक कॉन्सर्ट सुनो, चाहे गज़ल हो या जैज. एक थिएटर शो देखो. आप नोटिस करेंगे कि ये ही एक्सपीरियंस हैं जो आपको अलग तरीके से सोचना सिखाते हैं.

वेलकम बैक। मैं हूँ लावण्या और हम बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल हेल्थ की। पॉडकास्ट्स, लेक्चर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, दे आर ऑल गुड टूल्स टू क्यूरेट कॉन्वर्सेशन एज अ पॉलीमैथ इज वेरी इजी, स्पेशली जब आप कॉरपोरेट में आते हैं एंड आपके सीनियर्स हमेशा काम की बात नहीं करना चाहते। और फाइनली अपनी क्यूरियोसिटी को प्रोटेक्ट करो। स्कूल में हम बहुत सवाल पूछते हैं, कॉलेज में थोड़े कम और जॉब में उससे भी कम। गेट इंटू सम नीश हाइपरफिक्सेशन एंड रोज ट्राई करो कि आप कोई नई चीज़ सीखें।

0: दोस्तों, आज आपने बहुत सारी बातें की लावण्या से, और लावण्या ने आपको बताया कि अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं तो कैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सबका ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कनेक्ट किया होगा लावण्या की बातों से। तो लावण्या, इन द एंड, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म होने की ओर है, अगर मैं जानना चाहूँ आपके हिसाब से हेल्थी यूथ का मतलब ओवरऑल होता क्या है?
1: शालिनी जी, मेरे हिसाब से हेल्दी यूथ एक ऐसा इंसान है जो अपने शरीर का ख्याल रखता है, बाहर का भी खा ले और प्रोटीन भी खा ले, एक बैलेंस रखे, जो अपने दिमाग को रेस्ट देता है स्क्रीन से भी, कंपैरिजन से भी, जो अपनी इमोशंस को फील करना जानता है, उन्हें छुपाना नहीं, जो औरों से जेन्युइनली कनेक्ट कर सका सिर्फ ऑनलाइन नहीं, जो कुछ बड़ा ढूंढ रहा है सिर्फ एक अच्छी सैलरी नहीं बट अ मीनिंगफुल वेल लिव्ड लाइफ, और जो अपने आप को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड रखता हो, जो पढ़ता है, सोचता है, देखता है, सुनता है।
0: बिल्कुल लावण्या, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक कहना चाहिए एक ढर्रे पे आके बढ़ते जाना काफ़ी नहीं होता कि आपको बस पढ़ना है, सैलरी के लिए काम करना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ की कुछ ज़रूरतें पूरी करनी है। सिर्फ इतना नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, अपने देश के लिए आगे बढ़ना है, बहुत कुछ ऐसा करना है जिस पर आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश आप पर गर्व करे। क्यों, सही कह रही हो ना?
1: बिल्कुल शालिनी जी, बिल्कुल।
0: तो लावण्या थी आपके साथ आज यूथ स्पीक्स में, और बहुत सारी बातें की, और हो सकता है आगे ये मौका आपको भी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं यूथ स्पीक्स में हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी से जुड़ने की, युवाओं की आवाज़ आप तक पहुंचाने की, आपके जो टॉपिक्स हैं, आपके जो मुद्दे हैं उनसे कनेक्ट करने की। तो फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम यूथ स्पीक्स में हम यहीं पर विराम लेंगे, और फिलहाल मुझे और लावण्या को, आपकी आज की आरजे को, इजाज़त दीजिए। आपको छोड़ जाते हैं एक प्यारे से गाने के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन कर

0: करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संवाद के माध्यम से समाधान मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो जाएगी। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। भारत द्वारा वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने 66 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 1450 हो गई है। हजारों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने कहा कि इस तरह की बातचीत ना तो नई है और ना ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बाइकर लोग कहते थे कि जो ओरिजिनल ट्रैक्स होते हैं ना, उनका जो आप रिमिक्स करते हो उसमें मजा नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं, मतलब एक से बढ़कर एक जो यहाँ पर रिमिक्स म्यूजिक, रिमिक्स जो सॉन्ग्स हैं वो सुनने को मिल रहे हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे, मतलब ओरिजिनल की तो खैर बात अलग ही है, उसका तो कोई आप मतलब मुकाबला कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ जो रिमिक्स तैयार हो रहे हैं ना, माई गॉड, माइंड ब्लोइंग है जी। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, और 6 बजे तक ना ढेर सारी अपडेट्स हैं आपके लिए। दिल्ली में क्या क्या होने वाला है ना आसपास, वो भी बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि ये जो जुलाई का महीना है, क्योंकि देखो आज तो होगी 29th और कल और बनाए, जो जून का जो एक दिन है वो है 30 जून, उसके बाद तो जुलाई है ना आपके सामने, तो काफी कुछ इवेंट्स हैं जो कि दिल्ली में होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसमें दिल्ली के लोग या जो दिल्ली आ सकते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो एंजॉय कर सकते हैं और जुलाई के महीने का ना पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन अभी जो लुत्फ उठाने के लिए है आपके पास, वो है ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सूबेदार।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

प्रोग्राम सैटेलाइट, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और अब आती है, बताते हैं आपको कि कहाँ कहाँ और क्या क्या फेस्टिवल्स है, पता है आपको। देखिए अभी तो जो होना है सबसे इंटरेस्टिंग है, जो जिस चीज़ के लिए ये जो सीज़न है सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो है आम। जी हाँ, तो जो 35वां आम महोत्सव है ना, 3 से 5 जुलाई तक, जिसको लेकर अभी हमने कमर्शियल पर प्ले किया था, बकायदा आपने सुना भी था उसमें, तो ये दिल्ली हाट जनकपुर में आयोजित तो होगा और उसमें 400 से अधिक जो आमों की किस्म है ना वो आपको नज़र आने वाली है। मतलब अलग अलग वैरायटी के, सोचिए 400 और उसके साथ साथ कई सारी कार्यक्रम भी होंगे, कई सारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो भी होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, आम कौन कितनी तेजी से कितने खा सकता है, यस दिस कंपटीशन। वैसे आम मेरा फेवरेट भी, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसे आम पसंद नहीं होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे लोग, 100% होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम खाने वालों की या आम पसंद करने वालों की जो तादाद है ना वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी रहने वाला है, तो अगर आप आम के शौकीन हैं, आम खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो कंपटीशन है ना वो आपके लिए, पहुंचिए फटाफट। और 3 से 5 जुलाई तक ये रहेगा, 5 जुलाई के बाद देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कहें ओ मिस द चांस। इसलिए टाइम है, अभी तैयारी कर लीजिए और 3 से 5 जुलाई के बीच में ये जो कंपटीशन होना ना, इसका अच्छे से लुत्फ उठाइए। फिलहाल लुत्फ उठाइए सॉन्ग का, फ्रॉम द मूवी वेलकम टू द जंगल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

यस, थामा फिल्म का ही सॉन्ग था, अल्टीमेट सॉन्ग है, ब्यूटीफुल मूवी और बड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आई थी ये फिल्म और लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद भी किया, नो डाउट। और आयुष्मान खुराना तो मतलब है ही अमेजिंग पर्सनालिटी और उसके साथ ही एक्टिंग, साथ ही रश्मिका, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, अगर चीज़ों की बात करें ना तो ये जो आपका 24 और 26 जुलाई तक का जो टाइम है ना, ये भी बड़ा बेस्ट टाइम है, पता है। इसमें जो हिरॉक्स है, यानी कि एक तरीके से पूरा आयोजन होगा इसके तहत, यशोभूमि पे होगा, द्वारिका में बकायदा आयोजित होगा और ये एक तरीके से इंटरनेशनल फिटनेस रेस आप कह सकते हैं, और जो एक तरीके से सहन शक्ति है, प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, उसका एक अलग ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एथलीट तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ जो आम नागरिक है ना, दिल्ली के लोग हैं या जो दिल्ली आए हैं और दिल्ली घूम रहे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंपटीशन में। तो एक बढ़िया मौका है, ज़रा देखिए ना कितना फिजिकली फिट है आप, चेक कीजिए खुद को और पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, एक अच्छा मौका है आपको अपनी फिटनेस का पता करने के लिए। और टेस्ट तो खैर आप लोगों के सॉन्ग का बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सॉन्ग मैं प्ले करने जा रही हूँ ना, आपके लिए सर्व सदाम होगा। दिस इज ऑल्सो गोना टू रॉक फॉर यू, एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM 90.4।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वैसे डांस तो गया होगा ना अपने इस गाने पे, है ना ये सॉन्ग ऐसा। अच्छा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, देखो 5:30 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट अब मतलब लोग अपने घर की तरफ रुख कर लेते हैं, और ऐसे में जो रेड लाइट है ना वहाँ पर बड़ी लंबी लंबी ना लाइनें लग जाती है, मतलब थोड़ी भीड़ सी इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे में ना आप अपना जो एक गुस्से का लेवल है ना उसको बिल्कुल डाउन ही रखना, ठीक है? मतलब रेड लाइट पर थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ता है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए।

कि बहुत गर्मी है, माना कि आप जो बाइक राइड कर रहे होंगे, देखिए जो गाड़ी चला रहे हैं वो तो चलो अपनी गाड़ी का एसी ऑन करके बैठे होंगे, बट जो बाइक राइड कर रहे हैं, जो साइकिल पे हैं, जो टू व्हीलर पे हैं, वो बड़े परेशान हो जाते हैं, पी पी पी पी पी पी हॉर्न मार मार के सामने वाले को भी दुखी कर देते हैं। तो ऐसे भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और रेड लाइट है जाहिर है ग्रीन तो होगी, और जब ग्रीन होगी तो आप बिल्कुल मतलब रवाना हो जाएगी घर की तरफ, कोई उसमें आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन सेफली ड्राइव कीजिए। और जो एक इस वक्त गर्मी की वजह से कभी कभी आप मतलब अपना जो एक कंट्रोल होता है ना गुस्से पे, वो लोग खो देते हैं, वो देखने को मिल जाता है कई जगह पर, कई चौराहों पर, कई रेड लाइट पर, कई जगहों पर जहां पर भी जरा सा भी ट्रैफिक लग जाता है तो पेशेंस एकदम जीरो हो जाता है। तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए, मतलब ठीक है ट्रैफिक है तो रेड लाइट है तो ग्रीन भी होगी, और ट्रैफिक है तो वो हटेगा भी, जस्ट हैव पेशेंस। और अगर ज़्यादा मतलब आपको लगे ना कि टेंशन हो रही है, अच्छा सा म्यूज़िक लगाया कीजिए जहाँ पे आप रुके हुए हो, और थोड़ी देर के लिए आप म्यूज़िक एंजॉय कर लिया कीजिएगा। और अगर आप इस वक्त रेनबो सुन रहे हो ना, तो ये तो बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है आपके लिए प्ले कर रही हूँ मैं, एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ये जो सॉन्ग है ना, ये कॉकटेल वन से है. अब तो खैर सीरीज आने लग गई है ना, तो इसलिए बताना पड़ता है कि ये वाला सॉन्ग कॉकटेल वन से है या फिर ये वाला जो सॉन्ग है वो पार्ट टू से है. तो ये पार्ट टू वाला नहीं है, ये कॉकटेल वन जो थी उसी का ये सॉन्ग है. हालांकि जो इसका जो दूसरा वर्जन है ना, वो भी बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है वो भी. और फिल्म भी बड़ा अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, बड़ी तारीफ हो रही है फिल्म की. और तारीफ तो खैर जो 14 से लेकर 17 जुलाई तक आयोजित होने वाला है ना भारत मंडपम में प्रगति में.

तरीके से ढालकर इस एग्जीबिशन में पेश किया जाएगा। आप भी जाइए, वक्त निकालिए, अभी तो टाइम है, आप प्लान कर सकते हैं उसको। और 14 से 17 जुलाई तक ये रहने वाला है, लुत्फ उठाइए वहाँ पर, देखिए कि हमारी जो विरासत है वो कितनी खूबसूरत है, और वो विरासत जब नवाचार में ढल कर आती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। और तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, और जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ें, हथकरघा जो एक तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ जो उकेरा जाता है कपड़ों पर, कागज़ों पर, लकड़ियों पर, नक्काशी जो होती है वो बेहद खूबसूरत होती है। तो वक्त ज़रूर निकालिएगा इसके लिए, फ़िलहाल वक्त निकालिए सॉन्ग सुनने के लिए जो मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज मैन।

निजाम में घुंघरू भले टूटे हो लेकिन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर जो गानों का सिलसिला है ना वो बिल्कुल नहीं टूटने वाला है, क्योंकि मैं जरूर जा रही हूँ लेकिन अब मैसेज मसाला मिक्स लेकर आ गई है गीत गुंजन। और 6:05 से मतलब जिस तरीके से पूरा ये शो रहने वाला है, आप उसमें धमाकेदार गानों के साथ ना जो मतलब चटपटे मैसेज है ना वो भी इंजॉय कीजिए। फिलहाल मैं आपको छोड़े जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन गाने के साथ। इंजॉय करते रहिए इसे और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो। बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य

सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी बिल्कुल, आपका अपना आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स। मुझे पता है बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं और बिल्कुल आपकी उंगलियां थरथरा रही हैं, जल्दी से आप हमें मैसेजेस भेजें। लेकिन किस टॉपिक पर भेजेंगे? जी हाँ, बता दूंगी मैं आपको जल्दी किस बात की। पहले गाना तो सुनिए, कैसी शाम है ये।

जी हाँ साथियों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ गीत गुंजन। और क्या है मेरा सवाल साथियों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद को ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहाँ हमें कुछ क्रूशियल और इम्पोर्टेंट डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हम निर्णय ले भी लेते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि हमें लगता है अरे यार कुछ और सोच लेते, होता है ना थोड़ा सा पछतावा, या फिर कई बार यूं लगता है बहुत अच्छा किया, हम राहत की सांस हमें आती कि वाह हमने जो भी डिसाइड किया इट वॉज परफेक्ट। तो यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा आपका बेस्ट डिसीजन है जिसने आपको बड़ा अच्छा फील कराया हो कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और आपने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है, या क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? ना बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पर इसके लिए आपको चाहिए होगा एक नंबर, वो मैं आपको दिए देती हूँ 9868107070। फिर से एक बार 9868107070।

जी हाँ बिल्कुल, हम आपसे मिलने आए हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूँ गीत गुंजन आपके साथ। एक मैसेज आया अनिल शर्मा का सरिता विहार से, इनका कहना है कि मेरा एक निर्णय कोरोना कर्फ्यू में लिया गया था जब मेरी लेखन में जिज्ञासा जागी थी, और जिससे वरिष्ठ उम्र बिना कार्य के भी व्यस्त खुद को देखता हूँ, यही मेरे जीवन का सटीक और सही निर्णय मैंने लिया था। क्या बात है अनिल शर्मा जी, बहुत अच्छा पढ़कर लगा कि आप इतना अच्छा आपने निर्णय लिया लिखने का, वेरी क्रिएटिव। और एक ये मैसेज आया सोनू बिजनौर ने लिखा है कि कोई भी हम फैसला बड़े इत्मीनान और सोच समझ कर लेते हैं, हमारे लिए हो या दूसरों के लिए। इसमें ये होता है कि सही निर्णय आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, और उसके बाद आपको कोई बुरा भी नहीं कहेगा, बिल्कुल ठीक। और यही विचार आपको और भी बेहतर बनाता है, और सोचे अच्छे विचार और अच्छे फैसले लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सोनू ने मैसेज किया बिजनौर से। और ये पंकज जी का मैसेज है अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग गीत गुंजन मैम जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। और मेरा ये कहना है कि अपने पिता की तरह मैं एक नेक इंसान बनने का मैंने निर्णय लिया है, और वही मेरे जीवन का बहुत अच्छा निर्णय है, और इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। तो जी हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका निर्णय, कैरी ऑन विद दिस।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने आपसे पूछा था कि ऐसा कोई डिसीजन जिसके लिए आपको सेकंड थॉट ना तो लेना पड़ा पहले, ना बाद में देना पड़े कि अरे मैंने कुछ गलत डिसाइड कर लिया। ऐसा वो परफेक्ट डिसीजन जो आपने अपनी लाइफ में लिया है, वो आपको हमारे साथ शेयर करना है। हमारा नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स रेनबो पर।

यहाँ साथियों प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स और ये क्या OMG इतने सारे मैसेजेस आपके एक साथ आ गए। ये मैसेज आया है अंकित बागपत का। इनका कहना है कि मेरा सबसे अच्छा फैसला था अपनी वाइफ से शादी करना। मेरी वाइफ दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। क्या बात है अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। इसके बाद ये मैसेज है सरफराज आलम का, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला शिक्षक बनना रहा। लोग कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और माताजी इंजीनियर चाहती थी, पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और माताजी चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैंने शिक्षा का मार्ग चुना और जो आज विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का जो संतोष मिलता है वो मेरे लिए किसी भी उपलब्धि से बढ़कर है। क्या बात है, ये भी आपके विचार जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा एक और मैसेज आया सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। इनका कहना है आसान रास्ते इंसान को आराम देते हैं और मुश्किल रास्ते इंसान को मजबूत बनाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। और संकल्प मजबूत हो किसी की मदद के बिना काम पूरा हो जाए। और ये मैसेज आया है, एक मैसेज आया मेरे पास कि कार्य के लिए समय प्रबंधन, ये डिसीजन मुझे कार्य करने के लिए बहुत मदद करता है। ये मैसेज आया हीरामणि वर्मा का, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। क्या बात है, मुझे छत्तीसगढ़ बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद वहीं की हूँ। जी हाँ। और ये मैसेज आया नरेंद्र सोनी देवगढ़ से, लिख रहे हैं पटियाला से लिख रहे हैं कि मैंने रेडियो सुनना शुरू किया, ये मेरे पिताजी ने कहा था कि ये बहुत काम आएगा तेरे, और ये मेरा सबसे बढ़िया निर्णय रहा कि मैंने रेडियो को चुना। और लू मैसेजेस, चलिए गाना सुन लेते जल्दी से, फिर मैं आपके और भी मैसेजेस लूंगी।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: साथियों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। हमारा फोन नंबर है 9868107070। फिर से मैं बता रही हूँ, 9868107070। और आज हमने आपसे पूछा था, ऐसा कौन सा डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लिया जिसके लिए आप फील करते हैं प्राउड?

जी हाँ साथियों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ गीत गुंजन और ये मैसेज आया हमारे पास मीना फ्रॉम मध्य प्रदेश। इनका कहना है कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी और मुझे आगे बढ़ना था, इस वजह से मैंने शादी के कुछ सालों बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और 2 डिप्लोमा कोर्सेज भी किए। इस डिसीजन ने मेरी लाइफ को और प्रोग्रेसिव बना दिया। वेरी नाइस मीना जी। ये मैसेज आया भुवनेश का अशोक विहार से। इनका कहना है कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी शुरू की और यही मेरा निर्णय था और ये बहुत अच्छा निर्णय साबित हुआ। एज आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो बहुत अच्छी बात है ये भुवनेश जी। इसके अलावा ये मैसेज आया है हमारे पास नियमित हर्षवर्धन का। ये कह रहे हैं मैं नियमित श्रोता हूँ और इनका ये कहना है कि मैंने अपने जीवन में जो निर्णय लिए उसको पूरी तरह से निभाए। क्या बात है। जैसे मैंने सोचा था कि मैं रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलने का मैंने निर्णय लिया और आज तक मैं उसे निभा रहा हूँ और बहुत अच्छी मेरी बिक्री हो रही है। तो ये आपका बहुत अच्छा निर्णय, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा, ये आपने हमसे शेयर किया। ये मैसेज इन्होंने मध्य प्रदेश से भेजा था और ये मैसेज आए कृष्ण कुमार मिश्र का। ये दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा। इन्होंने लिखा है कि 13 साल पहले जब मैंने नशे को छोड़ा, मुझे इस बात पे बहुत गर्व है, मैं बहुत अब आज़ाद महसूस करता हूँ और मैं अपने माता पिता और पत्नी व बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप अपना जीवन बिताएं। और ये मैसेज आया शुक्ल बाला का वेस्ट सिंजीनी से और ये कह रहे हैं कि हम कहीं पर काम करने गए थे और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई जिससे हमने पुलिस की हेल्प ली और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन वो हमारा डिसीजन अच्छा रहा और इस बात के लिए हमें प्राउड होता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जी हाँ, ऐसे कई बार निर्णय हमारी लाइफ में होते हैं जो हम ले लेते हैं फिर हमें बहुत गर्व होता है। यही कुछ आपको हमारे साथ शेयर करना है। हमारा नंबर है 9868107070 और एक डिशन और अच्छा हो जाएगा अगर बाहर बारिश हो जाए, मौसम थोड़ा सा बदल जाए। जी हाँ, बहुत गर्मी थी आज और अगर ये बारिश हो जाए तो इससे अच्छा डिशन मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कुछ और हो सकता है। सो लेट्स क्रॉस द फिंगर्स और ये गाना सुन लेते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: साथियों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूं आपके साथ गीत गुंजन और बहुत सारे मैसेजेस फिर से आ गए हमारे पास, तो चलिए बिना देर किए मैं झट से आपके मैसेजेस ले लेती हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं फोन नंबर, वो है 9868107070। ये मैसेज आया हमारे पास रंजीत कुमार मंडल का सिकटी बिहार से। इनका कहना है कि मैं अपनी डिग्री लेने के फैसले पर प्राउड फील कर रहा हूं, जिसकी बदौलत मैं टीचर बन सका। ये मैसेज है भेरूलाल का मध्य प्रदेश से। इनका कहना है ऐसा कोई निर्णय मेरे ध्यान में नहीं आ रहा जो मैंने लिया हो और उसका प्रतिफल मुझे मिला हो। कोई बात नहीं, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। ये मैसेज है हमारे पास जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। इनका कहना है माय फादर फोर्स मी फॉर सेवरल ईयर्स टू स्टडी लॉ बट आई वॉज एडमेंट नॉट टू बी अ लॉयर। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विथ माई डिसीजन बिकॉज इट्स टू मच टू लिसन टू क्लाइंट्स प्रॉब्लम ईच एंड एवरी डे देन लिव अ नॉर्मल लाइफ। अच्छा जोया जी, आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती ईच एंड एवरी डे और आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहती, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात हमसे शेयर की, थैंक्स फॉर इट। ये मैसेज आया गुड्डू धाकड़ का मध्य प्रदेश से। इनका कहना है मेरी शादी एक अनपढ़ लड़की से करा दी गई थी जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जी हाँ, बाद में वही मेरी सबसे बेस्ट जीवन साथी निकली और उसके साथ रहने का ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही निर्णय था। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपने इतने अच्छे अपने विचार हमसे शेयर किए। और ये मैसेज आया है कि हमने आकाशवाणी में अपनी फरमाइश भेजी है, मैसेज किया है और इस बात की हमें बहुत खुशी है और ये हमारा निर्णय सही साबित हुआ और आज तक हम आकाशवाणी के लगभग सभी कार्यक्रमों में फरमाइश भेजते हैं और खुश रहते हैं। क्या बात है। और इन्होंने लिखा है नाइस प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी थैंक यू। और ये मैसेज भेजा है किशन वन जानी ने, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, तो हम आपको कहेंगे थैंक यू।

साथियों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, और देखिए ना, समय तेजी से भाग रहा है। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के थोड़े से अंतिम पड़ाव पर और मुझे लेने आपके बहुत सारे मैसेजेस, तो चलिए मैं झट से जल्दी जल्दी दो तीन मैसेजेस आपके ले लेती हूँ। ये मैसेज आया है अमर रमेश कुमार खत्री कराची से। इनका कहना है कि मेरी जिंदगी का सही फैसला रेडियो सुनना रहा। और इसके अलावा एक ये मैसेज आया है मून मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज और काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और मैं जल्दी से आपके नाम ले रही हूँ, है ना, नाम सुनना अच्छा लगता है क्योंकि मैसेजेस अब लेने का टाइम रहा नहीं। और ये नोएडा एक्सटेंशन से श्याम सुंदर और सुनील रोहिला और रीना का मैसेज आया है। थैंक्स फॉर हमें आपने मैसेज किया। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: Welcome back to the Country Carnival, and I left you with the song Send Her Roses. This was by Don Williams. Well, that song synchronizes with everyone's mind, heart and soul. A prayer that makes you pause and think and makes that bond so close to each and everyone around you. Here's another track that captures the essence of relationships and memories. And this is by Garth Brooks, Cowboy Bill.

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: Well, time flies when the music is this good, isn't it? So we are heading now towards the final stretch of today's Country Carnival, and here's a high energy track to give you in an evening that final boost. And this one is by George Jones. Now, before that, we have Johnny Cash.

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिक मस्ती, जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, नॉन स्टॉप डांस हिट्स आप तक पहुंचेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आपके साथ गीत कुंजन, एंड इट्स अ मैजिक।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ गीत कुंजन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जी हाँ साथियों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और देखिए ना, टाइम कैसे बीत रहा है, भाग रहा है। और मैं सच बताऊं, बिल्कुल खो गए थे हम आपके साथ इस प्रोग्राम में, लेकिन क्या करें, गुड बाय कहना पड़ता है ना। तो कोई बात नहीं, अभी एक दो गाने हम आपको और सुनाएंगे, अभी आप रहिए हमारे साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 9:45 हिना मौज हाजिर खिदमत है आपकी याद आती रही प्रोग्राम लेकर आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और आज प्रोग्राम आपकी याद आती

जी हाँ, ये दूरियाँ कभी कभी खफा होने की वजह से भी आ जाया करती हैं रिश्तों के दरमियान, लेकिन वक्त पर अगर इन दूरियों को संभाल लिया जाए तो ये बढ़ती नहीं है, अलबत्ता कम हो जाया करती हैं। दोस्तों, हेल्दी रिश्ते जो होते हैं उनमें खुलकर बातचीत, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं को समझना अहम माना जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। रूठना कभी किसी अधूरी उम्मीद की वजह से नहीं होता, तो कभी किसी अनकही

बात की वजह से भी हो जाता है। और मनाने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आपने जाकर किसी को सॉरी कह दिया। सॉरी कहना कोई सॉल्यूशन नहीं होता और ना ही किसी को मनाने का एक तरीका है, बल्कि ये जताने का तरीका होना चाहिए कि तुम मेरे लिए कितने अहम हो। यू आर द ओनली वन जिसके बगैर जीना नामुकम्मल है। जिंदगी में आपकी अहमियत क्या है वो सामने वाले को फील होना बहुत जरूरी है जब आप उसे मनाते हैं।

क्योंकि हर रिश्ते में खटपट होना, रूठना मनाना बहुत आम सी बात है, लेकिन उसके बाद आप रिश्ते को किस तरह से बिना गांठ डाले ठीक करते हैं, स्मूथ चलाते हैं, ये अहमियत का हामिल है। अपने रिश्तों को संभालिए और जहां आपको सॉरी कहने की ज़रूरत पड़े तो दिल से कहिए, सामने वाले को एहसास दिलाइए, उसके दिल में जगह बनाइए और कोशिश कीजिए कि आपके रिश्ते स्मूथ चलें, अच्छे चलें और खुशियों का सामान बनें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या अच्छा

0: चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

9:22 हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों, रूठने मनाने का सिलसिला जो है वो रिश्तों के बीच कैसा रहता है, इस पर हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम है रिश्तों से मुताल्लिक, उन सभी बातों को छेड़ने का जो रिश्तों की नींव में होती हैं और जिनकी वजह से रिश्ते होते हैं। रूठते वक्त दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है, और मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होता है कि हर छोटी छोटी बात पर रूठ जाना या हर बार दूसरे से ही उम्मीद रखना कि वो हमें हर बार आकर मनाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बन जाती है किसी भी रिश्ते के बीच। क्योंकि एक इंसान जो बार बार मनाने की कोशिश करता रहता है, वो इंसान एक वक्त आने पर उस चीज़ को बोझ समझने लगता है, और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है फिर रिश्ते के बीच कि वो आपको मनाना छोड़ देता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रूठे हैं या आप मान चुके हैं। इसीलिए पहली बात तो छोटी छोटी बातों पर रूठना जो है या नाराज़गी दिखाना है वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। कोई अहम बात हो जहाँ नाराज़गी की ज़रूरत पड़े तो ही रिश्ते के बीच में नाराज़गी को लेकर आएं, और अगर आप नाराज़ हो भी जाएं तो उसे लंबा ना खींचें, खुलकर बात करें, क्योंकि बातचीत जो होती है ना वो हर मजबूत रिश्ते की नींव होती है, और हर रिश्ता कहीं ना कहीं बातचीत पर ही निर्भर करता है। जब आप बैठकर अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, और गलतफहमियां दूर होती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि रिश्ता जो है फिर से फलने फूलने लग जाता है, और एक दूसरे की मोहब्बत का सिलसिला जो है वो हमेशा रवा दवा हो जाता है। लेकिन उससे पहले समझाने का एक दौर जो होता है ना, उससे गुजरना बेइंतहा ज़रूरी है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

9:36 हुए हैं। नमाज के साथ हैं आप और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, यादों का सिलसिला और यादों में बसे हुए खूबसूरत से रिश्ते जिनके बीच में रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहता है, उससे रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं। खूबसूरत से प्रोग्राम में हिना मौज है आपके साथ और ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि कभी एक मुस्कान, कभी एक प्यारा सा संदेश यानी मैसेज, तो कभी एक सच्ची सी माफी, ये छोटे छोटे कदम जो होते हैं ना वो रिश्तों में फिर से मिठास घोल देते हैं। और याद रखिए कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होते हैं। कई लोग होड़ लगा लेते हैं इन रिश्तों में जीतने की, सोचते हैं कि हम अव्वल आ जाएं और दूसरे को हरा दें, लेकिन रिश्तों में जो जीतता है ना, ख़ास तौर पे ये होड़ लगाकर, वो इंसान हमेशा ज़िंदगी भर हार जाता है रिश्तों को। और जो खामोशी इख्तियार करके बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर पैवर

करके रिश्तों को निभा कर आगे बढ़ता है, वो इंसान असल में जीत का हामिल होता है। और ऐसे ही इंसान जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं और रिश्तों को साथ लेकर चलने के साथ साथ उन रिश्तों की दुआएं, एहसास, जज्बात और हर चीज उनके साथ चलती है ताउम्र। इसीलिए उनको कामयाब होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। और हर इंसान ऐसा जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में खुशी का एहसास अपने अंदर ही महसूस कर लेता है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

रही हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हिना मौज के साथ हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। यादों के दरीचे से हमने निकाले हैं वो रिश्ते जिनमें रूठने मनाने का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, रूठना अगर कहीं ना कहीं प्यार की भाषा है तो मनाना उस प्यार का सबसे सबसे खूबसूरत जवाब कहा जा सकता है। तो आज ही क्यों ना अपने किसी रूठे हुए को या तो आप मैसेज कीजिए या फिर उसे गले लगाकर कहिए कि तुम मेरे लिए ख़ास हो, बहुत ख़ास हो, और तुमसे मिलने के बाद जो मेरे साथ एक खूबसूरत से एहसास टटोलते हैं मुझे, या फिर वो एहसास कहीं ना कहीं मेरे आसपास आ जाया करते हैं, वो एहसास तुम्हारे होने से ही होते हैं। जब आप इस तरीके की फीलिंग अपने किसी ऐसे रिश्ते को देते हो जिसके बगैर आपका जीना भी मुश्किल है, तो वो इंसान आपका होकर कैसे नहीं रहेगा।

जी हाँ, यही जज्बा रखना है आपको अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों के बीच, कि देखना ही एक दिन जरूर होगा। जिंदगी में ये रिश्ते ही हैं जिनके साथ हम एक सफर पर निकल पड़ते हैं। वो सफर कब, किसका, कहाँ खत्म हो जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन जब तक ये सफर रवा दवा है, रिश्तों को थाम कर रखिए, एक साथ मिलकर रहिए, खुशियों को तलाश कीजिए और अपनी जिंदगी को बेइंतहा खूबसूरत गहवारा बनाकर रखिए। बहरहाल, इन्हीं खूबसूरत लफ्जों के साथ अभी फिलहाल इस प्रोग्राम में लेती हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन रहूँगी रंगे महफिल में 11 से 12 आपके साथ इस चैनल पर जिसका नाम है आकाशवाणी एफएम रेनबो। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए हमारा ये चैनल और खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए।

0: दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता

आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रख रखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति का बुधवार को अनंतपुरम स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कल रात अफगानिस्तान सीमा के पास हवाई हमले किए। इनमें पक्तिका और कुनार प्रांतों के इलाकों को निशाना बनाया गया। अफगान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिक मारे गए और 163 अन्य घायल हो गए। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Welcome back to the Rainbow Showcase on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. Listeners, I will take your message in a while. So tonight we are celebrating Adele, an artist whose music has crossed generations and cultures. Her albums have consistently connected with listeners because they have authentic stories about life's most personal moments. The song coming up next reflects on memories, relationships and the passage of time.

0: Is that continues to inspire millions around the world. Her music reminds us that vulnerability can be powerful, memories can be beautiful, and every ending can lead to a new beginning. And a couple of people are asking, well, this is Pankaj, and he's saying, may I ask for songs if you can play? My dear friend, I just have 10 minutes and I've lined up with two songs already. One is Skyfall and one is Love in the Dark. I think we cannot squeeze in something more. And especially Mondays, he's asking what's anything special. Monday especially in 10 to 11, we showcase one of the artists. And that's why this is especially, this 10 to 11 is for Adele specifically. M. Rajkumar Trichy Singh from Trichy Singh, a fantastic show, RJ Mukhtar Aljunani. Thank you so much, sir. And one Rajesh Bhalla from Meerut, he's saying, good evening, ma'am. Good evening, sir. How are you doing? I hope you're enjoying the fullest this show. Only on Akashvani Rainbow.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
0: You've been listening to Rainbow Showcase featuring Adele on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. And thank you for joining in and spending this hour on Akashvani Rainbow with me, Mukhtar Aljunani. I leave you with the two songs from Adele, a fitting farewell for tonight, for now. Wishing you all a peaceful night and a wonderful week ahead. Stay tuned to Akashvani Rainbow for more great music and engaging programs. Good night and take care.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत

सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: खूबसूरत लफ्ज मेरे जहन में महफूज हैं, खूबसूरत लफ्ज मेरे जहन में महफूज हैं, मैं करूं फिक्रे गजल तो काफिया हो जाएगा। एक बार फिर से आदाब कबूल कीजिए हिना मौज का। प्रोग्राम रंगे महफिल के साथ हाजिर खिदमत हूँ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। खूबसूरत कहानियों का ताना बाना या फिर एहसास जज्बात का कोई भी पल या लम्हा जब कैद होता है गज़ल के दायरे में, आता है पैराए में मौसिकी के, तो वो इतना खूबसूरत और इतना अजीज हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी का अक्स उसमें झलकना एक लाजमी सी बात होती है। लेकिन दोस्तों, आपका पसंदीदा प्रोग्राम रंगे महफिल, जिसको लेकर आज आपकी मेज़बान हिना मौज हाजिर है, इसमें आज बात करते हैं गज़ल में सिमटे उस जज्बे की जो आँखों से आया हो तो आंसू की शक्ल इख्तियार कर लेता है, सोच से महसूस हो तो इंसान गुमसुम रहने लगता है, और अगर लफ्ज़ों में बयान हो तो गज़ल बन जाया करता है, और वो एहसास है कौन सा, ज़रा सोचिए और बताइए। वो एहसास है दर्द का, जिसकी शिद्दत से दो चार होता है इंसान, जब तो दिल से निकलती है एक आह जो पत्थर को भी पिघलाने की क़ुव्वत रखती है। ऐसे में जब कहानियाँ अलट पलट करके वर्क गिरदानी की जाती है तो उन कहानियों में से जुज़ निकलता है मोहब्बत का, और वो जुज़ जो दिल पर सीधा असर करने की ताकत रखता है। ऐसे ही एहसास जज्बात को शायर जब लफ्ज़ों में पिरोता है तो गज़ल की शक्ल दे देता है।

ये बिल्कुल सही बात है। वक्त गुजरने के बाद जब हम पलट कर देखते हैं तो हमें वो ज़माने, वो लम्हात, वो एहसास और उनसे जुड़ी हर कहानी याद आने लगती है। यादें एक ऐसा सरमाया और ऐसा खूबसूरत एहसास हैं जो हमें वक्त दर वक्त अपने साथ लेकर उड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हम ज़मीन पर नहीं, आसमान पर हैं और बहुत सारी चीज़ों के बीच जो हमारी ज़िंदगी में गुजर चुकी हैं लेकिन फिर हम उन्हें दोबारा जी रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यादें ही कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, गज़ल की अगर बात की जाए तो गज़ल में सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक शायरी की विदा है, बल्कि ये एहसास और जज्बात का एक आईना है जिसमें मोहब्बत, जुदाई, इंतज़ार, तन्हाई, उम्मीद और ज़िंदगी के ऐसे ही अनगिनत रंग झलकते हैं। इसमें सबसे गहरा रंग है दर्द का, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। गज़ल में दर्द हमेशा आंसुओं का नाम नहीं होता। कभी ये बिछड़ने का दर्द होता है, कभी अधूरी मोहब्बत का, कभी अपने ही लोगों से मिली बेरुखी का, तो कभी ज़िंदगी में गुजरती हुई मुश्किलात का जिनसे हम रोज़ रोज़ गुजरते हैं और जिन्हें हम सर करते हैं। ऐसी ही मुश्किलों के साथ गुजरते हुए लम्हात हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। लेकिन क्या करें, जो दिल है वो उस वक्त बहुत बेचैन होता है और उसे समझ नहीं आता कि किस तरह रिएक्ट करे वो। और उस वक्त कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती ज़िंदगी में जो आपका दिल बहला दे, और बहलाने के लिए जो भी चीज़ मयसर होती है वो उस वक्त आपको चाहिए ही नहीं होती है। और ये एहसास, इस कैफियत से मेरे ख़्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ना गुज़रा हो या ना गुज़रे, क्योंकि ये सारी कैफियत एक इंसानी ज़िंदगी का ही सरमाया है जिनको लेकर हम चलते भी हैं, बढ़ते भी हैं और इनको साथ लिए बगैर बहुत सारी चीज़ें अधूरी भी रह जाती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना आए, खुशी और गम ना आए, तो बहुत सारी चीज़ों को समझना जानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक आम इंसान की ज़बान में कहा जाए तो ये एहसास और जज्बात आप आम तौर पर बयान नहीं कर पाते हैं, सही से आप दूसरे पर अपनी कैफियत को वाज़े नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही काम एक शायर लफ्ज़ों के पैराए में खूबसूरती से कर गुज़रता है। और एक गज़ल की शक्ल जब ये एहसास इख्तियार करते हैं तो हमें अपने से मालूम होते हैं, हमें बहुत अजीज़ हो जाते हैं।

0: को बहला।
1: बिल्कुल सही बात है। जब इंसान की जिंदगी में दर्द का बसेरा होता है, उस वक्त ये एहसास बहुत गहरा होता है और इस एहसास के आगे कुछ नहीं टिक पाता। जब दर्द अल्फाज का लिबास पहनता है दोस्तों, तो दिलों तक पहुंच जाता है। मगर दिलों का ये दर्द मायूसी नहीं सिखाता, ये इंसान को अपनी भावनाओं से, अपने एहसास और जज्बात से और इन जज्बों से रूबरू करवाता है जो आपके अंदर पैवस्त होते हैं। और गज़ल हमें बताती है कि दर्द भी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही तो है और हर दर्द के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। यही वजह है कि जब हम किसी गज़ल को सुनते हैं तो कई बार लगता है कि जैसे शायर ने हमारे ही दिल की बात कह दी हो। और ऐसे एहसास बहुत कमी से हमें महसूस होते हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन गज़ल जिन चीज़ों को अपने अंदर समोती है, बहुत ताकत के साथ पेश करती है। और वही एहसास व जज्बात आम और ख़ास हर इंसान की के जहन में, दिल में बस जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम कहते हुए, बोलते हुए गुज़रते हैं, लेकिन जो ताकत एक शायर के कलम में होती है, वो ताकत आम इंसान नहीं रखता अपने अंदर। यही वजह है कि शायर के कलम से निकले लफ्ज़ या उसके मुंह से कही हुई गज़ल जो असर अंदाज होती है, वो एक आम इंसान की कैफियत दूसरे तक पहुंच के असर नहीं पहुंचाती। इसीलिए शायर का मकाम बहुत ऊंचा है। वो लफ्ज़ों को इतना खूबसूरत और इतना आसान कुन बना देता है कि हर इंसान को वो अपने से लगते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

11:29 34 सेकंड सुन रहे हैं आप रंगे महफिल प्रोग्राम हिना मौज के साथ। बात चल रही है गजल में दर्द की। दर्द एक ऐसा एहसास है जिसके बगैर गजल अधूरी है। खास तौर पे गजल में मोहब्बत के साथ ये जज्बा बेइंतहा देखने को मिलता है। हर लफ्ज हर शेर इस जज्बे से होकर गुजरता है। गजल दिलों से जब होकर गुजरती है यही वजह बनती है उन सारे एहसास व जज्बात की जो दिल पर आया होते हैं बयां होते हैं। और शायद गजल सदियों से दिलों पर राज भी इसी वजह से कर रही है क्योंकि इसके अंदर से जो भी जज्बा उभरता है वो हर किसी के दिल तक पहुंचता है। दर्द की अगर बात करें तो दर्द अगर अल्फाज में ढल जाए तो वो शिकायत नहीं एक खूबसूरत एहसास में तब्दील हो जाता है जो बहुत ही ख़ास है। कहते हैं दर्द जब दिल में ठहर जाता है तो गज़ल बनकर जुबां पर उतर आता है। जो बात आंसू नहीं कह पाते वही बात अक्सर शेर कह जाता है। बहुत सारी ज़िंदगी में इस शेर को पढ़कर मुझे एक एहसास एक ख्याल जहन में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माथे पर पड़ी हुई सिलवटों को समझ नहीं पाते। उनको लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी एहसास को समझने के लिए। उनके लिए शेर व शायरी एक बहुत बड़ा तोहफा है जिसके ज़रिए वो हर एहसास हर जज्बे को समझने का एक तरीक़ा आज़मा लेते हैं क्योंकि उनको किसी भी इंसान की खामोशी पढ़नी नहीं आती। उसके माथे पर पड़ी हुई सिलवटें उनके आँखों से बहते हुए आंसू बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान खामोशी से समझता है। उनको समझने के लिए जब एक इंसान को अल्फाज की ज़रूरत पड़ने लगे तो उसके लिए गज़ल सबसे बड़ा ज़रिया है जो उसको ये सारे एहसास व जज्बात समझाने का जज्बा रखता है पावर रखता है। कहते हैं कोई हसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा मुझको पागल कहने वाला खुद ही पागल हो जाएगा। पलकों पे उसकी जले बुझेंगे जुगनू जब मेरी यादों के कमरे में होंगी बरसातें घर जंगल हो जाएगा। जिस दिन उसकी जुल्फें उसके शानों पर खुल जाएंगी उस दिन शर्म से पानी पानी खुद बादल हो जाएगा। जब भी वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा हाथ मेरे आँखों का ये मेला पानी गंगा जल मैला पानी गंगा जल हो जाएगा। वाकई जब एहसास व जज्बात के दरिया रवा होते हैं रात के इस पहर में तो बहुत सारी यादें झोंकों की मानंद आपके एहसास व जज्बात को कहते हैं ना कि टटोलती हुई गुजर जाती हैं छेड़ती हुई गुजर जाती हैं। और इस पहर में ऐसे एहसास व जज्बात जब आपके जहन में उभरते हैं तो ये कहने पर आप मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें किस तरह इन सब चीज़ों का जवाब दिया जाए। लेकिन बात दर्द की हो रही है तो दर्द का होना ज़रूरी है आज गज़ल के पैराए में क्योंकि ये एहसास बहुत ही अहम है गज़ल के लिए और गज़ल इसके बगैर अधूरी है।

बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते हुजूर, और हर किसी बात का जवाब देना कोई ज़रूरी भी नहीं होता। ताहिर फराज साहब कहते हैं कि जब मेरे होठों पे मेरी तिश्नगी रह जाएगी, तेरी आंखों में भी थोड़ी सी नमी रह जाएगी, सर फिरा झोंका हवा का तोड़ देगा शाख को, फूल बनने की तमन्ना में कली रह जाएगी, खत्म हो जाएगा जिस दिन भी तुम्हारा इंतज़ार, घर के दरवाजे पे दस्तक चीखती रह जाएगी। क्या खबर थी आएगा एक रोज़ ऐसा वक्त भी, क्या खबर थी आएगा एक रोज़ ऐसा वक्त भी, मेरी गोयाई तेरा मुंह देखती रह जाएगी। वक्त रुख्सत आएगा और ख़त्म होगा ये सफ़र, वक्त रुख्सत आएगा और ख़त्म होगा ये सफ़र, मेरे दिल की बात मेरे दिल ही में रह जाएगी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

11:46 इनाम मौज के साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कहते हैं कि दर्द खामोश रहा टूटती आवाज रही, दर्द खामोश रहा टूटती आवाज रही, मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही। शहर में जब भी चले ठंडी हवा के झोंके, तपते सहरा की तबीयत बड़ी नासाज रही। एक नए मोड़ पे उसने भी मुझे छोड़ दिया, एक नए मोड़ पे भी उसने मुझे छोड़ दिया, जिसकी आवाज में शामिल मेरी आवाज रही। दोस्तों, अगर दर्द की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा दर्द लेकर आपकी मोहब्बत में आमद किसकी होती है? जी हाँ, आमद होती है मोहब्बत की। और मोहब्बत जिसके खाते में आ जाए वो हर हाल में दर्द के जज्बे से दो चार होगा ही, लेकिन यही दर्द जब सुकून में बदल जाता है तब ये और मीठा लगने लगता है। वो कहते हैं ना कि दोस्तों जान से गुजरता कौन है, दोस्तों जान से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है।

जब भी टूटा मेरे ख्वाबों का हसीन ताज महल, मैंने घबरा के कहीं मीर के लहजे में गजल। खैर मकदम को तेरे आएगा खुद ही सूरज, तू कभी रात की दहलीज से बाहर तो निकल। अपने अफसाने से दिलचस्पियां कुछ कम कर दे, नींद के बोझ से होने लगी पल के बोझल। हाथ से राह के जेवर है मुसाफिर के लिए, एक ठोकर जो लगी है तो इरादा न बदल। बोलने के लिए चाहा है मुझे उसने फराज, बोलने के लिए चाहा है मुझे उसने फराज, बंद होने के लिए खिलते हैं पानी में कंवल।

आप तो रात सो लिए साहिब, हमने तकिए भिगो लिए साहिब। दर्द की धूल, गम की तेज हवा, घर का दरवाजा खोलिए साहिब। चलते चलते बस यही पैगाम दोस्तों के गजल के हर जज्बे को टटोलने की कोशिश रहती है प्रोग्राम रंगे महफिल की। और ये खूबसूरत रंगे महफिल का कारवां यूं ही रोज रवा दवा रहेगा, इसी उम्मीद और ख्वाहिश के साथ आप सबसे हिना मौज रुख्सत तलब करती है। ये आखिरी फिल्मी गजल आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, इस उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज़, शब खैर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में टेक्सास में ब्राजील और जापान के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। मैच में जापान ने 1 गोल की शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन हाफ टाइम के बाद ब्राजील ने बराबरी का गोल दागकर मैच में अभी 1-1 गोल की बराबरी कर ली है। इस नॉकआउट मुकाबले में पराजित होने वाली टीम विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 12:05 और 35 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आवर शो। मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अरे हाँ, बुलाना बुलाना, फिर जरूर सुनेगा।
2: चल बुला।
1: ना बाबा ना, लो मैंने ही बुलाती।
2: हाँ, तेरी तो जरूर सुनेगा।
1: अरे बुलाना। अच्छा बाबा, बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ।
3: गोपी, ओ गोपी।
4: क्या है?
3: घर चलो, भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
4: तुम बीच में मत बोलो, मेरी इंसलेट हुई है, इंसलेट। अपमान अपमान।
3: अरे रुक जाओ।

0: छोड़, गुड मॉर्निंग छोड़ हाथ,
1: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4,
0: अरे 1 2 3 4,
1: मैं कैसे
0: हूँ
2: 1 2 3 4,
0: अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
1: गोपी, गेस व्हाट, वाटर हैंड, राइट हैंड, बंदूक बैंड, टिंग पटिंग।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीर

0: कुशलता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद देश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ मैं छोड़ रहा।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल।

0: हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कानून का शासन न तो कोई कल्याणकारी योजना है और न ही कोई आर्थिक नीति है, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार न बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में ये बात कही। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 2:05 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: शादी लाभ बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो,

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: आप यहाँ आए इसलिए

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह

में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक मुकाबले में पैराग्वे 1-0 से आगे है, वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कोयल से तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे

0: अगर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति,

कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। दोनों टीमें अभी 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। अब रविवार को न्यूजर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं फ्रॉम रेनबो। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल के समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असल

के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांव में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का भी दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। अब रविवार को न्यूजर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का अगला मुकाबला आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। आए सुनते हैं कार्यक्रम आराधना, भक्ति में संगीत का भव्य कार्यक्रम।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।